मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 6 जून सन 2026। इस वक्त सुबह के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा प्रारंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक

0: पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ हम कर रहे हैं समूह स्वरों में देशभक्ति गीत के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:20 हुए हैं, आइए सुनते हैं चिंतन।
1: आनंद एक अनुभूति है, एक भाव है, जिसका सीधा संबंध हृदय से है, मन से, मस्तिष्क से है। दूसरे शब्दों में कहें तो आनंद का स्रोत हृदय, मन अथवा मस्तिष्क ही है, जहां से संतुष्टि, प्रसन्नता, संयम की सरिताएं निकलकर बहती हुई जीवन के मरुस्थल को उरोरा करके हरा भरा बनाए रखती हैं और लहलाने लगती हैं जीवन की नीरस घड़ियां। आनंद एक पुंज है जहां से निकलकर ऊर्जा संचारित होती है और जीवन सकारात्मकता से भर जाता है। आशाओं का दीपक निराशा के तम को हर लेता है। केवल शांति, प्रसन्नता का साम्राज्य होता है हर ओर। आनंद की परिभाषा सबके लिए भिन्न भिन्न है। जैसे बच्चों को माँ के सानिध्य में, गाय को हरी घास खाने में, बिल्ली को दूध पीने में आनंद आता है। आनंद में परम सुख है। यह एक दिव्य अलौकिक शक्ति का केंद्र बिंदु है, जिसे मात्र अनुभव किया जा सकता है। शब्दों से व्यक्त करना संभव नहीं, अवर्णनीय है। इसी आनंद की प्राप्ति के लिए हमारे ऋषि मुनि तपस्वी गृहस्थ्रम का त्याग कर देते थे। यह संसार उन्हें झंझावतों, कोलाहल और अशांति का मेला लगता था। आनंद की पराकाष्ठा मनुष्य को अपना अस्तित्व भूल जाने के लिए विवश कर देती है। भेद मिट जाता है अंतर जगत एवं बाह्य जगत में, वह स्व में विलीन हो जाता है। बाह्य जगत की समस्त गतिविधियां उस पर प्रभाव नहीं डाल पाती, सब निष्प्रभावी रहता है। पर वर्तमान में आनंद की इस चरम सीमा को साधारण मनुष्य स्पर्श भी नहीं कर सकते, यह अत्यंत दुष्कर है उनके लिए। कितना कठिन है स्व में स्व का विलीन हो जाना। मैं, मेरा, तू, तेरा का अंतर नहीं रहता। उसे जब स्वयं का ज्ञान नहीं रहेगा, बाहरी दुनिया का बोध नहीं रहेगा, तब होगा मात्र आनंद। आनंद प्राप्ति के लिए किसी वस्तु साधन की आवश्यकता नहीं होती। बस ईर्ष्या, द्वेष, मोह माया, लोभ, हिंसा, चुगली, परनिंदा, काम क्रोध जैसे तामसिक दुर्गुणों से दूर रहना है। इन सब से स्वयं को बचाना है। तात्पर्य, संसार में रहकर भी संसार से अलग होना, संसार के समस्त आकर्षणों से, बंधनों से मुक्त रहना, क्योंकि सांसारिक वृत्तियां प्रायः मनुष्य को अपने बाहुपाश में जगड़कर भोग विलास की ओर उन्मुख करती हैं। बड़ी अनुपम प्रार्थना की हमारे पूर्वजों ने, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। अर्थात घर में आने वाले अतिथि का आतिथ्य करें, प्रेम से सेवा करें, यथा योग्य सत्कार हो, बस इसी में आनंद है। कितना सुंदर भाव व्यक्त किया है हमारे विद्वानों ने। और चाहिए भी क्या, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं, वह दिन ब दिन बढ़ती जाती है और उसकी पूर्ति करने में मनुष्य कई बार सदमार्ग से विमुख भी हो जाता है। भौतिक आधुनिक संसाधन तो मनुष्य को व्यस्त रखकर उस परिस्थिति का निर्माण करते हैं जहां यह लगता है कि इनके अभाव में जीवन व्यर्थ है, पर आनंद खो जाता है, क्योंकि इन संसाधनों के मध्य रहकर जीवन व्यतीत तो होता है पर बहुत कुछ छिन जाता है। माया जाल में शनह शनह वह फंस कर जीवन का, मानव तन पाने का आनंद ही नहीं मना पाता, दुर्लभ मानव रूप को अनावश्यक गंवा देता है। आनंद एक माध्यम है प्रकृति से जुड़ने का, आध्यात्मिकता, अलौकिक सत्ता से संबंध स्थापित करने का, पर इसके लिए अनिवार्य है सात्विक गुण, स्वयं को इतना सक्षम बना लेना कि दुष्प्रवृत्तियां स्पर्श भी न कर पाए। अहंकार, आलस्य, अज्ञानता आनंद का सुख प्राप्त करने में बाधक हैं। इसलिए अहंकार, आलस्य का त्याग, ज्ञान प्राप्ति का प्रयास आवश्यक है। आज का समय आपाधापी, चकाचौंध, दिखावे, आडंबर का है, फिर आनंद कौन, कब, कहां, कैसे ढूंढे? अतृप्त कामनाएं मन को व्याकुल किए रहती हैं। चंचल मन दशों दिशाओं में भागता है। इंद्रियां वश में नहीं रहती, तो सर्वप्रथम इस मन पर कठोर अंकुश लगाना होगा। इंद्रियां अपने आप वश में हो जाएंगी। पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण से किया गया प्रत्येक कर्म हमें आनंद प्रदान करता है। ईश्वर की भक्ति में जब मन रम जाता है तब भी आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि निर्मल पवित्र भक्ति की धारा मन के अवगुणों को भुला देती है। आनंद के विषय में गीता में लिखा है, बाह्य स्पर्शेश्वा सक्तात्मा विंध्यात्मनि यत्सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा शुकमक्षय मश्नुते।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख और स्वर था पद्माक्षी अवस्थी का। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस का गायन। गायक हैं मन्ना डे और सुरेश वाडकर। संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया।

संतों के समाज को आनंदमय और कल्याणकारी बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने उनकी तुलना तीर्थराज प्रयाग से की है, जहां राम भक्त रूपी गंगा तथा ब्रह्म विचार रूपी सरस्वती की धाराएं प्रवाहित होती हैं। मात्र कवियों तथा पंडितों की ही नहीं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का गायन। गायक थे मन्ना डे और सुरेश वाडकर। संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कृषि सामी की बेड़ा खाड़ा चौगोट।
1: कुकुड़ी पसन रलने हनी अटकने बिकले खूबे फायदा हो सके और घरे कुकड़ी रले सगाई लोने अलग ले घेनुन पैसा खर्चा करुक नहीं पड़े। मानतर ये तेबे होए दे जेबे कुकड़ी के बीमार से मार नहीं रहे। बेरा समय ने कुकड़ी मन के कई एक बीमारी झोंटे सत जेचो ने आम के खूबे नुकसान उठाव पड़े से। हुनी कजे ये मन चो सही रख रखाव और बीमारी ले बचा तो उवाट के जानू रहतो जरूरी होए से। आमचो बस्तर संभाग ने जोन विधि ले कुकड़ी पोस्तर होए से उनके ग्रामीण बेकयार्ड मुर्गी पालन वाले सत बोलो ने कुकड़ी मन के घर चो आखना नाले बैला खोटा छो कुनी रेटे गुड़ा ने ठान बनाऊ संगाउन से। कुकड़ी के बीमारी ले बचा तो काजे ये ठान छो सफाई के ध्यान देतोर खूबे जरूरी होए से। एचो काजे कुकड़ी गुड़ा ने चूना और लाकड़ी के मिसाउन हल्का हल्का बिखरून दिलों ने खूबे नंगत रहे से। गुड़ा के चमास और शीतकार बेरा नमी ले बचाव पड़े से और एचो काजे गुड़ा ने पुराना बोरा नाले पेपर के ओछा तराए नाले खड़ के लगा ले भले नमी ले आमी बचा सकुआ। कुकड़ी के रोग राई ले बचा तो काजे जोन कुकड़ी नंगत आसे और कौन बीमार आसे एक चिता तोर खूबी जरूरी हो से तेबे तुरते इलाज करु खोए दे। कुकड़ी ने बीमार झोंटू के मुरिया तो बेरा सबले पहल कुकड़ी पटकी के खाले लटकाए से मुरुस ने दखा दे से लाल हरा नहाले हरदिया रंग चो दस्त करे से और मन करुन नी खाए। असन काही बल लक्षण दखा दिलो ने तुरते लगे चो पशु औषधालय ने जाऊन डॉक्टर मन के सांगुन इलाज करतोर जरूरी आए। पशुपालक भाई मन ऐसे ही संगे संगे और गोट मन के बले कुकड़ी के बीमार ले बचत काजे जानते रहे से उन्हें ये आए कि हर हमेशा थिरथिरा कुकड़ी के जी घेन तो राय रतो ठान किंडी डेंग होता राय और कुकड़ी के बीमारी चो लक्षण दखा दिले तुरते उनके नंगत कुकड़ी ले अलग संगाता राय। बीमार होन मरल कुकड़ी के खोदरा खोड़ून ऊपर ले चूना के बिखरून माटी पाटून देते राय। बाहर ले घेन आन लोग कुकड़ी चो ऊंडकी पटकी के बले बाहर नहीं पकात रहा है एक बले खोदरा खोड़ून पाड़त रहा है। जोन बले चीज ने पानी नहाले कोंडा देउन से बोलन ठान ने उनके बले रोज साफ सफाई करतोर जरूरी है। असन पता चले दे कि लगे चो घरे नहाले लगे चो पारा ने कुकड़ी मन के कहीं बीमारी झोंटली से तो आप लोग घर चो कुकड़ी हूं बाटे नहीं जाओत तुरते ऐचो व्यवस्था करु पड़े से और रोग राई ले बचा तो खाजे डॉक्टर मन के सांगुन टीका लगाता रहे। टीका लगाओ रलो ने कुकड़ी के उन बीमारी ले आमी बचा सकुआ। ये टीका मन के नियम ले 6 महीना और 1 साल भीतरे डॉक्टर मन लगाऊ दे सत हम ये टीका लगाऊन जोन बीमारी ले कुकड़ी मन के बचा सकूँ उन बीमारी मन चमना सांगे दे। ये बीमारी है झुमरी बीमारी माता बीमारी और गोटक हो से गंबारो। पशुपालक भाई मन कुकड़ी गोटक नंगत फायदा देते बीती व्यवसाय आए जोन रख रखाव और इलाज चो कम खर्चा ने जगह फायदा दे से। उन्हीं काजे एके बले अच्छा मन करुन ध्यान देउन नंगत उवट ने कर लो ने तुमके नंगत फायदा होय दे।
0: अभी आप सुन रहे थे बेड़ा खाड़ा चुकूट। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। हुलहुली में लीजिए सुनिए भैरमदेव पाड़। वादक कलाकार हैं भागीरथी और साथी।

0: कुल्हुली में आप सुन रहे थे भैरम देवपाड़, वादक कलाकार थे भागीरथी और साथी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं, वक्त है कार्यक्रम विवरण का, तो लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। साहित्य भारती रात 9:30 पर हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। डॉक्टर की सलाह सुनिएगा सुबह 8:30 पर, और सुबह 9:00 आप सुनेंगे समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में। ये दोनों कार्यक्रम हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। सुबह 7:05 पर होगा हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर, आकर्षण सुनिएगा वार्ता जलवायु परिवर्तन। वार्ताकार होंगी माधुरी यादव और होगी मधुरिमा। फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 9:15 पर। सुबह 9:30 पर सुनेगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज हम आपको सुनवाएंगे फिल्म वारिस के गीत। आजीचो सगा कार्यक्रम में सुनिएगा भेंटवार्ता सुबह 10:00। कृषक और व्यवसायी महेश चंद्र जोशी से बातचीत करेंगे बलबीर सिंह कच्छ। लोकगीतों के कार्यक्रम गुर्दों में प्रस्तुत करेंगे छत्तीसगढ़ी गीत सुबह 10:30 पर। कलाकार होंगे ममता चंद्राकर और साथी। सुबह 11:00 एक ही कलाकार में आज आप सुनेंगे अभिनेता विवेक मुश्रान की फिल्मों के गीत। गैर फिल्मी गीतों गजल का कार्यक्रम गुलदस्ता पेश करेंगे सुबह 11:30 पर। दोपहर 12:00 सुनेगा लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम लोकरस। प्रस्तुति होगी संपत राम नाग की, संयोजक होंगी चंद्र ऋषि ठाकुर। बेड़ा खाड़ा चौगोट का पुनः प्रसारण होगा दोपहर 1:05 पर। दोपहर 1:10 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। दोपहर 2:30 पर सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम हमारे मेहमान। हमारे आज के अतिथि होंगे पुलिस महानिरीक्षक बस्तर संभाग पी सुंदर राज। कार्यक्रम का संचालन करेंगी डॉक्टर मधु जैन और प्रस्तुति होगी चंद्र ऋषि ठाकुर की। दोपहर 3:00 से विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे FM बैंड 100.1 MHz पर। सांधेकालीन सभा में सुनिएगा देशभक्ति गीत शाम 5:05 पर। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे युवा दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी। लोकगीतों के कार्यक्रम में सुनेगा दष्टुराम और साथियों का गाया गोंडी गीत शाम 6:35 पर। बस्तर के स्वर आप सुनेंगे शाम 7:00। शाम 7:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। जोनी उजर में प्रस्तुत करेंगे हल्बी नाट गीत रात 8:00। कलाकार होंगे लोकनाथ वैष्णव और साथी। पिलामन काजे गोट में आज आप सुनेंगे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में रात 8:30 पर। प्रस्तुति होगी नम्रता ठाकुर की। रात 9:15 पर सुनिएगा आमचोरान आमचो जीवना में संतो मौर्य से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता होंगे बलबीर सिंह कच्छ। और आदिवासी लोकवाद्य धुन के कार्यक्रम पाड़ में सुनेगा फूल कंवर पाड़ और पिला कनूर कदो पाड़। वादक कलाकार होंगे सैजूराम और साथी। वक्त होगा रात 10:00 का। आपको पुनः बता दें दोपहर 2:30 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमारे मेहमान। हमारे आज के अतिथि होंगे पी सुंदरराज पुलिस महानिरीक्षक बस्तर संभाग। संचालन होगा मधु जैन का। प्रस्तुति होगी चंद्र ऋषि ठाकुर की। श्रोताओ ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात राज्यस्य सूरत नगरे 18,000 कोटि रूप्यकाधिक मूल्यानां मार्ग विद्युतः अथ च औद्योगिक विकास परियोजनानां शुभारम्भं विहितवान्। सः आदौ हजीरा क्षेत्रं गत्वा औद्योगिकाधारभूत संरचना कार्याणां समीक्षां विहितवान्, सहैव जनसभामपि संबोधितवान्। अनन्तरं प्रधानमंत्री दमन नगरं समागच्छत्, यत्र प्रायः 2,970 कोटि रूप्यक परिमितानां विविध विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। अवधेयास्पदं वर्तते यत् एताभिः परियोजनाभिः क्षेत्रस्य विकासः, आजीविका निर्माणानि तथा जनसुविधानां वृद्धयः च भविष्यन्ति। सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा अंक सत्यापनार्थं सहैव पुनर्मूल्यांकनार्थं आवेदन प्रस्तुतेः अन्तिमा तिथिः जून मासस्य 7 दिनांक पर्यन्तं वर्धिता। सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन सन्देशेन परिषदा प्रख्यापितं यत् छात्राः इदानीं रविवासरस्य मध्य रात्रिं यावत् स्व आवेदनानि प्रस्तोतुं शक्नुवन्ति। सीबीएसई परिषदा प्रोदीरितं यत् छात्रहितं मनसि निधाय आवेदन प्रक्रियां पूरयितुं छात्रेभ्यः अतिरिक्त समय प्रदानाय एषः निर्णयः स्वीकृतः। एतस्मात् पूर्वम् आवेदनस्य अन्तिमा तिथिः अस्य मासस्य 6 दिनांकं यावदासीत्। परिषदा सर्वेभ्यः योग्य छात्रेभ्यः परामृष्टं यत् ते निर्धारित समये एव स्व आवेदन प्रक्रियां सम्पादयन्तु। केन्द्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी अघोषयत् यत् अण्डमान द्वीप समूहस्य पूर्व समुद्रीय तटात् प्रायः 15 किलोमीटर दूरे श्री विजयपुरम त्रिक्षेत्रे प्राकृतिक गैस भण्डारः अन्विष्टः। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन सन्देशेन श्री पुरी प्रख्यापितवान् यत् एतत् अन्वेषणम् अण्डमान समुद्रस्य विशाल ऊर्जा क्षमतां पुनः प्रमाणीकरोति, सहैव अस्मिन् क्षेत्रे प्रचल्यमानस्य गवेषणाभियानस्य एकाम् अपरां सफलतां च सूचयति। सः अकथयत् यत् ऑयल इंडिया इति संस्था सम्प्रति गैस द्रव्यस्य संरचनां तथा च तस्य ऊष्मीयमानं मूल्यांकितुं गैस सैम्पलिंग इति प्रतिचयनस्य कार्यं करोति। अन्ताराष्ट्रिय पर्यावरण दिवसावसरे श्रीपुरी महोदयेन नवदिल्ल्यां फ्लेक्स इंधन वाहनेभ्यः E85 इंधनस्य शुभारम्भो विहितः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः ह्यः अब्रवीत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः आर्थिक परिष्काराणां लक्ष्यस्य अन्तर्गतं भारतस्य विकासयात्रा देशस्य आर्थिक समृद्धिम् अविरतं वर्धयति। अस्मिन् आर्थिक वर्षे पञ्जीकृतं 7.7% जीडीपी विकासं निर्दिश्य श्रीशाहः प्रावोचत् यत् एषा उपलब्धिः गत 12 वर्षेषु भारतस्य अर्थव्यवस्थया सुदृढतां प्रकटयति। अथ च क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तान दलयोर्मध्ये स्पर्धा अद्य न्यू चण्डीगढ़स्य मुलानपुर स्थिते महाराजा यादवेन्द्र सिंह अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडांगणे आरप्स्यते। अस्यां स्पर्धायां शुभमन गिलः भारतीय दलस्य नेतृत्वं विधास्यति। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं प्रातः 9:30 आरप्स्यते। पुरुषाणाम् अण्डर 18 इति अष्टादश एशिया कप हॉकी प्रतियोगितायाः उपान्त्य स्पर्धायां भारतेन पाकिस्तान दलं 5-3 अन्तरालेन पराजितम्। अपरतः महिलानां अष्टादश एशिया कप प्रतियोगितायाः उपान्त्य स्पर्धायां चीन देशेन भारतीय दलं पराजितम्। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की दर से बढ़ी है। दमण में कल 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर आगे बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
3: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
2: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 50 गीगावाट अकेले गुजरात की है। वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में

0: का अवैध कब्जा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगाहारा में कल सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत की अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1512।
3: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
4: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
3: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102, या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
5: श्रोताओं, हमने कल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। ये दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण और पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति जागरूक होने का संदेश देता है। इस कड़ी में आगे बढ़ते

हुए 6 जून को विश्व हरित छत दिवस मनाया जाता है, जो शहरों में हरियाली बढ़ाने का एक अभिनव और व्यवहारिक प्रयास है। इसकी शुरुआत वर्ष 2020 में हुई, जिसका उद्देश्य शहरों में हरियाली बढ़ाने और लोगों को पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के प्रति प्रेरित करता है। आज जब कंक्रीट के जंगल लगातार फैल रहे हैं, तब भवनों की छतों को हरित स्वरूप देना प्रकृति को नया स्थान प्रदान करने जैसा है। पौधों से सजी छतें वातावरण को शीतल बनाने, वर्षा जल के संरक्षण और वायु की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसके साथ ही ये पक्षियों और तितलियों के लिए भी अनुकूल आवास तैयार करती है। हरित छतें ऊर्जा की बचत में सहायक होने के साथ साथ शहरी जीवन को अधिक संतुलित और सुखद बनाती है। विश्व पर्यावरण दिवस हमें धरती की रक्षा का संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है, वहीं विश्व हरित छत दिवस उस संकल्प को व्यवहार में उतारने का एक व्यावहारिक मार्ग दिखाता है। ये पहल बताती है कि पर्यावरण संरक्षण केवल बड़े बड़े अभियानों से नहीं, बल्कि अपने घर और आसपास की छोटी छोटी पहलों से भी संभव है। आइए प्रकृति और प्रगति के बीच सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाएं और हरियाली को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का संकल्प लें, क्योंकि ईश्वर की बनाई इस सुंदर सृष्टि को बचाना न सिर्फ हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है।

0: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल। अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 0778222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
2: श्रोताओ, विश्व हरित छत दिवस हमें पर्यावरण संरक्षण के व्यावहारिक उपायों की ओर प्रेरित करता है। इन्हीं प्रयासों का संबंध जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौती से भी है। तो आइए सुनते हैं इसी विषय पर वार्ता। जलवायु परिवर्तन वार्ताकार हैं माधुरी यादव।
3: वर्तमान समय में पूरी दुनिया जिन सबसे बड़ी समस्याओं का सामना कर रही है, उनमें जलवायु परिवर्तन एक अत्यंत गंभीर और वैश्विक समस्या है। यह केवल किसी एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी पृथ्वी को प्रभावित कर रही है। जलवायु परिवर्तन का अर्थ है पृथ्वी के मौसम और तापमान में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। पहले मौसम में बदलाव प्राकृतिक कारणों से होता था, लेकिन आज मानव गतिविधियां जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण बन गई हैं। उद्योगों का बढ़ना, जंगलों की कटाई, शहरीकरण, जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग और बढ़ता प्रदूषण पृथ्वी के वातावरण को प्रभावित कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसे सामान्यतः ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरण की समस्या नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन, कृषि, अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक संसाधनों को भी प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, सूखा, तूफान, गर्मी की लहर और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की संख्या तीव्रता से बढ़ रही है। यदि समय रहते इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। इसलिए जलवायु परिवर्तन को समझना, उसके कारणों और प्रभावों का अध्ययन करना तथा उसे रोकने के प्रभावी उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव को समझना बहुत जरूरी है। पृथ्वी के वातावरण में कुछ गैसें होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ये गैसें सूर्य

आने वाली गर्मी को पृथ्वी के वातावरण में रोक कर रखती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान जीवन के अनुकूल बना रहता है। लेकिन जब इन गैसों की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है तो वातावरण में अधिक गर्मी हो जाती है और पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। यही प्रक्रिया ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है और यही जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। जलवायु परिवर्तन के कारणों का बेहतर विश्लेषण प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों के द्वारा किया जा सकता है। महाद्वीपीय संवहन अर्थात महाद्वीपों का खिसकना अब भी जारी है, जिसकी वजह से समुद्री धाराएं तथा हवाएं प्रभावित होती हैं और इनका सीधा प्रभाव पृथ्वी की जलवायु पर पड़ता है। पृथ्वी के झुकाव के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अधिक झुकाव अधिक गर्मी तथा अधिक सर्दी, और कम झुकाव अर्थात कम गर्मी और कम सर्दी का मौसम। इस प्रकार पृथ्वी के झुकाव के कारण जलवायु प्रभावित होती है। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली राख और गैसें वातावरण में फैलकर कुछ समय के लिए जलवायु को प्रभावित कर सकती हैं। जलवायु को संतुलित रखने में सागरों का बहुत योगदान रहता है। पृथ्वी के 71% भाग में समुद्र व्याप्त है, जो कि वातावरण तथा जमीन की तुलना में सूर्य के प्रकाश का दोगुना अवशोषण करते हैं। सागरों को कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा सिंक कहा जाता है। वायुमंडल की अपेक्षा 50 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस समुद्र में होती है। समुद्री बहाव में बदलाव आने से जलवायु प्रभावित होती है। ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसों की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। वनों की कटाई के कारण भी जलवायु प्रभावित होती है। निरंतर बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं। आवास, खेती, लकड़ी और अन्य वन संसाधनों की चाह में वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिससे पृथ्वी का हरित क्षेत्र तेजी से घट रहा है और साथ ही जलवायु परिवर्तन में तेजी आ रही है। 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति की ओर सभी का ध्यान आकर्षित हुआ। रोजगार पाने के लिए गांवों में स्थित आबादी शहरों की तरफ प्रस्थान करने लगी और शहरों का आकार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। महानगरों में उनकी क्षमता से कई गुना अधिक आबादी निवास कर रही है, जिससे शहरों के संसाधनों का असीमित दोहन हो रहा है। जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं, वहाँ का भूभाग दिन प्रतिदिन ऊंची ऊंची इमारतों से ढकता जा रहा है, जिससे उस स्थान की जल संवर्धन क्षमता कम हो रही है, जिससे वहाँ के पर्यावरण तथा जलवायु पर निरंतर प्रभाव पड़ रहा है। औद्योगिकीकरण भी जलवायु परिवर्तन में बड़ी भूमिका निभाती है। विभिन्न प्रकार की कारखानों से निकलने वाले धुएं से वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अनेक प्रकार की अन्य जहरीली गैसें और धूल कण हवा में छोड़ती हैं, जो वायुमंडल में काफ़ी वर्षों तक विद्यमान रहती हैं। यह ग्रीन हाउस प्रभाव ओजोन परत का क्षरण तथा भूमंडलीय तापमान में वृद्धि जैसी समस्याओं का कारण बनते हैं। वायु, जल और भूमि प्रदूषण भी औद्योगिकीकरण की ही देन हैं। जनसंख्या वृद्धि होने से ऊर्जा की खपत, उद्योग और संसाधनों का उपयोग बढ़ता है, जिससे पर्यावरण और जलवायु पर असर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन संपूर्ण मानव जीवन को अत्यधिक प्रभावित कर रहा है, जिसका सबसे स्पष्ट प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग है। पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे कई प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहे हैं। दुनिया के कई हिस्सों में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, इससे समुद्र का स्तर
बढ़ रहा है और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। वर्तमान समय में मौसम बहुत अनिश्चित हो गया है। कहीं अचानक भारी बारिश होती है तो कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ जाता है। तूफान और चक्रवात भी अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि पर भी देखने को मिल रहा है। कृषि पूरी तरह मौसम पर निर्भर रहती है। जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों की पैदावार कम हो गई है। इससे किसानों की आय पर भी असर पड़ता है और खाद्य संकट भी की संभावना भी बढ़ जाती है। जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानसूनी क्षेत्रों में वर्षा में वृद्धि होगी, जिससे बाढ़, भूस्खलन तथा भूमि अपरदन जैसी समस्याएं होंगी। मध्य तथा उत्तरी भारत में सूखे जैसी स्थिति होगी, जबकि पूर्वोत्तर तथा दक्षिणी पश्चिमी राज्यों में अधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी समस्या हो सकती है। जलवायु परिवर्तन का सीधा प्रभाव जैव विविधता पर पड़ रहा है। जैव विविधता किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन और मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन के कारण कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवास बदल रहे हैं। तापमान बढ़ने से कई जीव ठंडे क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण कई प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। अत्यधिक गर्मी, सूखा और बाढ़ कई जीवों के लिए घातक साबित होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि इसी तरह तापमान बढ़ता रहा तो आने वाले समय में अनेक जीव जंतु और पौधे विलुप्त हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन का सीधा प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि से हीट स्ट्रोक, थकान और निर्जलीकरण जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लंबे समय तक गर्मी रहने से शरीर की कार्य क्षमता भी कम हो सकती है। प्रदूषित हवा से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और अन्य फेफड़ों के रोग बढ़ सकते हैं। तापमान और मौसम में बदलाव के कारण कई संक्रामक रोग जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया फैल सकते हैं। दूषित पानी के सेवन से डायरिया, टाइफाइड, हैजा जैसी बीमारियां फैल सकती हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक प्रयास किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन की समस्या को हल करने के लिए कई पहल किए हैं। 1992 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य देशों को एक मंच प्रदान करना है, जहां वे मिलकर जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों पर चर्चा कर सकें। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य विकसित देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना था। इस समझौते के तहत कई देशों ने उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य तय किया। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पेरिस समझौता एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। 2015 में हुआ यह समझौता वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस के कम रखने और संभव हो तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य रखता है। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध वैश्विक स्तर पर सहयोग का एक महत्वपूर्ण कदम है। दुनिया के कई देश नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ा रहे हैं, ताकि कार्बन का उत्सर्जन कम हो सके। वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण करके जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सकता है। वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, इसलिए कई देशों में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं और जंगलों की कटाई को रोका जा रहा है। कई देश इलेक्ट्रिक वाहनों
ऊर्जा बचत तकनीक और पर्यावरण अनुकूल उद्योगों को बढ़ा

0: हवा दे रहे हैं ताकि प्रदूषण कम किया जा सके। पर्यावरणीय जागरूकता के लिए सरकारें और सामाजिक संगठन लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं। स्कूलों, कॉलेजों और मीडिया के माध्यम से लोगों को जलवायु परिवर्तन के विषय में जानकारी दी जा रही है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन हमारे सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। यदि इस समस्या को समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो इसके परिणाम बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। यदि हम प्रकृति के संसाधनों का सही उपयोग करें और पर्यावरण की रक्षा करें तो हम इस समस्या को कम कर सकते हैं और पृथ्वी को सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता जलवायु परिवर्तन। वार्ताकार थी माधुरी यादव। आप सुन रहे हैं नमस्कार चित्तलपुर।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
5: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
4: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
6: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
1: पेश है मधुरिमा।

मिलना इत्तेफाक हो सकता है, बिछड़ना भी वक्त की मजबूरी, मगर किसी की यादों में बस जाना, यही तो दिल की असली कहानी है।

हिचकियों में वफा ढूंढ रहा था, हिचकियों में वफा ढूंढ रहा था, कमबख्त गुम हो गई दो घूंट पानी से।

मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले।

तू हम सफर, तू हम डगर, तू हम राज नजर आता है, मेरी अधूरी सी जिंदगी का ख्वाब नजर आता है। कैसी उदास है जिंदगी तेरे बिन, मेरे हर लम्हे में तेरा एहसास नजर आता है।

0: आप सुन रहे थे नमस्कार जगदलपुर। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी जगदलपुर से प्रसारित किया गया। इस वक्त सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहाँ पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
4: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
3: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
4: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना

0: देश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
1: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूट से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
2: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: Partnership that we have with Nepal.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
6: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
5: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
7: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
8: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3500

0: 67 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इसराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इसराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
0: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमेरिका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की पांचवी पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग 42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञान आनंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. More than 9.42 lakh farmers to join Khet Bachao Abhiyan for balanced fertilizer use and sustainable farming. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Kerala until June 9th. And Indian Grandmaster R. Pragyanan scripts history becomes first Indian to win Norway chess title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth around 2,970 crore rupees in Daman last evening, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world. He assured the citizens that the country will forge ahead with its reform express while prioritizing massive infrastructure development and welfare schemes for the poor.
4: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
3: Earlier, Mr. Modi launched various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat. Addressing the gathering, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial fifth of the nation's green energy share. He added that the state is poised to play a massive role in shifting from solar energy to green hydrogen and green ammonia, which is essential for achieving energy self-reliance.
4: दुनिया अब हरित युग की तरफ, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है। भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था और गुजरात के चारण का गांव में भारत का पहला सोलर पार्क भी बनाया गया था।
3: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city. He lauded Surat's circular water economy model and the Waste to Wealth initiative, which has turned into a mass movement over the last 12 years. The Reserve Bank of India has simplified the rules governing investments by foreign portfolio investors or FPIs in government securities. The revised framework is aimed at making investments easier and reducing compliance requirements for foreign investors. More from our Mumbai correspondent.
5: Under the revised framework, FPIs investing through the general route will get greater flexibility as certain investment restrictions have been removed. The RBI has also merged the existing general and long-term investment categories into a single limit for government securities and state government securities. For financial year 26-27, the investment limit for central government securities has been fixed at 4,62,490 crore for the first half of the year and 4,77,006 crore for the second half. For state government securities, the corresponding limits have been set at 1,53,043 crore and 1,64,242 crore respectively. The revised directions have come into effect immediately. Ankita Apte, Akashvani News, Mumbai.
3: India's economy has maintained a strong momentum in 2025-26 with real gross domestic product or GDP estimated to grow by 7.7% in comparison to 7.1% in 2024-25. The Ministry of Statistics and Programme Implementation yesterday released the provisional estimates of annual GDP for the financial year 2025-26 and quarterly estimates of January to March this year. It said the primary sector has observed 3.2% growth rate, mainly driven by the performance of agriculture and fishery sectors. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare said that more than 9.42 lakh farmers across the country have joined the Khet Bachao Abhiyan as of June, transforming the campaign for balanced fertilizer use into a nationwide mass movement. The campaign, launched by the Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, aims to promote balanced fertilizer application, conserve soil fertility and encourage sustainable farming practices. A report.
6: The Agriculture Ministry informed that over 17,800 awareness programs have been organized so far under the campaign, reaching nearly 6.98 lakh farmers. In addition, around 3,700 training programs have been conducted, providing information on balanced fertilizer use, soil health management, and scientific farming techniques to more than 1.57 lakh participants. The ministry said that over 8,850 field demonstrations have also been organized to provide practical exposure to farmers on the use of organic and alternative nutrient sources, as well as integrated nutrient management techniques. These demonstrations are aimed at improving long-term soil productivity and reducing excessive dependence on chemical fertilizers. With Akshit and Rohan's report, Jigyasa Pandey for Akashwani News, Delhi.
3: Central Board of Secondary Education or CBSE has extended the last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till 7th of June. In a social media post, the board said students can now submit their applications till Sunday midnight. CBSE said that the decision has been taken in the interest of students to provide them with additional time to complete the application process. The earlier deadline for submission of applications was 6th of this month. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India has said that Pakistan is abusing its temporary membership of the UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir, and it should be mindful of its responsibilities. India's permanent representative P. Harish said that empty rhetoric and hollow claims by Pakistan would not change this fundamental reality that Jammu and Kashmir was, is and will always remain an integral and inalienable part of India.
7: I'd like to remind Pakistan that being a member of the UN Security Council is a huge responsibility. It's not a forum for peddling biased and false narratives. I'd like to make it loud and clear Jammu and Kashmir was, is and will always remain an integral and inalienable part of India. Any assertions to the contrary are baseless, devoid of and inconsistent with historical facts. Empty rhetoric and hollow claims by Pakistan would not change this fundamental reality. In the interest of time or the wider UN membership, I would not delve any further into this.
3: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal in New Delhi today. The Foreign Affairs Ministry of Nepal has said that during the meeting, both sides will discuss matters of mutual interest with a view to enhancing cooperation across key areas, including trade, investment, connectivity, energy and people-to-people ties. Mr. Khanal is currently on a three-day visit to India. During the weekly press briefing, spokesperson for the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said the visit will help further strengthen the special partnership between India and Nepal.
8: With Nepal, we have an expansive agenda from development cooperation to people-to-people ties to trade and investment. So all these ties together will be discussed when the two foreign ministers meet. But on our side, we are keen to further strengthen this multifaceted partnership that we have with Nepal.
3: Russia's President Vladimir Putin has turned down an offer for in-person talks with his Ukrainian counterpart Volodymyr Zelensky, saying he sees no point in such a meeting for now. Putin delivered the remarks during Russia's flagship economic forum in St. Petersburg yesterday, a day after Zelensky shared an open letter appealing for a face-to-face meeting in which the two leaders could hash out an end to the war. Zelensky responded later, saying Putin's rejection of his proposal showed that the Kremlin had no wish to end the war. U.S. forces have struck Iranian coastal surveillance radar installations near the Strait of Hormuz after shooting down four Iranian drones which targeted regional maritime traffic. The incident marks the latest flashpoint in a three-month-old conflict, further straining already deadlocked peace negotiations between Washington and Tehran. More from our correspondent from Dubai.
9: The strike came as diplomatic efforts between Washington and Tehran remain stalled, with a major sticking point of being Iran's demand for the release of $24 billion in frozen assets held overseas. Iranian officials have reportedly linked progress on any interim agreement to the unfreezing of funds, while the United States is reluctant to give up what it sees as a key source of leverage in these negotiations. Meanwhile, in Lebanon, Hezbollah has rejected a U.S.-brokered ceasefire proposal accepted by Israel and the Lebanese government, insisting that any agreement include a full Israeli withdrawal from southern Lebanon. The group has also released drone footage showing attacks on Israeli forces near the Beaufort Castle, a strategic hilltop fortress captured by Israeli forces during the recent offensive. Iran has reiterated its support for Hezbollah and maintains that Israeli pullout from Lebanon is essential for any broader regional settlement. Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
3: In Keralam, red alert indicating extremely high rainfall is declared in five districts till 9th of June. More from our correspondent.
10: Red alert indicating extremely heavy rainfall has been declared in the districts of Malappuram, Kozhikode, Wayanad, Kannur and Kasaragod in Keralam. Six districts are under orange alert indicating isolated very heavy rainfall, while the remaining three districts are under yellow alert indicating isolated heavy rainfall. Intensive rainfall is expected over the next 3 days in Keralam. Places including Kannur, Kozhikode, Kochi and Alappuzha have recorded more than 15 mm of rainfall since 7 a.m. today. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
3: Meanwhile, the weather agency predicted thunderstorm accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Uttarakhand, East Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Jharkhand and Jammu and Kashmir today. Meanwhile, thunderstorm conditions are expected over Bihar, Chhattisgarh, Odisha and Rajasthan today. Furthermore, IMD forecast heat wave conditions over coastal Andhra Pradesh for the day. On to sports. In chess, Grandmaster R. Pragyanand has created history by becoming the first Indian to win the Norway chess title in Oslo with a final round victory over Germany's Vincent Kaimer. Pragyanand, who began the day in third place, secured a crucial classical win worth 3 points to finish with 18 points and sealed the title. The 20-year-old from Chennai achieved a feat that had eluded Indian chess legend Vishwanath Anand and reigning world champion D. Gukesh since the tournament began in 2013. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
11: Thank you, Shagun. Almost all the dailies quote the Prime Minister's statement regarding strong economic growth, with the Indian Express's headline being Financial Year 26 growth estimate raised to 7.7%. Momentum strong. The paper also adds to draw funds, prop rupee, government scraps FII capital gains withholding tax on bonds. While the Financial Express reports economy sprints to 7.8% growth in fourth quarter for 2026. The first tranche of India-US interim trade deal likely by mid-July, says Piyush Goyal, reports the Hindu Business Line. The Pioneer informs Shah vows zero tolerance on demographic shifts as he addressed BSF personnel at Lankamura border outpost. CBSE drops CoEMS portal for re-evaluation with student and examination data migrated to infrastructure under the board's direct control, cites Hindustan Times. The Asian Age headlines, Putin says Russia ready to jointly

0: श्रोताओं नमस्कार, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, जब हम अपने शरीर के अंगों की बात करते हैं तो हमारा जो सिर होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। इसमें लगने वाले आघात, चोट से कभी कभी हमें काफी तकलीफ होती है और सभी लोगों को सलाह दी जाती है कि अपने सिर पे लगने वाले चोटों से हमेशा सावधान रहें। और श्रोताओं, कुछ बीमारियों का कभी सामना करना पड़ता है जिनका संबंध सीधे मस्तिष्क या हमारे सिर से होता है, और कुछ बीमारियां बाहरी तौर पे होती हैं, कुछ अंदरूनी तौर पे। तो मस्तिष्क से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनके क्या कारण हो सकते हैं, उनके लक्षण क्या है और उनके क्या उपचार हो सकते हैं, इस बारे में जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर उमेश कुमार चंद्रा जी को, जो एक मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर उमेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी धन्यवाद। मैं डॉक्टर उमेश कुमार चंद्रा, मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ, रायपुर।
0: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो कार्यक्रम में हम ये जानना चाहेंगे कि जब हम अपने मस्तिष्क की बात करते हैं तो इनमें कौन कौन सी बीमारी जो है प्रमुख तौर पर देखी जा सकती है।
1: जहाँ तक मस्तिष्क की बात है, बहुत ही वृहद संरचना होती है शरीर की, बहुत बड़ा अंग होता है मस्तिष्क, लेके पूरा स्पाइन तक, साथ में हाथ और पैरों में फैले हुए नसों तक का पूरी बीमारी मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ के अंदर कवर होती है। मस्तिष्क रोग में मुख्य रूप से सबसे कॉमन सामान्य रूप से जो समाज में फैली है बीमारी, उसमें से एक है लकवा या स्ट्रोक। दूसरा प्रमुख बीमारी इसके अंदर आता है वो है फिट्स या एपिलेप्सी, या जिसको दूसरी भाषा में मिर्गी बोला जाता है। तीसरा प्रमुख कारण है सिर दर्द या मस्तिष्क के अंदर दर्द। इसके अंदर बहुत कॉमनली है माइग्रेन हेडेक है। मुख्य बीमारी के रूप में बोलूं तो हाथ पैर में सुन्नता या झुंझुनी, सर्वाइकल या गले में दर्द, और उसके बाद अगला है कमर दर्द। ये प्रमुख मुख्य रूप से समस्याएं हैं जो मस्तिष्क रोग के अंदर आती हैं, और बहुत सारे टाइप से होते हैं समस्याएं, लेकिन ये जो 5-6 हैं ये मुख्य रूप से समाज में बृहद रूप से फैला हुआ है।
0: जी जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब, एक बहुत ही वृहद रूप में पाया जाने वाला मस्तिष्क से संबंधित रोग है मिर्गी।
1: जी,
0: तो इसके बारे में बताइए कि मिर्गी के दौरे क्या होते हैं।
1: मिर्गी समाज में मतलब प्रमुख रूप से फैला हुआ बीमारी है। ऑलमोस्ट हम बोला जाए कि 600-700 लोगों में एक किसी को मिर्गी या एपिलेप्सी की समस्या हो सकती है। यह बहुत ही कॉमन है, खासकर हमारे इंडिया और छत्तीसगढ़ बेल्ट में बहुत ही कॉमन है। मतलब ये मिर्गी ऐसा समस्या है कि हर गांव जाओ तो

0: कम से कम आपको 8-10 मरीज मिल ही जाएंगे। और इसमें मुख्य रूप से ये होता है, जैसे अचानक से हाथ पैर में अकड़न आना, हाथ पैर का मुड़ जाना, चेहरे का ऊपर की ओर जाना, आंखें ऊपर चले जाना, मुंह को चबा देना और साथ साथ मुंह से खर्राटे की आवाज आना और मुंह से झाग आना, ये सब स्थिति होने के बाद मरीज को कुछ टाइम के लिए बेहोशी आता है और बेहोश होने के बाद मरीज गिर जाता है। ये स्थिति लगभग लगभग 1 से 2, 4 मिनट, 5 मिनट तक ही बनी रह सकती है। ये समाज में जो फैला मुख्य रूप से जो अपन देख पाते हैं, ये वो समस्याएं हैं। इसके और दूसरी समस्याएं भी होती हैं जो मिर्गी का ही रूप है, लेकिन इतना वृहद रूप से शरीर में सिम्टम नहीं दिखाता। उनमें एक है कि अचानक से कुछ क्षण के लिए कोई एक हाथ पैर कमजोर हो जाना, या फिर उस हाथ या पैर में कुछ टाइम के लिए एबनॉर्मल मोमेंट्स होना, अपने आप हिलना। और तीसरा एक टाइप होता है जिसमें कि कुछ टाइम के लिए अपन अपने रिश्तेदार या फिर दोस्त यार किसी को पहचान नहीं पाते। ये कुछ होता है ओनली 10-15 सेकेंड्स के लिए। अचानक से हम जिस इन्वायरमेंट में हैं, जिस माहौल में हैं, उससे अपन कट ऑफ हो जाते हैं। ये कुछ कॉमन कॉमन समस्याएं हैं इपिलेप्सी, जो इपिलेप्सी के अंदर आती हैं, इपिलेप्सी के प्रकार हैं।
1: जी। तो डॉक्टर साहब, जब हम मिर्गी की बात करते हैं तो इसके क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं?
0: मिर्गी के लगभग लगभग बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इनमें से एक तो है, जैसे किसी मरीज को लकवा हो गया, लकवा होने के बाद ब्रेन रिकवर कर रहा है तो सीजर आ सकता है या फिर मिर्गी आ सकता है। दूसरा, एक्सीडेंट के बाद में जो चोट लगती है सिर में, उसके बाद वो स्कार बनता है, वहां से मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। और जैसे ब्रेन में टीबी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, ये एक प्रमुख कारण है उसका भी। कुछ कंडीशन में जेनेटिक्स में होता है, जेनेटिकल कंडीशन में फैमिली में चलती आती रहती है, ये बच्चों में ज़्यादातर होता है। और वयस्क लोगों में खासकर एक्वायर्ड या फिर जो हम बाद में प्राप्त करते हैं वो कॉमन कारण होता है। जैसे मैंने बताया, इस लकवा हो गया, कोई चोट लग गया। और आजकल प्रमुख रूप से देखा जा रहा है, जैसे यंगस्टर्स में देखते हैं खासकर, कि नशे का प्रचलन बढ़ रहा है, अल्कोहल कंजप्शन बढ़ रहा है, सिगरेट स्मोकिंग बढ़ रहा है, इन सब से भी मिर्गी के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे जो मरीज या फिर जो इंसान अल्कोहल के प्रति डिपेंडेंट हो गया है, उसको लंबे टाइम तक अल्कोहल का सेवन कर रहा है, लंबे टाइम तक स्मोकिंग या फिर टोबैको का सेवन कर रहा है, तो बॉडी उसके अभ्यस्त हो गया, हमारा शरीर उसके अभ्यस्त हो चुका है। जब हम अचानक से कुछ दिन के लिए अधिक मात्रा में लिए, फिर अचानक से एक दिन कम कर दिए, तो ये एकदम से दौरा आने का कारण बन सकता है। तो खासकर यंगस्टर्स में जो अधिकतम टाइम जो कंजप्शन कर रहे हैं अल्कोहल का, निकोटीन स्मोकिंग कर रहे हैं, उनमें मिर्गी आने के चांसेस और ज्यादा हो जाती हैं।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, ये जो मिर्गी के दौरे होते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि बिना किसी चोट के भी, जैसे कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं हो, उन छोटी उम्र के बच्चों को भी देखने को मिलती है, तो इसका कारण क्या हो सकता है?
0: जनरली ऐसे में ब्रेन के अंदर ही अंदरूनी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। कई बार जो बच्चा पैदा होता है, उसके उस टाइम जब पैदा हुआ तब ऑक्सीजन की कमी हो गई, ग्लूकोज कम हो गया, या फिर ब्रेन का इन्फेक्शन हो गया, तो या फिर बच्चों में कॉमनली देखा जाता है कि बुखार आया, तेज बुखार आया, 103-104 डिग्री फीवर आया है, उसके बाद में उसको झटका आ गया, तो बच्चों में ये बहुत कॉमन रहता है और उसको बोलते हैं अपन फेब्राइल सीजर। तो बच्चों में बिना कुछ स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी के भी सीजर या दौरे आ सकते हैं। कुछ कारण रहते हैं जो जन्मजात ब्रेन में बनावट के कारण भी, नॉर्मल बनावट है या फिर थोड़ा डिफेक्ट है, तो उस कारण से भी वो सीजर का एक कारण बन सकता है। लेकिन मुख्य रूप से बच्चों में या फिर मिडिल एज के लोगों में इसका कारण अधिकांश समय पता नहीं चल पाता, लेकिन फिर भी हमको उसको आगे इन्वेस्टिगेशन करना है, आगे जांच करना है, इसके लिए हम उनको प्रमोट करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी थी ये, और समाज में मिर्गी के लिए कई कई तरह की बातें होती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि आपकी पसंद का एक गीत हम इस कार्यक्रम में सुने।
0: जैसे मेरे फेवरेट सॉन्ग तो आशा ताई द्वारा गाया हुआ गाना है, उनमें से एक मुझे बहुत ही पसंद आता है, वो है इन आंखों की मस्ती।
1: तो बहुत अच्छा गीत है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, डॉक्टर की सलाहकार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर उमेश कुमार चंद्रा जी से, जो एक मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ हैं, और बात कर रहे थे मस्तिष्क संबंधी कुछ विकारों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि हम इस गीत के पहले बात कर रहे थे, मस्तिष्क में होने वाली एक जो बीमारी है मिर्गी, जिसे एपिलेप्सी कहते हैं, उसके कारण उनके लक्षण क्या होते हैं? तो डॉक्टर साहब, जब हम देखते हैं किसी व्यक्ति को मिर्गी होता है, तो समाज में इसके क्या क्या तथ्य हो सकते हैं?
1: मुख्य रूप से जो जादू टोना वाला पहले भी भ्रांतियां फैली हुई हैं, उनके अंदर भी ये अभी भी आता है। अधिकांश लोग को लगता है कि ये कोई बीमारी ना होके कोई जादू टोना का प्रभाव है क्या, ऐसा लगता है। और लोग ऐसा मिर्गी के दौरा आते हुए भी उनको बीमारी को अनदेखा करते हैं, मरीज के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। कहीं पर देखा जाता है कि उनको अननेसेसरी टॉर्चर या फिर झाड़ फूंक के लिए ले जाया जाता है, जहां पे उनको फिजिकली टॉर्चर भी किया जाता है। और मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि जैसे मरीज को किसी और के सामने दौरा आ गया, तो उनका जो प्रचलित तरीका है इलाज करने का या प्रचलित तरीका है कंट्रोल करने का, उसके अंदर वो लोग उसको लाइक चम्मच है, सॉलिड चीजें, उसको मुंह में डाल देते हैं, जिस कारण मरीज को फिजिकल ट्रॉमा या फिर उनके दांतों को चोट लगना, जीभ पे चोट लगना बहुत कॉमन हो जाता है। और एक और होता है इसमें, जब मिर्गी से जो आदमी प्रभावित है उसका जब शादी उम्र आता है, तो सबसे ज्यादा उसको यहाँ पे चीजों को झेलना पड़ता है या फिर सामना करना पड़ता है बोलूंगा। जैसे शादी के टाइम आया, शादी में उसको सामने वाले को उसने बीमारी के बारे में बताया, तो सब लोग को ये लगता है कि लाइलाज बीमारी है और ये पता नहीं कब से प्रभावित है, ठीक होगा कि नहीं होगा, आगे जीवन में क्या और प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये सबको देखते हुए उसके लिए बहुत सारा चीजों का सामना करना पड़ता है। ऐसे मरीज जो मिर्गी से प्रभावित हैं उनको, तो ऐसे जो मरीज मिर्गी से प्रभावित हैं उनको, वो हमारी तरह नॉर्मल आदमी है, कुछ टाइम के लिए उनके ब्रेन में करंट पैदा हो रहा है और वो उसको दौरे आ रहे हैं, कोई लंबी बीमारी है नहीं उसके लिए, कुछ फ्यू मिनट्स या सेकेंड्स के लिए आएगा, वो ठीक हो जाएगा ऐसा। तो उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये एक टाइप से भ्रांति है जो प्रमुख रूप से समाज में है।
0: यदि कोई व्यक्ति एपिलेप्सी या मिर्गी की बीमारी से पीड़ित है, तो हमें किन चीजों से उन्हें दूर रखना चाहिए?
1: जैसे अपन देखते हैं कोई मरीज एक रास्ते में चल रहा है, अपना दैनिक कार्य कर रहा है, उस दौरान उसको कभी भी सीजर आ सकते हैं, उसमें कोई दो मत की बात नहीं है। तो मेरा पहला दायित्व तो बनता है उसको प्लेन जगह पे, सुरक्षित जगह पे, जहां पे कोई धारदार चीज ना हो, कोई उबड़ खाबड़ जगह ना हो, वहां पे तुरंत स्विच करना। वहां पे ले जाते ही मुझे उनको एक तरफ करवट लेके लेटाना रहता है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, ताकि जो मुंह में लार बन रहा है या फिर जो अधिकतम सिक्रीशन आ रहा है मुंह में, वो फेफड़े में ना जाए, तो उससे उसका सांस लेने का तरीका ठीक हो जाएगा। एस्पिरेशन, जो अपन लार बनता है, वो फेफड़े में जाने की संभावनाएं रहती हैं वो कम हो जाती हैं, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने का चांस रहता है वो भी बहुत हद तक कम हो जाता है। और जो भी दौरे आते हैं वो लगभग 80-90% केसेस में कुछ आधा मिनट एक मिनट के अंदर ही शांत हो जाते हैं अपने आप। तो हमको ऐसे मरीजों को बाहर के तौर पे, कि उसको बाहर कोई नुकीली चीज से चोट ना लगे, उसके लिए उनको सेफ जगह पे ले जाना रहता है। जैसे कोई पानी वाली जगह पे आ गया किसी को, तो मेरा पहला दायित्व है कि उसको तुरंत मैं पानी की जगह से थोड़ा दूर ले जाऊं, जहां पे प्लेन जगह हो, जहां पे चोट लगने की संभावनाएं कम हो। आग वाली जगह पे आ गया तो वहां से थोड़ा दूर ले जाऊं, बिकॉज ऐसे मरीज कुछ टाइम के लिए अपना पूरी तरह कंट्रोल खो देते हैं, उनका खुद के बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता, तो उनको पहले अपने सेफ जगह पे शिफ्ट करें।
0: तो डॉक्टर साहब, इसमें जो एक सबसे जरूरी बात होती है कि जब कोई रोग होता है तो उसके कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो उसे बढ़ा सकते हैं, तो क्या मिर्गी के भी ऐसे कुछ ट्रिगर्स हैं?
1: जी,
0: ऐसे
1: जी।
0: कारक होते हैं जिनसे इस रोग के बढ़ने की संभावना होती है?
1: मिर्गी के रोग में ट्रिगरिंग फैक्टर बहुत ज्यादा है, और सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि हम उनको थोड़ा सावधानी बरत के अवॉइड कर सकते हैं। इनमें मुख्य कारण रहता है, डॉक्टर द्वारा जो दवाई एडवाइस किया गया है उसको आप फिक्स टाइम पे लीजिए, जिस डोज में बोला गया है उस डोज में लीजिए और फिक्स टाइम पे लीजिए। उससे क्या है, बॉडी में दवाई का लेवल बना रहता है, तो आगे मिर्गी आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। और दूसरा चीज ये कि एक ट्रिगरिंग फैक्टर रहता है नींद का कम होना, जो नॉर्मल एडवाइस किया गया नींद है कि अपन रात को टाइम से सोएं और टाइम से उठें, उसमें लगभग 7-8 घंटे का प्रॉपर निद्रा का टाइम रहता है, रात में साउंड स्लीप बोलते हैं। तो अपन 7-8 घंटा प्रॉपर स्लीप लें, दिन में 1 घंटा नैप ले सकते हैं, ये कॉमन हो गया। उसके बाद जनरली अपन जो मिर्गी के पेशेंट हैं उनको सलाह देते हैं कि फास्टिंग अवॉइड करें, खाली पेट ज़्यादा टाइम तक ना रहें, उससे भी मिर्गी ट्रिगर हो सकता है। और तीसरा, अपने पहले भी बात करी, अल्कोहल या फिर स्मोकिंग से भी इसका ट्रिगर होता है।

0: जी डॉक्टर साहब,
1: किसी भी तरह से स्ट्रेस लेते हैं उससे भी अपना ट्रिगर हो सकता है, तो स्ट्रेसफुल कंडीशंस को अवॉइड करना बेहतर रहता है।
0: जी, तो डॉक्टर साहब अगर हम इसके इलाज की बात करें
1: जी,
0: तो इसके क्या इलाज हो सकते हैं और कितने कारगर होते हैं?
1: मिर्गी अभी के समय में लगभग पूर्ण रूप से मिर्गी को ठीक कर सकते हैं। हमें बेसिक अपने को चाहिए तो मरीज को दवाई के प्रति एडहेरेंट रहना पड़ेगा, प्रॉपर दवाई को टाइम से लेना पड़ेगा। और इसमें मेन इलाज के तौर पे होता है, प्रारंभिक तौर पे होता है मस्तिष्क का इमेजिंग होता है, सीटी स्कैन या फिर एमआरआई करा कर अपन देख सकते हैं पहले कि ब्रेन में कोई घाव तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कुछ और कारण तो नहीं बन रहा जिस कारण से ये दौरे का एक कारण बना हुआ है। एक ईजी नाम की जाँच होती है जिसमें अपन मस्तिष्क की तरंगों का जाँच करते हैं कि कहाँ से दौरा आ रहा है, कहाँ से ये करंट की एक्टिविटी हो रही है। तो ये प्रारंभिक जांच होता है और बाकी अदर कारण में शुगर हो गया, रूटीन ब्लड टेस्ट हो गया, इनका टेस्ट कर सकते हैं। ये सब आजकल लगभग सभी जगह पे अवेलेबल है। और दूसरी बात है कि अपन इसमें इलाज की बात करते हैं तो आजकल लगभग मिर्गी पूरी तरह ठीक किया जा सकता है अभी कंडीशन में। तो इतनी सारी दवाइयां अवेलेबल है मार्केट में, लगभग 50-60 तरीके की दवाइयां हैं पुराने जमाने से लेकर नए जमाने तक की पूरी दवाइयां उपलब्ध हैं। और अभी की दवाइयां बहुत ही पोटेंट हैं मिर्गी को ठीक करने के लिए। अपन टाइम से लें उन दवाइयों को और डॉक्टर के सलाह माने तो मिर्गी से पूर्णतः बचा जा सकता है।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। तो डॉक्टर साहब, हम आप ये जानना चाहेंगे कि ये कोई महिला गर्भवती है और उस समय उस महिला को जो है एपिलेप्सी और मिर्गी की संभावना या बीमारी पहले से है, तो उन्हें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और इसका क्या कोई इफेक्ट बच्चे पर भी पड़ सकता है क्या?
1: जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है अभी के समय में। जैसा मैंने पहले बताया, एपिलेप्सी जनरली यंगस्टर्स को ज्यादा इफेक्ट करती है, स्टार्टिंग लगभग इसी उम्र में होता है। तो इसका जाहिर सी बात है, जब शादी की उम्र में लड़कियां आती हैं तो उनको उसके शादी के पहले भी काउंसलिंग की जाती है, शादी के बाद भी। उसके बाद जैसे गर्भावस्था की बात आती है कि उस दौरान सीजर आ गया या फिर उससे पहले ही उनको मिर्गी के लक्षण हैं, दवाई चल रहा है, तो मैं क्या करूं क्या ना करूं? तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि यदि आपको पहले से ही मिर्गिया फिट्स की समस्या है, आप दवाई ले रहे हैं, तो डॉक्टर आपके उस कंडीशन को जानते हैं। आप यंग हो, शादी होने वाला है या फिर आप मैरिड हो तो प्रेगनेंसी हो सकता है, तो उसके लिए आपको दवाई उस तरह ही चुनी जाती है पहले से ही, जो कि आपके हेल्थ को और आने वाले बच्चे के हेल्थ को अभी प्रभावित ना करे या फिर कम प्रभावित करे। तो अभी जो मॉडर्न मेडिसिन में जो दवाइयां हैं एपिलेप्सी या फिट की, वो काफी हद तक सुरक्षित हैं और होने वाले बच्चे के लिए ऑलमोस्ट सुटेबल कंडीशन में होती हैं दवाइयां। तो आपको घबराने की बात नहीं रहती, बस आपको इतना मानना है कि डॉक्टर ने जो आपको जिस डोज में एडवाइस किया है दवाइयां, उस डोज में प्रॉपर तरीके से लेना है और दवाइयों के प्रति लापरवाही नहीं बरतना है। और यदि इसका प्रभाव ऐसा हो सकता है कि आप कोई प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट होने वाली हैं और अचानक से दवाई बंद कर देते हैं, उस दौरान झटका आता है, तो एबॉर्शन का रिस्क ज्यादा हो जाता है और मदर और बच्चे दोनों को खतरा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि अभी की दवाइयां जो मॉडर्न मेडिसिन में झटके की दवाइयां हैं, वो काफी हद तक सुरक्षित हैं और होने वाले बच्चे को और उनकी मदर को कोई प्रभाव नहीं डालती। तो आपके चिकित्सक जो हैं ऐसे दवाइयों को ही सजेस्ट करेंगे आपको, जो कि आपके हेल्थ और बच्चे के हेल्थ को प्रभावित न करें। इसलिए दवाइयां पूर्ण तरह सुरक्षित हैं, तो टाइम से जैसे आपके डॉक्टर ने सलाह दिया है वैसे लेंगे तो ज्यादा बेहतर, ज्यादा बेनिफिट रहेगा।
0: जी डॉक्टर साहब, जब एपिलेप्सी या मिर्गी की बात होती है तो इसमें दवाइयां जो लिखी जाती हैं, तो क्या जो पेशेंट है वो दवाइयों को रेगुलर खाए और दवाइयों को इस्तेमाल करे तो क्या वो पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता है?
1: बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जनरली हमारे पास जो भी मरीज आते हैं मिर्गी के, उनका एक सवाल ये रहता है कि मुझे दवाई कब तक चलेगी या फिर मैं दवाई कब तक खाना पड़ेगा। तो ये कंडीशन निर्भर करता है ब्रेन के कोई बनावटी स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, ब्रेन में कोई पुरातन घाव तो नहीं है। जनरली जिन मरीजों को अपन इमेजिंग या सीटी एमआरआई में कुछ बड़ा घाव नहीं दिखता है या फिर कुछ ग्रॉस एबनॉर्मलिटीज नहीं है, उनमें 2 से 3 दवाइयाँ चलती हैं और ये लगभग लगभग 3 से 5 साल में ऐसे मरीज जनरली ठीक हो जाते हैं। हमको बस एक काम करना है, जो प्रॉपर डोजिंग एडवाइस की गई है उसको टाइम से लेना है और जो स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, जो ट्रिगर हैं, उनको अवॉइड करना है। और कुछ ही केसेस रहते हैं जिनमें ग्रॉस स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी है ब्रेन में या फिर पुराना चोट है, स्कार है, 2-3-4 दवाइयों के बाद भी झटका कंट्रोल नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे ही मरीज होते हैं जिनकी जो फिट या झटका आने की संभावना है उसको कंट्रोल करने में दिक्कत होती है, लेकिन ऐसे मरीज भी दवाइयों के साथ, जैसे मैंने बताया, दवाइयाँ पूरी तरह सुरक्षित हैं आज के समय की और आगे हमारे हेल्थ पे साइड इफेक्ट या फिर उनका बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं रहता है, तो हम इन दवाइयों को लंबे टाइम तक ले सकते हैं, दवाई पूरी तरह सुरक्षित है। तो दवाई के डोज या फिर दवाई की जो नंबर ऑफ टेबलेट्स हैं, कितना टेबलेट चल रहा है, दिन में कितनी बार खा रहे हैं, ये हम डिसाइड ना करें कि दिन में 4-5 दवाई चल रही है, इतना हेवी डोज में हो रहा है, तो डोजिंग डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो जानते हैं आपके हेल्थ के बारे में, आपके लिए कितनी दवाइयाँ कितनी मात्रा में सेफ हैं, तो हम उसका कैलकुलेशन ना करें कि दवाई हमारे लिए ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे मरीज कुछ मान चलो 10-15% केसेस होते हैं जो रिफ्रैक्टरी सीजर्स के पेशेंट रहते हैं, लेकिन जो बोलूंगा 70-80% केसेस हैं ऐसे, एक या दो दवाई से कंट्रोल हो जाता है और उनमें अधिकांश केसेस जो हैं वो 5 साल के अंदर में उनको ठीक किया जा सकता है।
0: तो बहुत अच्छी जानकारी है डॉक्टर साहब ये। और जिन भी लोगों को इस तरह की समस्याएं हैं एपिलेप्सी से संबंधित, वो डॉक्टर साहब की बताई बातों पे जरूर गौर करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। तो डॉक्टर साहब, जब हम एपिलेप्सी के पेशेंट की बात करते हैं तो उन्हें अधिकतर हिदायत दी जाती है कि उन्हें गाड़ी चलाना जो है, कभी कभी लोग मना कर देते हैं कि आप गाड़ी ना चलाएं, आपका जहाँ पे कार्य होता है वहां ना जाए, पानी जहाँ पे होता है वहां ना जाए।
1: हाँ, जैसे मरीज जो इस शुरुआती अवस्था में है, जिनका दौरा कंट्रोल नहीं है और जिनको फ्रीक्वेंट सीजर आ रहे हैं, हम ऐसे मरीजों को जनरली एडवाइस करते हैं ताकि गाड़ी ना चलाएं। दूसरा चीज है, कोई तैराकी जगह है, तालाब है, स्विमिंग पूल है, ऐसे जगह पे ना जाएं और आग वाली जगह, ऊंचाइयों वाली जगह से बचें। ऐसा हम सलाह इसलिए देते हैं ताकि ये मरीज दौरे के दौरान अपने होश कुछ टाइम के लिए खो देते हैं। पानी के अंदर यदि दौरे आते हैं उनको, आग के आसपास दौरे आते हैं, तो जनरली उनको खतरा ऐसे ही बढ़ जाता है। पानी के अंदर दौरे आ गए तो सांस की दिक्कत, अचानक से मुंह में पानी जाने, सब समस्याएं आ जाती हैं। आग के पास आ गया तो जलने का खतरा रहेगा, हाइट से गिरने का डर रहेगा, ये सब है। और जनरली जब तक दौरा कंट्रोल नहीं है तो अपन इनको गाड़ी चलाने की सलाह, स्विमिंग की सलाह ऐसे नहीं देते हैं। सबसे ज्यादा रिस्क रहता है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, जहाँ एक ड्राइवर है जो बहुत सारे लोग को एक साथ ले जा रहे हैं, बस का ड्राइवर हो गया, कार ड्राइवर हो गया, ट्रेन ड्राइवर, तो ऐसे लोगों में ज्यादा रिस्क रहता है, तो उसको डेफिनेटली अवॉइड करते हैं। लेकिन जैसे 2-व्हीलर चलाना है, सिंगल ड्राइविंग है, तो दौरा जो है 2 से 3 साल तक पूरी तरह कंट्रोल है, दवाई पे आप पूरी तरह विश्वास करते हैं, दवाई पूरी तरह ले रहे हैं, आप दवाई लेने के बाद दौरे नहीं आ रहे हैं 2 से 3 साल तक, तो आप सिंगल हैंड गाड़ी चला सकते हैं, जैसे खुद अपना एक 2-व्हीलर हो गया। और लेकिन आपको जहां तक हो सके सावधानी रखनी चाहिए, जो पीछे में एक सहायता के लिए किसी को रख सकते हैं आप। यदि जब आपको लगता है आप प्रॉपर नींद नहीं ले पाए हैं या फिर आपने कोई दवाई डोज मिस कर दी है, तो उस कंडीशन में सलाह दूंगा कि डेफिनेटली आप गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि उस दौरान आपको दौरे आने का रिस्क बढ़ जाता है।
0: डॉक्टर साहब, कई ऐसे भी पेशेंट होते हैं एपिलेप्सी से संबंधित जो नशा भी करते हैं, तो ये नशा कितना हानिकारक हो सकता है ऐसे पेशेंट्स के लिए?
1: आजकल जो एपिलेप्सी की दवाइयां हैं काफी हद तक सेफ हैं और इनसे कोई बड़ा साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन यदि कोई मरीज ऑलरेडी एडिक्टेड है दूसरे चीजों का, जैसे अल्कोहल हो गया, निकोटीन हो गया या फिर दूसरे तरह के मादक पदार्थ का, तो यदि ऐसे मरीज जो दवाइयां लेते हैं और साथ में बैड हैबिट्स या फिर जो मादक पदार्थों का यूज भी करते हैं, तो इस दौरान उनको दवाइयों का साइड इफेक्ट होने का भी चांस बढ़ जाता है। इसमें आता है कि आप गहरी बेहोशी आना, एबनॉर्मल बिहेवियर आना, लीवर किडनी पे असर आना, ये सब का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। मरीज जो ऑलरेडी एल्कोहल पे हैं, कई बार उनको नशे के दौरान या फिर जो स्मोकिंग करते हैं उनको उस दौरान में दवाइयों को डोज का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। यदि सेम डोज वो दवाई ले रहे हैं तो प्रभावशाली नहीं हो पाता, या फिर नशे के दौरान वो दवाई मिस करते हैं तो उनको फिट आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं
0: जी।
1: और साथ में उनके फिर लाइफ को रिस्क बढ़ जाता है
0: जी।
1: तो ऐसे कंडीशन में मैं यंगस्टर्स या यूथ को सलाह दूंगा कि नशे से बचें ताकि इसका इफेक्ट जो आपके बॉडी पे कम हो, साथ में आपकी जो मेडिसिन भी रेगुलर चलते रहें और आपका जो एपिलेप्सी है, बीमारी है, वो आपके कंट्रोल में रहे। जैसे जैसे अपन अल्कोहल या फिर निकोटिन के सेवन को बढ़ाते जाते हैं, बॉडी उसका अभ्यस्त होते जाता है, साथ ही साथ जो एपिलेप्सी की दवाइयों का इफेक्ट भी कम होते जाता है
0: जी।
1: तो हो सके आपकी दवाइयां और बढ़ जाएं फ्यूचर में, आपके हेल्थ को और नुकसान होने का खतरा हो, तो सलाह दूंगा कि नशे से जहां जिस हद तक हो सके बचें।
0: और श्रोताओं, डॉक्टर के सलाह कार्यक्रम में आज मस्तिष्क से संबंधित जो एक बहुत ही वृहद बीमारी है मिर्गी, जिसे एपिलेप्सी कहते हैं, इसके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। तो हमारे श्रोताओं से हमारी यही उम्मीद होगी कि डॉक्टर साहब की बताई गई बातों को जरूर ध्यान देंगे और जो भी व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित हैं वे सावधानी बरतें और डॉक्टर के पास अवश्य जाएं और डॉक्टर की बताई गई दवाइयों के अनुसार ही अपना डोज सुनिश्चित करें। तो डॉक्टर उमेश कुमार चंद्रा जी, कार्यक्रम में आप आए और मस्तिष्क संबंधित जो एक खास बीमारी है एपिलेप्सी मिर्गी, इसके बारे में आपने जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में अभी आप सुन रहे थे मस्तिष्क से संबंधित रोग मिर्गी कारण लक्षण एवं उपचार। इस विषय पर डॉक्टर उमेश कुमार चंद्रा से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता थे रमा शंकर। बातों बातों में इसमें सुनते हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर अंबिकापुर में संचालित गार्बेज कैफे के संचालक रितेश सैनी से ली गई भेंट वार्ता। प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ला की है।
1: श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। श्रोताओं कल 5 जून को विश्व भर में पर्यावरण दिवस मनाया गया। प्लास्टिक का कचरा इस समय दुनिया और पर्यावरण के लिए एक चुनौती बना हुआ है। इस समस्या के समाधान के लिए अंबिकापुर के एक कैफे ने अनूठी पहल की है। इस गार्बेज कैफे में प्लास्टिक के कचरे के बदले लोगों को भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराया जाता है। हमारे सरगुजा संवाददाता आलोक शुक्ल ने इस कैफे के संचालक रितेश सैनी से बातचीत की है। पेश है इस भेंटवार्ता के मुख्य अंश।
2: श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं आलोक शुक्ल। प्लास्टिक की बोतलें कचड़े इन सब को डिस्पोजल करने के लिए हमेशा समस्या आती है कि इनका नष्टीकरण कहां जाए। क्यों? क्योंकि ये पर्यावरण को जो है प्रदूषित करते हैं। प्लास्टिक के चाहे कचरे हो, प्लास्टिक के सामान हो, प्लास्टिक की बोतल, क्योंकि आजकल हर चीज में चाहे मिनरल वाटर लेना हो, पानी की बोतल लेना हो या कोई भी अन्य पदार्थ लेने हो तो प्लास्टिक की बोतलों में होते हैं। इससे होने वाला प्रदूषण जो है वो एक बड़ी समस्या है। लेकिन भारत देश के एक छोटे से शहर अंबिकापुर में इस प्रदूषण से निपटने के लिए एक अनोखा उपाय किया गया। इस उपाय में एक अपील की गई कि जो भी यहाँ पे आए हम उनके लिए रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, प्लास्टिक के जो कचरे हैं जिससे प्रदूषण फैलता है वो उसे अंबिकापुर के बस स्टैंड में, जो सरकारी बस स्टैंड है वहां पे लाएं, गौरव पथ पे जो बना हुआ है, और यदि वो कचरा लाते हैं तो उसके बदले उन्हें भरपेट खाना मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे की गई एक पहल है जो पूरे देश में प्रचारित हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका उल्लेख हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में किया। तो इस प्रेरक कहानी के पीछे जिनका हाथ है या जो यहाँ संचालन कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे, नगर निगम के ही रितेश सैनी जी से। नगर निगम में जिस तरीके से ये हुआ, इसके पीछे की अवधारणा क्या थी, कैसे ये विचार आया?
3: जी देखिए, अंबिकापुर नगर निगम में हम लोग वर्ष 2014 से ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे कार्य कर रहे थे। इसके अंतर्गत अंबिकापुर नगर निगम में हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल अपनाया, मतलब शहर में जो कचरा उत्पन्न हो रहा है उसको किसी एक स्थान पे

0: वॉशिंग होने के बाद उसका दाना बनाने की मशीन जो प्लास्टिक का ग्रेनुल्स बनता है, ताकि हम उस प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकें। प्लास्टिक को जितना ज्यादा अपन रिसाइकल कर पाएंगे वो सर्कुलर इकोनॉमी की ओर एक हमारा अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। दाना बनने के बाद जो प्लास्टिक के उत्पाद बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो हमसे उस दाने को खरीद रही हैं। तो इतनी व्यवस्था जब बन गई तो उस प्लास्टिक की एक वैल्यू आई। जो लोकल वेंडर्स थे भी तो उनके पास बहुत ज्यादा रेट नहीं मिलता था, 2 रुपए किलो 4 रुपए किलो में ही वो खरीदते थे। जैसे ही हमने दाना बनाना शुरू किया, दाना बनाने के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनसे जब रेट्स मिलना शुरू हुए, तब हमको ये समझ में आया कि इस प्लास्टिक को दाना में कन्वर्ट करने के बाद 30 रुपए से लेकर 60-70 रुपए किलो तक बेचा जा सकता है। तो वो प्लास्टिक जो 5-6 रुपए किलो में जा रही थी उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है। गार्बेज कैफे में यह होता है कि लोग अपने घरों में या दुकानों में जो काम करने वाले वर्कर हैं या जो रैक पिकर्स हैं वो अच्छी साफ क्वालिटी की प्लास्टिक इकट्ठा करके ला रहे हैं, तो साफ सुथरी अलग की हुई प्लास्टिक हमको मिल गई। चूंकि हमारे पास प्लास्टिक पे एंड पॉइंट तक का मैकेनिज्म है, वो प्लास्टिक को हमने सीधे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, हमारा जो दाना बनाने की फैक्ट्री है वहां पर डाल दिया, जो दीदियां काम करती हैं, दाना बन गया। अब हमने अंबिकापुर में ये गार्बेज कैफे स्टार्ट किया। चूंकि ये बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे है, बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे होने के कारण क्या होगा कि अधिकतर लोगों के अप्रोच में है। चूंकि प्लास्टिक घरों से लाया हुआ है या सड़कों से लाया हुआ है, गंदा हो सकता है, रेस्टोरेंट में हाइजीन को भी मेंटेन करना है तो प्लास्टिक लेके रेस्टोरेंट में नहीं आना होता है। जस्ट रेस्टोरेंट के सामने में रोड के उस साइड हमारा अलार्म सेंटर है, वहां पे जाते हैं, वो प्लास्टिक को डिपॉजिट करते हैं, उसका वजन होता है, वजन होने के बाद उनको दीदियां टोकन इशू कर देती है। उस टोकन को लेकर आपको गार्बेज कैफे में आना है। ये जो टोकन है उसकी वैलिडिटी 7 दिन की होती है। ऐसा नहीं कि आप आज लिए तो आज ही आपको उसको खाना ही है। आप 7 दिन के अंदर कभी भी आकर के उस टोकन को यहाँ जमा करिए और यहाँ पे जो रेस्टोरेंट जो चला रहे हैं वो उसके बदले में उनको भरपेट भोजन कराएंगे।
1: गार्बेज कैफे की जो शुरुआत हुई वो हुई 2019 में।
0: यस,
1: उस समय कुछ दिक्कतें आई शुरू करने में या लोगों के जो विचार थे वो कैसे थे?
0: 2019 में इसका जो शुरुआत करने का प्रक्रिया हुआ था तो एक हम लोग एक आईसी एक्टिविटी के अंतर्गत बस स्टैंड परिसर में ही साफ सफाई का एक महाअभियान का आयोजन हम लोगों ने उस दिन किया था। तो जब साफ सफाई का महाअभियान किया गया तो उसमें हमारे महापौर हो गए, नगर निगम के अधिकारी गण हो गए, सारे लोग यहाँ पे थे और सफाई कर्मचारी लोग उसमें स्वीपिंग करके प्लास्टिक के कचरे को, अन्य सभी कचरों को इकट्ठा कर रहे थे। तो वहां पे एक बात आई कि क्या इस कचरे के बदले में हम लोगों को कुछ इंसेंटिव मिल सकता है क्या? तो उस समय जो अधिकारी गण थे उन लोगों ने कहा जो सबसे अच्छा प्लास्टिक इकट्ठा करके लाएगा उसको आज मेरी ओर से खाना। तो इस तरह से एक चीज समझ में आई कि नहीं, ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। फिर दूसरा, इसको आगे बढ़ने का हमने इसलिए उम्मीद किया क्योंकि प्लास्टिक की वैल्यू हमको ये समझ में आ गई कि जब अगर प्लास्टिक का प्रॉपर आपके पास सेग्रीगेशन है, आपके पास दाना बनाने की मशीनें हैं और आपके पास वेंडर हैं, आप प्लास्टिक को कहाँ बेच सकते हैं, सही मूल्य अगर अपने को मिल रहा है तो हम इसको सस्टेन कर सकते हैं। कि अगर मान लीजिए 1 किलो प्लास्टिक जो सामान्य रूप से कोई 2 रुपए किलो में बेच रहा होगा, हमारे पास आके प्रोसेस होकर वो 28-30-40 रुपए किलो में जा रही है, सारे खर्चों को काट करके अगर 1 रुपए प्लास्टिक में 20 रुपए भी मेरा बच रहा है तो उस 20 रुपए में इस रेस्टोरेंट वाले को दूंगा। ये रेस्टोरेंट प्राइम लोकेशन पे है, यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो खाने आते हैं उनके अलावा अन्य जो यात्रीगण आते हैं उनको भी ये खिला सके, इसलिए उनकी ओर से भी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ऐसा हम लोगों ने टेंडर किया।
1: ये ऐसा नहीं है कि खाली जो कचरा लेके आ रहे हैं उनके लिए,
0: यस
1: ये सभी के लिए है।
0: जी बिल्कुल,
1: बाकी जो आते हैं तो उसके लिए भी एक रेट है।
0: उसके लिए यहाँ पे रेट है, आप पैसा देके भी खा सकते हैं और जो गार्बेज कैफे में जो प्लास्टिक जमा करके टोकन ला रहे हैं वो भी खा सकते हैं। अब यहाँ पे टोकन वालों के साथ कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए हम लोगों ने इनके साथ एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि 2 सीट हमेशा, 2 टेबल मतलब 8 व्यक्तियों के बैठने की जो अरेंजमेंट है वो हमेशा रिजर्व रहेगा। जो टोकन लेकर के आ रहे हैं वो या तो सड़क से कचरा बीनने वाले होंगे या कुछ होंगे, तो उनके साथ कोई भेदभाव हो ऐसी स्थिति ना बने, तो इनको ये कहा गया कि आपको 2 टेबल रिजर्व रखना है, आप कभी भी मतलब उनको वापस नहीं भेजोगे।
1: आप ये बताइए कि इसमें से प्रतिदिन कितना आय हो जाता है यहाँ पे?
0: जब देखिए हमने इस गार्बेज कैफे की शुरुआत की थी तो शुरुआत के 1-2 महीने में तो दो तीन लोग आ रहे थे, उसके बाद फिर काफी 15-20 टोकन 30 टोकन 40-50 टोकन तक पर डे जाना शुरू हुआ। जब कोविड आया, कोविड के पीरियड में एक गाइडलाइन जारी हुई थी कि रेस्टोरेंट को अपन को खोलना नहीं है, तो उस पीरियड में जो 1.5-2 साल का पीरियड था उस पीरियड बस में इस गार्बेज कैफे को बंद करके रखना पड़ा। उसके बाद फिर हम लोगों ने रिस्टार्ट कर दिया। अभी भी मतलब हर दिन लगभग 8-10 टोकन
1: कंटिन्यूअसली
0: आते जाते हैं। कई बहुत अच्छे इसमें आप एग्जांपल भी देखेंगे, कई लोगों की स्टोरी भी, रैक पिकर है जो दुकानों से मार्केट जब बंद होता है तो प्लास्टिक इकट्ठा करता है, वो प्लास्टिक इकट्ठा करके आता है यहाँ पे जमा करता है, जैसे 1 किलो 2 किलो 3 किलो और टोकन इकट्ठा करता है। तो उसने एक बार रिक्वेस्ट किया था कि सर 1 टोकन मिलता है मान लीजिए मेरे को तो मैं अकेले खाना जाता हूँ, क्या मैं 3-4 दिन इकट्ठा करके 5-7 टोकन कर लूं और अपने परिवार के बच्चे लोगों को लेकर के आ जाऊं, तो एक मेरे बच्चे लोगों को मैं कभी रेस्टोरेंट नहीं ले जा पाता, तो ऐसा क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। 7 दिन टोकन की वैलिडिटी वाला जो कॉन्सेप्ट आया, पहले तो एक ही दिन था कि आज आप लोग जाओ खाओ चले जाओ, फिर उसमें उन्होंने कहा नहीं 7 दिन तक आपका टोकन वैलिड रहेगा। तो ये हो गया कि मतलब वो भी अब अपने फैमिली को रेस्टोरेंट लेकर के आ सकता है। ऑलरेडी हम लोग घरों से भी प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं, डोर टू डोर कलेक्शन में प्लास्टिक मिल रही, सारे की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। एक मोड ये भी है कि इसके माध्यम से प्लास्टिक भी हमको मिल जा रहा है और साफ सुथरी प्लास्टिक जहां प्लास्टिक को जाना चाहिए, जो उसका वैधानिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में हम डिस्पोजल कर पा रहे हैं।
1: ये जो पानी भी आप देते हैं तो स्वच्छ पानी
0: जी,
1: वो लोगों

0: उपलब्ध कराते हैं,
1: स्वच्छ पानी उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पे आरओ भी लगा हुआ है इनके पास।
0: सैनी जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि इस पहल को प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में पूरे देश के समक्ष किया, प्रभाव यह पड़ा कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हुई, और कोई शहर महानगर इस अवधारणा को स्वीकार करते हैं और आपसे सहयोग चाहते हैं,
1: बिल्कुल
0: ऐसा कोई मामला सामने आया, ऐसा कोई विषय सामने आया कि जो और कोई शहर के भी लोग आपसे कांटेक्ट किए?
1: जी बिल्कुल, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, और दिल्ली में शायद 27 से 28 गार्बेज कैफे आज के डेट में हो चुके हैं। तो 2019 में जब हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था, दिल्ली से यहाँ एक्सपोजर विजिट के लिए भी आए थे, वहां पे दिल्ली में भी उन्होंने गार्बेज कैफे चालू किया है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ ऐसे शहर हैं जो गार्बेज कैफे के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हमसे ली, यहाँ तक कि जो हमारे सीएजी होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जब इस डिपार्टमेंट को पता चला कि ऐसा कोई इनिशिएटिव चल रहा है तो फाइनेंशियल इसके क्या सिचुएशन है, क्या ये सस्टेन हो पाएगा, कि या इसको सब्सिडाइज करके करना है और जगहों पर लागू करना, तो सीएजी ने भी इसमें विस्तृत हम लोगों से पूरा जानकारी लिया और पूरा ऑडिट किया इन सारे चीजों का, कि कैसे कैसे होता है, कैसे टेंडर किया गया, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे। तो सीएजी ने भी इन सब चीजों को ऑडिट करके आगे लोगों के लिए एक मॉडल के रूप में, गाइडलाइन के रूप में गार्बेज कैफे का दिया हुआ।
0: गार्बेज कैफे का जो सबसे अधिक लाभ, या कहें कि ये जो पहल आपने की, सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को मिला, किसे मिला?
1: समाज के उस तबके को मिला जो ऑलरेडी प्लास्टिक पे काम कर रहे हैं, अब पहले भी करते थे, रैक पिकर लोग अभी भी दुकानों से ले रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में आया कि मैं दिन भर इकट्ठा करके, क्योंकि एक किलो बोलने में बहुत हमको हल्का लगता है, लेकिन जब आप प्लास्टिक की बात करेंगे, एक किलो लोहा और एक किलो प्लास्टिक में बहुत अंतर होता है। एक किलो प्लास्टिक जब हम इकट्ठा करने जाएंगे तो पता चलेगा आधा बोरा भर गया, और साफ सुथरी प्लास्टिक लानी है। मेन हमारा ये इनिशिएटिव है कि सड़कों से उठाना या नालियों से उठाना वो नहीं है, प्लास्टिक को आप फेंके ना, आप प्लास्टिक का यूज किए, आप प्लास्टिक को स्टोर कीजिए, एक किलो हो गया गार्बेज कैफे में डिपॉजिट कीजिए, टोकन लीजिए, खाना खाइए।
0: जैसे एक किलो का हो गया, आधे किलो का हो गया, क्या क्या चीज आप यहाँ पे देते हैं?
1: यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो आते हैं उनके साथ साथ जो पब्लिक बस स्टैंड में आ रहे हैं यात्रीगण, उन यात्रीगणों के लिए भी यहाँ पे सुविधा है। तो यात्रीगणों के आधार पे वेंडर को जो लगता है कि यहाँ पे जैसे गर्मी का सीजन है तो लस्सी होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक होना चाहिए, या लंच में और कुछ कुछ आइटम है, तो सारे आइटम ये बनाते हैं। तो जो गार्बेज कैफे का मेनू है तो फिक्स है कि उसमें आपको खाने में क्या क्या देना है, नाश्ते में क्या क्या देना है। उसके अलावा जो अलग से आ रहे हैं यात्रीगण, वो जो यहाँ अवेलेबल है उसको ऑर्डर देकर के ले सकते हैं।
0: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया
1: जी,
0: उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा गार्बेज कैफे में?
1: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि एक तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए। मन की बात में आने के बाद और लोगों को पता चला कि गार्बेज
0: कैफे पड़ा,
1: बिल्कुल असर
0: वृद्धि हुई है,
1: उससे भी वृद्धि हुई है। दूसरा, इनके प्रति सपोर्ट भी पड़ा कि एक हमारे शहर की का जो एक सम्मान की बात है कि शहर के बारे में प्रधानमंत्री जी अगर चर्चा कर रहे हैं, तो उससे लोगों के मन में भी एक आया कि नहीं, ये अच्छी इनिशिएटिव, इसको और बढ़ाना चाहिए। ये भी बात आई कि शहर के और दूसरे हिस्सों में भी हम चाहें तो अगर इस पर से अवेलेबल हो तो चालू कर सकते हैं इसको।
0: तो क्या क्या आइटम रहता है यहाँ पे खाने में, क्या क्या देते हैं?
1: रोटी, चावल, दो प्रकार की सब्जी, अचार, पापड़, ये जो है वो तो खाने का हो गया। नाश्ते में जैसे अगर ये आज समोसा बनाया तो समोसा, अगर आज ये इडली बना दिए तो इडली, अगर किसी दिन बड़ा बना दिए तो बड़ा, तो उसमें वेरिएशन होता रहता है। सब्जियों में वेरिएशन होता है कि आज किसकी सब्जी बनी है, जिसकी सब्जी।
0: मैं देख रहा हूँ कि अगल बगल भी होटल है, कई जो पुराने होटल है, बड़े होटल वो स्थापित है, उसके बाद भी आपका ये अच्छे से चल रहा है होटल, तो जनता का जो भरोसा है, मेहनत कश लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन्हें भी एक भरपेट भोजन मिल जाता है, कि या कहें कि एक ऐसे शहर में आके कि कचरा इकट्ठे कर लो तो उन्हें खाने के कम से कम दिक्कत नहीं होती।
1: सबसे बड़ी बात यह होती है कि उनके मन में एक तो जो हेजिटेशन रहता है, ये रेस्टोरेंट में कैसे जाएंगे या क्या करेंगे, जब उनको पता चला कि ये रेस्टोरेंट हमारे ही लिए बना है, गार्बेज लाना है, गार्बेज देकर करना है, तो एक उनका भी हेजिटेशन भी वो हो रहा है। दूसरा चीज, रेस्टोरेंट को ये मेंटेन रख रहे हैं वेंडर, नगर निगम से भी निरीक्षण हो रही है, हाइजीन मेंटेन रख रहे हैं, साफ सफाई मेंटेन रखना है, सारा चीज, तो यहाँ पे खाने में किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है कि किसी प्रकार की कोई गंदगी है,
0: पूरा साफ सुथरा है। पीछे ये पानी की बोतल लगी हुई है, खाद्य सामग्री पैक करने के लिए इको फ्रेंडली पैकेजिंग को प्राथमिकता देने की बात भी कही गई है। तो जो छोटे छोटे ये जो पोस्टर हैं, इनके माध्यम से भी एक बृहद संदेश देने की जो है ये कोशिशें हो रही है, और ये जो बता रहे हैं सैनी जी, ये इसके इंचार्ज है, यहाँ पे पूरा देखरेख करते हैं, और ये बता रहे हैं कि दिनों दिन ये लगातार बढ़ते ही जा रहा है। इससे सबसे बड़ा जो लाभान्वित वर्ग है वो गरीबों का है, जो दिन भर मेहनत कश जो मजदूर हैं, श्रम करते हैं, और जो अपने परिवार को भी लेके जाना चाहते थे होटलों में, लेकिन उनकी कल्पना साकार नहीं हो पाती थी। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए, गार्बेज कैफे से उनके उनके परिवार को भी एक बैठने का, एक जो उचित वातावरण में, स्वच्छ वातावरण में जो बड़े बड़े शहरों पे वो देखा करते थे, तो वो भी उनकी कल्पना साकार हुई। श्रोताओं, आज एक बहुत अच्छा विषय रहा, और ये जो गार्बेज कैफे की यात्रा है, उस यात्रा के ये सबसे प्रमुख एक जो व्यक्ति हैं, इनकी देखरेख पे ये कुशलतापूर्वक चल रहा है, आगे और इसे उन्नत रूप देने के लिए और क्या क्या योजनाएं हैं आपकी?
1: अभी हम लोग इसमें जैसे जैसे रिसाइकलिंग बढ़ती जा रही है, हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट पे इतने साल से काम कर रहे हैं, तो नगर निगम अंबिकापुर एक अनुभवी नगर निगम हो गया है वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ की स्वच्छता दीदियां हैं, उनका जो योगदान है, मतलब वो घर घर जाकर डोर टू डोर कलेक्शन कर रही है और इस गुणवत्ता के कचरा को लेकर के आ रही है कि एकदम साफ सुथरा, तो उस स्तर का कचरा अब हमारे पास आ रहा है दीदियों के माध्यम से। तो अब हम लोग ये एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि क्या और ऐसा कचरा क्या है जिसकी वैल्यू अच्छी हमको मिल सकती है, तो हम सिटीजन्स के लिए भी कुछ ऐसा और ला सकते हैं कि अगर इस कचरे को आप स्टोर करके साफ सुथरा अगर हमको दे रहे हैं, तो हम आपको उसके बदले में कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं, न केवल खाना ही, कुछ और भी इंसेंटिव दे सकते हैं, कुछ हम कूपन इशू कर सकते हैं, कुछ टोकन इशू कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप कोई यदि सरकारी योजना का लाभ लेना चाहें, या हम ऐसा टोकन इशू कर दें कि आप टॉकीज में जाकर के फिल्म देख सकें, या उनको कुछ उनके एजुकेशन से रिलेटेड अपन कॉपी देना चाहें।
0: तो उसे कई अच्छे परिवार के भी जो बच्चे हैं वो भी जुड़ेंगे, मध्यम वर्गीय हैं वो भी जुड़ेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पहल है ये हर वर्ग के लिए अनुकरणीय हो सकती है। जो छोटी सी पहल इस शहर से निकली और देश और विदेश में चर्चा का विषय बनी। दोस्तों, आज इस महत्वपूर्ण विषय के साथ एक जो यहाँ से यात्रा शुरू हुई गार्बेज कैफे की, और कई अनछुए पहलुओं का भी इन्होंने पूरा विवरण दिया जो काफी रोचक है। तो आज मुझे यानी आलोक शुक्ल को अनुमति दीजिए। जय हिंद।
2: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अंबिकापुर के गार्बेज कैफे के संचालक रितेश सैनी से हमारे सरगुजा संवाददाता आलोक शुक्ल की ये भेंट वार्ता। अब हम आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म पड़ोसन से। आवाज लता मंगेशकर की, गीत राजेंद्र कृष्ण का, संगीत आरडी बर्मन का।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: मिस सीमा
3: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो बच जाओगे।
3: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: दो कलियां, अगला गीत इस फिल्म से, स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के, गीतकार साहिर का संगीत, गीतकार साहिर, संगीतकार हैं रवि।

आशा भोसले के स्वर में लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म शिकार से। शब्द हंसराज जयपुरी के, संगीत बद किया है शंकर जयकिशन ने।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 बजे हैं। पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज के एक ही फिल्म से कार्यक्रम में बात करेंगे फिल्म वारिस की। वर्ष 1969 में प्रदर्शित इस फिल्म का निर्माण वासु मेनन ने किया और निर्देशन रमन्ना ने किया। ये एक मनोरंजक पारिवारिक रहस्य और हास्य प्रधान फिल्म है, जिसकी कहानी एक खोए हुए राजकुमार और उसके उत्तराधिकारी बनने की खोज के इर्द गिर्द घूमती है।

फिल्म वारिस की कहानी एक राजघराने के वारिस की तलाश पर आधारित है। राजा की मृत्यु के बाद कई युवक स्वयं को राजकुमार बताकर सामने आते हैं, जिससे रहस्य और रोमांच पैदा होता है। फिल्म में जितेंद्र हेमामालिनी, प्रेम चोपड़ा, महमूद और अरुणा रानी ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। कलाकारों के अभिनय ने फिल्म को मनोरंजक और रोचक बनाए रखा।

फिल्म वारिस का संगीत दिया है महान संगीतकार आर डी बर्मन ने। गीतों की रचना राजेंद्र कृष्ण ने की है। फिल्म का संगीत उस दौर में काफी लोकप्रिय हुआ। मधुर धुनों और सरल शब्दों ने गीतों को श्रोताओं के दिलों तक पहुंचाया।

फिल्म वारिस के गीतों को मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, आशा भोसले और मन्ना डे ने अपनी आवाज दी है। कभी कभी ऐसा भी होता है, लहरा के आया है एक बेचारा प्यार का मारा जैसे गीत श्रोताओं में विशेष रूप से लोकप्रिय हैं।

फिल्म वारिस तमिल फिल्म नान का हिंदी रूपांतरण है। हास्य अभिनेता महमूद के अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा और उन्हें इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। महमूद और अरुणा रानी की कॉमिक जोड़ी ने फिल्म में भरपूर मनोरंजन जोड़ा।

जल्दी से खोल, जल्दी से खोल बेईमानों की पोटले, गोखले रे गोखले हैया चेंज पोखले। हड़ो हड़ो छोड़ दे भिंड मैया, छोड़ दे कन्याकुमारी का माया जाल तोड़ दे। हड़ो हड़ो

खाएगी बोल बोल होके प्रसन्न क्या खाएगी, चरणों में तेरे आम केला अमरूद है, पीने को मैया भूरी गाय का दूध है। भूल भूल भूल हाय हाय भूल भूल मैया भूल भूल हाय भूल हुई भूल हुई भूल हुई मैया मांसधारी है, फल वाले जा

0: लाऊं किसी मोटे शैतान की छो
1: छोड़ पिंड छोड़ पिंड छोड़ पिंड छोड़ पिंड छोड़ पिंड छोड़ पिंड छोड़ पिंड छोड़ पिंड छोड़ पिंड छोड़ पिंड छोड़ पिंड छोड़ पिंड छोड़ पिंड छोड़ पिंड छोड़ पिंड छोड़ पिंड छोड़ पिंड छोड़ पिंड छोड़ पिंड छोड़ पिंड छोड़ पिंड छोड़ पिंड छोड़ पिंड छोड़ पिंड छोड़ पिंड छोड़ पिंड छोड़ पिंड छोड़ पिंड छोड़ पिंड छोड़ पिंड छोड़ पिंड छोड़ पिंड छोड़ पिंड छोड़ पिंड छोड़ पिंड छोड़ पिंड छोड़ पिंड छोड़ पिंड छोड़ पिंड छोड़ पिंड छोड़ पिंड छोड़ पिंड

0: एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में अभी आपने सुने फिल्म वारिस के गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। कुछ ही देर में समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ की जल प्रबंधन पहल को राष्ट्रीय स्तर पर मिली सराहना। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पौधारोपण अभियान के तहत प्रदेश में 21 लाख पौधे रोपे जाएंगे और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा आज से शुरू हो गई है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ की जल प्रबंधन पहल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने सिंचाई दक्षता बढ़ाने और जल संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए राज्य में लागू कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन आधुनिकीकरण यानी MCAD मॉडल की प्रशंसा की है। मंत्रालय ने अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर इस मॉडल को अपनाने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे किसानों, जल संसाधन विभाग और सुशासन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता का सम्मान बताया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर के राजीव स्मृति वन में एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने बरगद का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण जन भागीदारी से ही सफल हो सकता है और प्रत्येक नागरिक को अपनी माता के नाम एक पौधा लगाना चाहिए। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष प्रदेश में 3.5 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए थे। वन मंत्री केदार कश्यप भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए एक वृहद पौधारोपण अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत पूरे प्रदेश में 21 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने बताया कि प्रदेश के सभी बूथों में अनिवार्य रूप से पौधारोपण का कार्य किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रकृति का संरक्षण भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है और पर्यावरण की रक्षा सभी की जिम्मेदारी है। श्री चौधरी ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए औद्योगिक उत्सर्जन की ऑनलाइन निगरानी और फ्लाई ऐश प्रबंधन की व्यवस्था को मजबूत किया गया है। उन्होंने बताया कि नवा रायपुर में 20,000 से अधिक पीपल के पेड़ लगाकर इसे पीपल सिटी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने 4 दिवसीय बस्तर प्रवास के पहले दिन कल कांकेर जिले में विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने बड़े गौरी में जल जीवन मिशन के कार्यों का जायजा लिया और निर्माणाधीन नालंदा परिसर तथा अमोड़ा नरहरपुर सड़क का निरीक्षण किया। सड़क निर्माण की धीमी प्रगति पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री साव ने कहा कि गुणवत्ता और समय सीमा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वे 4 दिन बस्तर संभाग में योजनाओं के क्रियान्वयन और निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे। सुशासन तिहार के तहत उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा कल कबीरधाम जिले के बोड़ला नगर पंचायत में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को इसके निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने तरेगांव में 2.5 करोड़ रूपये की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और राजा नवा गांव में 75 लाख रूपये की लागत से उप स्वास्थ्य केन्द्र के उन्नयन की स्वीकृति दी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा आज से शुरू हो गई है। ये परीक्षा 9 जून तक चलेगी। परीक्षा 2 पालियों में हो रही है। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 12 जून तक छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ की जल प्रबंधन पहल को राष्ट्रीय स्तर पर मिली सराहना। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पौधारोपण अभियान के तहत प्रदेश में 21 लाख पौधे रोपे जाएंगे और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा आज से शुरू हो गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। आजीचो सगा कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कृषक और व्यवसायी महेश चंद्र जोशी से बलबीर सिंह कच्छ की बातचीत।
3: रेडियो सुनतो भाई बहन मन जसन की आपन मन सुनसास जानसास आजीचो जुन सगा ने आए आम्ही कई कसन आपलो जीवनाने कई क्षेत्र ने अनुभव असन माने के व्यक्तित्व के आपन मन संग गोट बात करन बाती सुनाऊ से तो आज बले आमता ने इला से असनिची बले ने बहुमुखी प्रतिभाचो धनी श्री महेश चंद्र जोशी। तो महेश चंद्र जोशी आल तुमके खूबे खूबे सेवा जुहार
4: जुहार जुहार तुमके बल जुहार।
3: महेश दक बले ने तुम छो जोन बले कई लोग आमी बोलुक लाय सकू विचित्र है मात्र सत्ता है कि नहीं बले ने तुम छो जसन की पढ़ाई लिखाई बले उच्च शिक्षा होली से फिर किसान बले आस फिर किनिक व्यवसायी बले आस फिर कहीं धार्मिक क्षेत्र ने केवे केवे एवार्ड बले तुम छो झुकावा से और फिर संगे संगे कलाकार बले आस है कि नहीं तो कई क्षेत्र मन ने कला चो प्रदर्शन बल तुम्हें करला सास मतलब आम चो बस्तर ने बोले बस्तर ले बाहरी बल तुम गेला सास। तो सबले पहले मैं जानू चाहे से कि तुम चो जन्म बाड़ और पढ़े लिखे के
4: देखा बलवीर भाई आमी तो अब बस्तर चो रहलो भी तमाने है ने बस्तर ने इता जन्म धरलू तो इता चो हिसाब ने जसन रहन सहन और परिस्थिति रेली हुन बदली और चूंकि मचो पूर्वज मन उड़ीसा बाटले इलास हो तो हुनमन संग बोले मचो जन संपर्क राशि उन्मति नहीं हुनमन संग ने हिसाब ने बोले हमी आप लोग व्यवहार करा से आप लोग जीवन चो तौर तरीका आसे उनने बोले चलो से तो बिला बेला जब गांव तो जन्म देता है होली लेकिन हम इतना अगर हमी आम चो गांव चो स्कूल ने पढ़ लू और उताले पढ़ून भाती फिर जब उच्च शिक्षा की व्यवस्था आम के उतार नहीं देली तो आम के शहरी उन्मति पढ़ुक पढ़ ली और पढ़ाई ने बहुत तो नहीं बोलू गए लेकिन बाकी हमें पढ़ लू पढ़ तो काजे लेकिन पढ़ाई के हिसाब से सीधा को नहीं काम सीधा न कर उन्मति बोले हमें बहु काम है जो बल्ला तुम्हें उन जो व्यवस्था के हिसाब ने बोले आम के खेलकूद चो बल शौक रही उन जो बाद में कलाकारी हिसाब ने नाटक ड्रामा चो बल शौक रही तो ये सब भी रही और परिवार ने जैसे खेती किसानी कर तो काम रहे तो हूं बोले आम चो मतलब पीला बेरा ले कर तो भी काम बुता रहे तो उनके बोले हम घर ले सीख लू समझा और चूंकि गोटक ब्राह्मण परिवार ले मैं यही से तो हुन परिवार के हिसाब ने बोले जाम जुन पंडित ही काम आसे बाप दादी करते रहला तो हुन हिसाब ने मैं बोले हुन पूजा पाठ तो काम के हिसाब ने झुकाव मचो रही से अब पढ़ाई लिखाई तो जैसे सांग ला पीला बड़ा ले तो हम पढ़ाई उड़ाई हूं भाती मैं बी एस सी कर ले बी एस सी करूँ भाती फिर एल एल बी कर ले और एल एल बी करूँ भाती मसमन जी कहता आयुर्वेद दर्न कर ले और कलाकारी जो करते हिसाब ने शौक रही गुनू हमें जो ना से खेने लोक जो कहते तो जो आसे लोक कला जो भी थी हुन काम ने बोले है नी और खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय रे है नी तो उन जो बोले गोटक डिग्री धर लो आसे लेकिन उन्हीं बिल चीज ने सीधा उतलो जाके आगे जाऊ तो नहीं सकले लेकिन अभी आप लोग क्षेत्र में जो क्षेत्र में हमें रहूं से यही क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के काम ने आमे लघु रहू से पीला बिला जो पढ़ाई तो मैं सांग रही पीला बिला पढ़ाई लिखाई करूँ भाती संग साथी हिसाब ने है नी जैसन पढ़ते लिखते आगे बोल लू अगर बोलू भाती आगे जो विषय मन के पढ़ लू उन भी हिसाब ने काम पूरा अगर हमें नहीं रुक बोल सकते लेकिन पारिवारिक जो काम रहे पूजा पाठ और खेती किसानी जो काम आसे और छोटे व्यापार बोले छोटक आसे गाँव ने उन जो बोले व्यापारी काम बले करू से कहे से।
3: तो महेश दक्क बल्ले ने जीवना ने तो बल्ले ने पढ़ाई लिखाई जो जो बल्ले ने कई कसन चीपा कई कसन अटकनी मजगते युवा है ये सब चीज के काय की माने के संघर्ष कर पड़े से तो असन तुम चो जो जीवना ने पीला बेरा ले कहीं चीज ने असन कहीं संघर्ष कर तो हिसाब ने कहीं चीपा कहीं असन
4: नहीं संघर्ष बोले ज्यादा असन नहीं देली बाकी मतलब जैसा कि हम जितलो सुविधा रेली हुन सुविधा हिसाब ने आम के मतलब पढ़ते विधि व्यवस्था वाली आज जो समय

0: और ज्ञान के बाद में फिर कॉलेज जो पढ़ाई का जगदलपुर पढ़ ली है नी। तो जगदलपुर बोले पढ़ाई लिखाई कर लू तो तकलीफ तो नहीं रही, कहीं बोले बोले जगदलपुर ने बोले हम जो परिवार जो लोग रहे सर तो रतों का जो कोई विशेष परिस्थिति नहीं रहे और सामान्य प्रकार जो पढ़ाई लिखाई रहे उतलो एकदम से मतलब काय करू उन समय ने हम के भावना बोले या दिमाग ने बोले उतलो चीज नहीं है तेरे की कोई चीज विशेष करवा। बाकी मैं बोले पीएमटी जो काजी कोशिश कर ले का दुई हार कोशिश कर ले और रिजल्ट गोटे हिसाब ने ही ली लेकिन खिंडिक बहुत नंबर जाके उन चूक ली तो उन समय ने फिर दोबारा और मैं तो तैयारी नहीं कर ले घर परिवार जो काम आसे तो उन काम के बल दख ले काम हो बोलू मत घर जो काम नहीं मन लगा ले और ये तो क्या बहुत साधन व्यवस्था आसे तो आज का जे मैं सांगे हम जो क्षेत्र चोर पिला मन के पढ़ाई लिखाई कर तो ज्यादा दूर जाते आज बल जरूरत नहीं आए चाहोला बोले नेता को रुक सकते सब
1: है ना बोले ना आगे तो उतलो चो कंप्यूटर चो व्यवस्था नहीं रही है कि नहीं मोबाइल चो
0: सुविधा
1: तो हर चीज चो पढ़ाई लिखा का सुविधा से मंतर महेश दख तुम्हें फिर मंजीगते जसन की आयुर्वेदिक चो बोल आई की नहीं कर लाज की तो ये चो जसन आयुर्वेदिक कर तो के कहीं असन तुम चो जीवन कहीं लाभ मिलली
0: लाभ बोल ले असन है आयुर्वेदिक जो काम जो ना से नहीं जो वैद्य जो काम आसे वैद्य जो काम हम जो बाबा करते रहला हम जो दादी बोले करला बोल मतलब दादी तो मैं उतना अच्छा ले नहीं जाने मैं एकदम छोटे रहने पर दादी खत्म होला तो बाप हम जो जना से उन ये काम के करते रहला तो घरे को जड़ी बूटी जो हिसाब ने वो के किन दवा दारू का ही चीज के देते को जो रोग दुख से उधर लाए तो हॉस्पिटल और उतलो सब चीज सुविधा बल नहीं रही तो उन मन जो दवाई इन बल बहुत लोग ठीक होते रहला और चूंकि उन आयुर्वेद के हिसाब ने लोग उनके मानते रहला उन जो अनुपान ठीक ढंग ले धरून बाजी काम करते रहला उन मन के उनके लाभ बल मिलते रही तो असल ने उन चीज के खिनिक मोच बल मन ने बाप जो खिनिक उतारा हिसाब ने मकबल भावना ही ली कि मकबल खिनिक उन चीज के बारे में जानकारी करते रहे। मैं फिर साइंस जो स्टूडेंट रहे बीएससी है ना साइंस मतलब मोचो हाई स्कूल बोले साइंस जो रही उन जो बाद में बीएससी बोले पढ़ लू तो बीएससी ने बोले सब उनके जड़ी बूटी और जो खिनिक चीज जो व्यवस्था रहे बाप जो करते हुए चीज के बस दुकुन भाती खिनिक नया जमाना जो हिसाब ने कसन उनके और आयुर्वेद व्यवस्था के अच्छा ढंग ले लोग तक पहुंचाया जाए कोशिश करूं दख ले मैं वाले लेकिन उन काम को उतना ज्यादा तो नहीं कर ले बाकी उन जो लाभ स्वयं जो शरीर ने बोले बोल ली।
1: अच्छा
0: अभी आज जो हिसाब ने जो उम्र हम चुआ से उन उम्र ने हमें भी बढ़िया मतलब चंगा हालत में है नहीं और स्वस्थ रूप ने आसू तो ये आम के जो ना से नहीं समझ की उन आयुर्वेद जो देना है तो उन जो अच्छा चीज खातो है ना अभी जो खेती किसानी ने लोग बहुत ज्यादा किस्म जो दवा दारू डालू देश हो और जो जड़ी बूटी आसे आगे जुना भी थी उन बोल मुरज ली ना ले आम जो गांव लगे बोले जो डोंगरी रहे है नी उदा बोले बहुत किस्म जो अभी बोले जड़ी बूटी जो व्यवस्था मिलू है और आम जो आस पास इलाका ने बोले जंगली जड़ी बूटी मिले से जो बड़े बड़े असाध्य रोग मन के बोले ठीक कर सके और उन सब चीज के अच्छा चीज है और लोग किन्नी का हम जो रहन सहन बल नहीं पानी वानी लेन देन जो हम काजे जाऊं नाला है नहीं तो उतारे कावड़ ने पानी बोन बात आन तो रहे तो मेहनत बल दे ली खेती किसानी बल काम रह ली तो उतना ज्यादा सुविधा नहीं रहता कि आम के खिनिक उन सब चीज फायदा तो मिलते रहे और आयुर्वेद जो हिसाब ने हमें जो अच्छा चीज खाऊ जान लू सीख लू आज के जमाना में सब चीज तैयार एकदम रेडीमेड माल मिले से और लोग उनके उपभोग कर सो तो आयुर्वेद जो काम मतलब मैं तो पूरा भरपूर नहीं करे लेकिन अब जो उनको उनको नहीं हुआ खिनिक खिनिक तो सलाह लोग के दू है कि अगर चाह साथ बोले असन चीज के तुम्हें उपयोग करूं जगह बारून जगह तो उनके शरीर में फायदा मिले दे और संगे संगे खिनिक हमी आज तो जमाने से योग आसे हम जो पुराना भी थी है नहीं तो उन योग के जो बोले तौर तरीका के बोले खिनिक व्यायाम कर लेने तो शरीर बोले स्वस्थ रहे से तो उन चीज के बोले खिनिक लोग के हमी समय सलाह दुर्मती योग बल करा संग असन प्रकार जो खिनिक हम जो देशी दवा दारू के बोले उपयोग करा अगर ज्यादा तुम्हें अगर एलोपैथिक दवाई के उपयोग नहीं कर सकता तो ऐसा आयुर्वेद दवाई के बल करू मे अच्छा रोग सका से और शरीर ठीक रहे दे।
1: अच्छा मैं जसन की तुझे जो आयुर्वेदिक ने कोर्स कर तो के बोले ने तुझो परिवार खुद जसन के बिसांगली बोले ने स्वास्थ्य का जो ध्यान दे तो का जो खुबे बोले ने काम इली मंत्र सबले मोर गोटोक गोट ये बोले जानू खुली कि आयुर्वेदिक ले का है कि आमचो वन धन संपदा एचो संरक्षण।
0: हाँ बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल सही है बलवीर भाई।

0: कि आयुर्वेदिक जो जो न बात आसे आयुर्वेदिक तो जो करते भी आयुर्वेदिक हम आयुर्वेदिक बोले उनको जब दवा दारू के तैयार करू से तभी उन आयुर्वेदिक होए से हमें गोटे अंग्रेजी शब्द नहीं उनको ऑर्गेनिक बोल सत है नी और उनके बोल सत हमें जैसा जंगल ने स्वयं ने बोले उपजून बाती होते बीती कौन जड़ी बूटी आसे तो उन आसे उनके जो खेती बोले जाए हुए से है नहीं लोग खेती बल कर सो और उनके ज्यादा उत्पादन कर बाती उन लाभ बल कमाए सो किसान भाई मन तो जरा ये जो वन संपदा जो जो बहुत प्रकार जो जो ना बड़े पेड़ ले धरून बाती छोटे छोटे झाड़ी नानी बूटी बूटा है नहीं तो बूटी बोल सत नहीं बूटी बूटी और जो जड़ आसे मूल मूल बूटी और उनके संग कोई फल आसे छाल आसे तो ये विभिन्न प्रकार जो चीज जो ना से यही सब नहीं तो आयुर्वेद तो दवाई तैयार होए से
1: हाँ।
0: तो ये सब चीज क्या है कि अगर लोग उनके जैसे ठीक ढंग ले जंगल ले जाऊन बाती आप लोग इकट्ठा कर सोत है ना गुड़क जगह जो उन भाजी संगाए सोत और उनके जब बाजार में मार्केट में बिक सोत तो आज बाजार में मार्केट में एलोपैथिक दवाई बोली यही सब चीज ले बने से जब जो परिष्कृत रूप हो तो एलोपैथिक दवाई बने से लेकिन एक हम आयुर्वेद दवाई ने किन का रॉ मटेरियल के हिसाब से उपयोग हुए है ना तो और आमी उनके काढ़ा बनाऊ से उनको प्रकार जो और कोई प्रकार जो पाउडर बनाऊ बाती उनके उपयोग करूँ से अभी हम जो गाय गोरु घर में रहते रहला उन मन के और परिवार ने बोले छोटे छोटे कई प्रकार जो बीमारी मन होने रहे उन्हीं सब चीज तुलसी आसे तुलसी घरे लगा उन बाती हम रखा उनसे उनके तुलसी जो रस ने कई प्रकार जो फायदा दे से है कि नहीं
1: हाँ।
0: और उनके उन किस्म ने और बोले प्रकार जो जैसे आमे आई जाड़ा आसे तुम जो एलोवेरा बोलते भी जो निर्जय हो एलोवेरा बोल सो ये घृत कुमारी असन प्रकार जो कई प्रकार जो जड़ी बूटी जो घरे वाले आदमी खड़े खड़े अपना जगह में लगाए सो और जंगल ने जो मिलते भी कई प्रकार जो जड़ी बूटी आसे भोईली मोगरा विभिन्न प्रकार जो उनके आज खेती निमल हो तो असन सब चीज के अगर लोग आप लोग ढंग लगा दे और उनको सही ढंग ले उपभोग कर माती सही बाजार मार्केट तक अमरा दे तो धन संपदा बड़े लोग के बाढ़े थे
1: बाढ़े थे तो ये तो अच्छा गोट के संगलास महेश जसन की एच संग संगे बल्ले ने तुम्हें जसन की गांव ने बुलुआत की कथा सुना तभी थी ये काम के बोले तुम्हें बोले ने बड़े हरिक ले बोले संपन्न करूँगा
0: मैं चाहेंगे जी ये धार्मिक काम जो व्यवस्था है ये जैसा अभी आमी का है कि गाँव रहू गाँव जो कल्चर नहीं आसू हम जो गाँव जो माए माटी जो माता आसोत है नी भाई उन जो हिसाब ने बोले हम जो बेचारा राज परिवार बांट ले हम जो परिवार के गोटे अच्छा पद मिलू रहे है नी राज्य हिसाब से तो उन पद के हिसाब ने बोले गोटे मान रहे तो गाँव जो देवधामी मन जीत लो बेटा जो हम जो जैसा बस्तर राज जो माई दंतेश्वरी राज रानी देवी आए है नहीं उनचो पूजा पाठ और उनचो संग ने आमी जैसे गांव जो बोले कई प्रकार जो माई माता जो काम आसे उन बोले कभी गांव जो पूजा करूं से गांव संगे आम जो सात पारा आसो सात पारा ने बोले उन्हीं देवधामी गुटकी गुटकी माता मन मेन मना तो उन माता मन के बोले आमी जो ना से नहीं सेवा पूजा करूं से और चूंकि अब ब्राह्मण परिवार है हम दोनों चीज आ से तो हम जो कल्चर एक्टिविटी से क्या है गांव के जो हम पुराना हम जो रीति रिवाज जो ना से मतलब आदिकाल जो चल रीति रिवाज आ से उन बोले और साथ में शास्त्र संगत वैदिक रीति रिवाज जो कार्यक्रम आ से क्योंकि ब्राह्मण परिवार ने जन्म धरलू से ब्राह्मण जो नियम नीति जो ना से उन बोले तो उन हिसाब ने दोनों काम करूं से तो शास्त्र में कई प्रकार जो अलग अलग प्रकार जो गोटक कथा वाचन चुबे उन जो पूजन पाठना से तो लोग ने गोटक सात्विकता भावना धार्मिक भावना बनो बोलू मैं तो पूजा पाठ ऐसा काम करूं मैं उन मन जो भगवान जो देवता जो कथा हुए से
1: कथा
0: तो उन कथा के सुन उन कथा भीतर ने बल चर्चा हुए कई प्रकार जो और लोग भीतर समाज भीतर ने कुछ प्रकार जो कुप्रथा से उनके दूर कर तो गाजे और अच्छा अच्छा बात के समझ तो सीख तो गाजे समाज ने उन चीज के कथन करवा भाई कहानी जो उनका पुराना हम बोलू इतिहास इतिहास में पुराना जो चीज रहे से उन चीज के आज ही हम जो चीज समझू से और लोग के आगे उनके प्रकाशित करूं से सब सांगू से तब उन लोग बोले उन चीज के आगे बढ़ सोन मन है नहीं तो भाई नया तरीकी कसन हो थे जब हम जो गांव नाम बोलते हैं हमें गांव ने जन्म धरलू एक बाटे रोलू लेकिन हम शहर तो रही लेकिन शहर ने उतलो व्यवस्था नहीं रही जितलो आधुनिकता हिसाब ने बड़े शहर मन रही हम जो देश जो उसमें तो हम गाँव शहर नहीं रही लेकिन चूंकि धीरे धीरे जब विकसित होती गई तो हम केवल शहर ले बहुत प्रकार के सुविधा तो उसनी किस्म जो आमी पुछी पुराना से कई चीज आसे कुछ कहत आसे चर्चा आसे उन सब चीज करूं से गांव गाने आम जो दादी जाते रहला उन जो बाद में पिताजी गेला ये कथा पूजा कर सका

0: ज्योतिर्नाथ मेला, सत्यनारायण कथा, उनके बाद में जो होम जोम जो कार्यक्रम आसे, तो ये सब चीज का एक सात्विक भावना, एक संगे सब बसून बाती चर्चा करून बाती भगवान जो तो हम जो सनातनी व्यवस्था आसे उनके आधार के मान तो और उनके पूजा पाठ करून बाती कई प्रकार से चर्चा बोली हुआ है। और लोग मन के बोले उन समय उपास प्याज करून बाती शरीर बोल का अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। तो ये गोटे प्रकार जो गोटे काय काम है कि नहीं लोग के समाज में गोटे परिष्कार समझकार ने गोटे नया उत्थान नया गोटे चर्चा ये बोले व्यवस्था कर तो गाजे इस कथा होता जो पूजा पाठ जो नीति रहे। बाकी आम जो जन जो ना अच्छा पढ़े लिखे लोग आसोत या बाहर जो कल्चर ले था लोग बसला सोत इलासोत उनमन तो सुनते रहला आप लोग हिसाब ने उन बातों जन व्यवस्था आसो सुन उनमन करते रहला
1: करते रहला।
0: लेकिन चूंकि आदिवासी क्षेत्र हम जो बातों से आ रहे तो इतना बड़े लोग उन चीज के मान रहे क्योंकि माए माता पूजा पाठ इतना बड़े हर प्रकार जो व्यवस्था आसे। अब बारसूर ने बोलो हम पुराना कितना पुराना साल जो गणेश जो मंदिर है गणेश जो देवता आसोत महादेव जो मंदिर जगह जगह आसे है नहीं माता दंतेश्वरी जो तो अब पीटी साहब ने हमको पूजा करूं से तो सब चीज पूजा पाठ सुना से तो उनके किन और शास्त्र संगत ढंग ले कसम प्रकाश और पूजा पाठ हो सके तो ये परिष्कार हिसाब ने हम ही कथा होता सुना तो हिसाब ने चूंकि परिवार जो सन व्यवस्था रही तो ये कर्ज भी दी।
1: तो ये अच्छा गोटा है बोले ने कहा कि तुम जो आगे से जो परंपरा है बोले जौनपुर का बेला तुम जो परिवार ने चलते रहे बोले उनके जो बच्चा तो बोले
0: जरूरी
1: है कि नहीं बल्ले ने कहा है कि नहीं तो नहीं बचा लेने फिर ये तो जो पीढ़ी है उन आमचोपुर का पार्टी जो परंपरा है कि उनकी जानों को लाए नहीं सको और यही सब है कि गोटक दूसर के हुन बल्ले ने एक सूत्र ने बांधे से स्वास्थ्य दृष्टि हो नाले फिर सहयोग दृष्टि ये सब परंपरा है। मंत्र महेश ये तो अच्छा गोट के सांगलास मंत्र एची संग संगे बोलो भी तुम्हें खेती किसानी ने बोले उल्लास तो खेती हिसाब ने बोले ने कसन खेती बाड़ी करते रहो ऐसे आजकल तो सब आधुनिक तरीका
0: नहीं उन्हीं अभी देखा खेती बीती बल वैसा नागे सांग लेने खेत जो बीती बल काम आम चल लगे पारिवारिक व्यवस्था उसन रही कि हमें के राज परिवार बांटले बल्कि जगह जो व्यवस्था हमके दिया रहला तो उनके बाद में जमीन नाम के जो आम चल लगे रहे उनके क्या है कि अब भाई जब उतार उत्पादन कर तो गया तो व्यवस्था करू लागे थे तो उन जो काम ने बोले नहीं परिवार चो लिखना हम जो जो बाबा सुन उन करते रहला और उन जो संग संग हम उन खेती किसानी नाम बल गेलू जुड़ लू और काम के देख लू और नया भी अब जो समय ने आगे जो समय ने कहा है कि नांगर बैला नांगर भैंसा नांगर नेऊन भाती धान के बुनून देते रहो है नहीं और गोबर खत लगाओ तो ज्यादातर सरकारी खर्च उपयोग नहीं करते रहला तो उत्पादन उतलब नहीं होते रही तो जो खर्चा रहे तो कम से कम खातों का जीवन होते रहे और किंडिक बहुत जहां अगर हल्का फुल्का बिक्री भांजरी का जो काम होते रहे और वे वर्तमान ने जो खेती आज है उन अगर अच्छा ढंग ले उनके अगर करा जाए तो कम से कम एक गुरु परिवार जो पालन पोषण उन खेती पर हो सके और अभी वर्तमान में सरकार वाले विचार अच्छा करे से और खेती किसानी के हिसाब ने जो ना से उन जो जन उपज जो मूल्य जना से नहीं सही देते का जो प्रयास करे से और विभिन्न योजनाओं ले किन्नी खाद बीज जो बोले व्यवस्था का जो सुविधा दे सब कुछ करे से तो लोग किन्नी उन्नत कृषि कर तो का जो आगे बढ़ सो हम जो परिवार में तो डेली हम तो बहुत पुराना ले हमें हम जो घर ने ट्रैक्टर ले ली समझा है ना आधुनिक हिसाब ने माने करीब करीब 35 साल पहले है ना 35 साल 40 साल पहले हम तो लगे ट्रैक्टर ले ली तो हमें आगे लेकिन आधुनिक खेती जो तो शुरुआत कर लू हम जो क्षेत्र में अभी लोग दुकान दुकान बाजी नए किस्म जो बीज नए किस्म जो खाद और उन जो बाद नया नया प्रकार जो ट्रैक्टर मशीनरी प्रणाली आ से उन जो बोले उपयोग कर सो और उत्पादन अच्छा धरसो धान उत्पादन अच्छा हुए से आजकल तो कम से कम 20 क्विंटल एवरेज नहीं से और अच्छा कोनी किसान और मेहनत करे जल 25-30 क्विंटल एकड़ ने धान जो उत्पादन कर सो उनके संग संग जोंदरा फोंदरा जो बोले उपयोग खेती ने उत्पादन जो व्यवस्था है उन बल बढ़िया हुए से लोग कर सो उनके और जो गन्ना वगैरह वाले आज है नहीं गन्ना बोले ऊंचो बोले वर्तमान में भी ठीक आ रहे आगे जो परिस्थिति में गन्ना के लोग केवल आप लोग किन्नी का घर जो परिवार जो व्यवस्था पूरो होने हिसाब ने गन्ना जो उत्पादन करते रहला है नहीं और ये भी कहा उनके बोले कर गुड़ उड़ जो बनाए सो बढ़िया मस्त बिक्री कर सो और हम जो परिवार में ये सब चीज जो खेती किसानी भी चलते रहे भी बोले आसे हम जो बड़े भाई गोटे भैया फार्म हाउस बना लो से है ना उन जो आसे कम से कम उतार 8-10 एकड़ प्लाट उतार विभिन्न प्रकार की खेती मिर्ची चोबल खेती करवाए ड्रिप सिंचाई वाले योजना चो व्यवस्था आसे उनता ने और आधुनिक प्रकार जो सब जितलो मशीनरी आसे है ना प्लाऊ उलाऊ बल सब हार्वेस्टर जो अपना व्यवस्था करते रहे कटर मशीनों का आसे आसे तो खेती किसानी जो काम भले जो ना बढ़िया उन्नतिशील ढंग कर लेने फायदा आसे तो उन काम तो परिवार हमके दिली है ना सियान करते रहला सियान ने बाद बड़े भाई मन बोलू काम जो सब खेती किसानी काम करते रहला हम बोलू काम के
1: दख मैं और फिर संगे संगे तुम्हें कि धंधा पानी व्यवसाय ले बोली तो असन काय काय असन धंधा पानी बोले ने
0: धंधा पानी व्यवसाय बोले असन दगा गाँव ने जसन बोलू नहीं अब पढ़लू लिखलू चार जगह मिलू तो लोग बाग अलग अलग अलग किस्म जो जना से नहीं जब बाहर गए दूसरा चीज देख लेने हाँ ये चीज ये व्यवस्था नहीं है तो ये चीज के बोले हम के बात कर लेने बात तो लोग के बोले उन फायदा हो है नहीं उन चीजें लोग के मिले थे हम उन चीज के थ्रू घेरू अनुमति भी कुआ इधर शहर लगती को आजकल तो खेल नया जमाना आधुनिक जमाना में सब प्रकार जो व्यवस्था ऑनलाइन में हो और आम ही ना से पुराना जो ना से व्यवस्था हिसाब ने सामान बाहर घेर तो नंतर उदा जो नाम जो गोटे निश्चित मुनाफा आसे है नी गोटे परसेंटेज हिसाब ने उनके लगाते रहू और बिकते रहू मैं कपड़ा जो धंधा बर्तन उर्तन जो बल धंधा हम जो थाने कर रहे और उन चले जाओ उनके बाद में हम जो भाई मन बोले धंधा कर सो उन मन किराना जो दुकान अभी हम जो लगे समझा कि सब प्रकार जो धंधा जो कर सका ये नई व्यवस्था है और सब प्रकार जो घर लगे हो तो कारण ने क्या लोग केवल फायदा मिले से है नी जो उन चीजें नहीं मिले उन चीज बाहर घिनु नानू से और उनके भी खुश है तो ये सब चीजें लाभ आप लोग हिसाब ने हो से और बोले मतलब कोई चीज अब परिवारिक के बड़ा तो रहे और आप लोग शरीर के ठीक ठाक संगा तो रहा से तो विभिन्न प्रकार जो आम जना जो व्यवस्था करूं से है नहीं तो कमानी धमानी अगर ढंग ले अच्छा नहीं रहे आर्थिक स्थिति सुधार नहीं हो तो आगे बढ़ को नहीं हो हर आदमी को तो नौकरी चाकरी बल नहीं मिल सके है नहीं तो उन माने क्या नौकरी चाकरी नहीं मिले तो मैं कई करूँ नहीं सके बोलते हुए बात न है पढ़ लो लिख लो लेकिन उन कहना को नहीं उन जो घर परिवार जो पुराना रीति नीति यहाँ से जो उन चीज के घर वाला लोग करते रहला ध्यान देला उनका काम कर ले बोले मिले जैसा नहीं तो लगे मैं सांग रहे नहीं दुकानदारी बल करे से उधर बोले खेती चार आठ ना कमाए से उनके बाद में खेती किसानी हो तो धान प्रधान बिक भाग कर दिले उतार बल दो पैसा ये से संगे संगे जन पूजा पाठ जो बीती नियम के बल मैं सांग रहे नहीं परिवार जो तो जन पूजा पाठ करो गले कोई भाई ब्राह्मण पंडित जी साहब काम होली मैंने दान दक्षिणा खेती देखा उन बोले गोटे का आधार बने से एक तो पुराना जो पुरखा पार्टी बोले नियम चले से और उन कम नहीं बोले खेती हाथ के यही से तो
1: मानता देखा ये सब गोट के अच्छा सांगलास मंत्र एची संग संगे बोले ने तुम जो कलाकारी क्षेत्र बोले
0: पूछते जाए ठीक है कलाकारी भी बोल देखा शौक पीला बेरा ले रहे गाँव ने नाच देखू के जाऊ है नी गाँव नाच देख लेने नाट के देख लेने मान लागू कैसा नाच सोच काय कर उनके बाद में आम जो जैसा गाँव क्षेत्र में परब नृत्य हो नी तो बाजा मोहरी ने मतलब लोग परम नाच नाच हुआ है नी तो और उनके बाद में खेल तो गीत गीता गुआ और संगे संगे जो है की खिंडिका हमें जब शहर नहीं लू तो गोटक स्टेज ऊपर ड्रामा है तो उन चीज बोले गोटक आसे तो ड्रामा के मतलब कलाकार होने बात उनके खेल कसम प्रकार जो कर लेने जैसा उनको कुछ पात्र के निभाते भी थी व्यवस्था तो उन काम के बोले करते हुए शौक रही स्कूल बनाले खेल शौक उन बढ़ते बढ़ते कॉलेज स्थित तक खूब रही उन जो बाद में फिर हम जो संगे हम जो दोस्त मन भाई मन रहा है नहीं और मैं तो बोले तुम बोल मोस्त संग रहा है तुम बोल मोस्त संग रहा तो असन हम जितो रलू हम चो जैसन ग्रुप चो मित्र मन सब लोग जो ना कलाकारी करून भाती और हम ड्रामा उमा देखो भाती लोग के बोले मनोरंजन कर लू और लोग बोल खूब हरी होते रहा लेकिन क्या है आम के उस समय में बड़े मंच नहीं मिलते रहे है नी अब भैया रेडियो स्टेशन जब खुली खुल तो खा तो रेडियो स्टेशन में तो केवल आवाज चो बात आए है नहीं, तो सीधा सीधा हमी जन जन आजकल टीवी स्टेशन खुल ली है नहीं, तो लोग उनके मंच नहीं उन सब कार्यक्रम आम के टीवी बोले घर मौका मिल ली गी दूध बरा है नहीं, तो रायपुर उनकी चावल कर रहा हूँ उनके बाद में अच्छा खेल का हम जो जो कलाकारी जो काज व्यवस्था काज नहीं बस्तर जो कलेक्टर बाटले बोले आम के कायदन मिल ली ये अपना कायदा तो साक्षरता
1: अभियान
0: तो साक्षरता अभियान ने बोले आम के नहीं नुक्कड़ नाटक करुण भाती उदा जो मैं लीडर बोल रहे बहुत समय तक और उन्हीं साहब ने बोले पूरा कम से कम हम जो ये बस्तर जिला जो जितलो ब्लॉक आ से सभी ब्लॉक में हमें नुक्कड़ नाटक करुण भाती लोग के पढ़ाई जो बाटे कैसन उन्मन जाओ सक दे और पढ़ाई के बारे में सोच दे कैसन दुगड़ा पढ़ाई के कैसन मतलब लाज होते रहो लोग नहीं
1: हाँ।
0: उन जो लाज मिटा तो कहे और उन जो पढ़ लेन काय फायदा है ये सब संग तो कहा हम कलाकारी करते रहूं और बाकी किनी किनी गीत गोविंद लोक मन संगे बस उठन बात उन्मन संगे साज सजा बजा उन बाती बोले उन काम कर लू से हाँ तो मतलब उन बोले गोटक प्रकाश ने मनुष्य जो गोटक काय करू आज बोले मनोरंजन जो करते और मन जो गोटक लोक जो पूरे जो प्रदर्शित करते गाजे गोटक नहीं इच्छा रू है
1: इच्छा रहे
0: हाँ तो उन बीती करते रू
1: बोले गोटक समाज ने गोटक आम से बोले नाव हो
0: नाव हो
1: असन हर आदमी से रहे से
0: बस उसने
1: है कि ना तो ये कला चु क्षेत्र ने बोले कोनी बाहरी बोले जाओ खोली गाय कोनी बाटे
0: कला के क्षेत्र में तो बहुत बाहर बात तो नहीं बोलू लेकिन बाकी हम युवा उत्सव वगैरह में जो ना से नहीं जो युवा उत्सव सरकार बाटले हुई उन युवा उत्सव में आम के भोपाल नहीं हम के जाओ मौका मिलू रहे और हमें पूरा देश भर ने द्वितीय स्थान आम जो बाटले आम के मिल ली मौका मिल रहे नहीं देश बाटू भी बने से मैं प्रदेश स्तर
1: है
0: नहीं तो द्वितीय स्थान तो कारण हम के मौका आगे जाओ नहीं बोली मिल ली तो प्रथम स्थान दूसरा जगह के मिल ली लेकिन हमें उन बीते ने लोग के आम के बहुत सराहना मिल ली मतलब जो प्रकार जो हमें आप लोग हिसाब ने सीख लू आम के कोई एकदम बड़े गुरु आम के कोई सिखा लो ऐसा नहीं रहे है हमें खुद आप लोग हिसाब ने सीख लू और उनके जब प्रदर्शित कर लू मंच ने तो आम के खूब लोग सराहला बड़े बड़े कलाकार बोले आम के उधर लाए थापड़ी बटून बात आम पीट के थपथपाला हरिक लागली और उन मन जो किनी प्रमाण पत्र होगा उन समय जो मिलो बीती हाँ से हम जो लगे तो कौन कौन कौन समय पिला मन बल संग दकाना सब बाटे सब चीज करते रहे है नहीं ये सब चीज दखते रहे आदमी के सब प्रकार जो भावना संग चलते चाहिए तभी उन जो विकास सर्वांगीण हो रहे है नहीं और कौन गुटकी चीज ने हमें एक प्रकार हम एकदम श्रेष्ठ हो जाओ आसन बल बोलते भी बात
1: नो है
0: तो सब चीज के करूंगा कर ले माने के अच्छा लागे से
1: हाँ हाँ तो दख मैं से इतलो अच्छा तुम संग गोट बात होली मानतर बोले ने इतलो क्षेत्र ने बोले तुम चो जो काम आए बोले भे बोले गोटो को रुचि आए है कि नहीं मतलब बहुत कम आदमी ने माने दखुला है मेरे से है कि नहीं देखो खेती बोल कर तो रहा है व्यवसाय बोल कर तो रहा है धार्मिक काम ने बोला आसास फिर कलाकारी ने बोले तुम चो आसे फिर उसने पढ़ा लिखा बोल तुम चो आसे बोले भे तो ये सब असन मतलब माने गोटक माने लग रहे ने जीवना ने बोले कितलो संतोष लागे ना
0: हाँ नहीं संतोष तो खूब आसे और मैं मैंने यही संग संग समाज सेवा जो बात है बोलू हम समाज सेवा बोलू
1: हाँ।
0: तो बहुआयामी प्रतिभा जो जो बात है
1: हाँ।
0: ये का एक विभिन्न क्षेत्र में खास करके समाज भीतर ने
1: हाँ।
0: विभिन्न लोगों संग मिलने हर चीज ने खेली आप लोग मन तो इंटरेस्ट जो वाजे नहीं
1: हाँ।
0: अंग्रेजी बोले इंटरेस्ट बोले हम तो मन ने लगाओ हम जो मन ने गोटे जो उनको कर तो का इच्छा शक्ति रहता है तो उन चीज के अगर हम बढ़ा लू नहीं तो चार लोग जो पूरे मुझे कहता गेलू समाज पूरे गेलू उन मन के बोले हम तो जो चीज के दख लो भी थी आए जो चीज हम जो कर लो भी थी आए उन लोग के चार लोग के समझाऊ से सांगू से तो उन मन मन बोला हम संग बात के सुन बात प्रेरित हो अभी अब अच्छा खेती करूं से लोग दखला आम से संग बहुत लोग बढ़िया बढ़िया खेती करू मुरियाला हम जो गाँव वाले आम जो बराबर आम चल अच्छा मुकाबला करूँ आगे बढ़ते हो खेती करू मुरियाला है नी पहले हम जो खेती ले ली उसने किसम जो कलाकारी क्षेत्र में बोले हम जन कलाकारी काम कर लू है नी तो लोग के बल शौक लागे थे लेकिन माहौल खेल अलग प्रकार से वहां से आजकल मोबाइल टीवी लोग जो ना से नहीं भूल रहा हूँ दिल्ली से नहीं आम कहे हुई आम जो मनोरंजन है नहीं तो उन मनोरंजन के जैसे नाट आ सी आम जो बात बस्तर बात है नाटक में लगभग लगभग खेल लुप्त प्राय टाइप जो हो जाए है नहीं आम रेडियो बीता मन भी तुम्हें आसाज के ना टीवी बीता है खेल घून के उतर दका है सब बुनू बात लोग जो खेल घून के जानकारी मिले से तो असन विभिन्न क्षेत्र में रोन भाती लोग के बोले जो ना से नहीं प्रेरित कर तो का जो मौका मिले से और उन चीज आम जो परिवार ने आगे लिखने का असन मके आम जो सियान सांग मकमीर ली है नी तो उन भावना के लोग आज लोग संगे उठून बाजी हफ्जा काम करून बाजी मन बोले संतोष रहे चलो भाई पढ़ लो लिख लो कोने नौकरी चाकरी नहीं मिल ली तो कम से कम दूसरा काम ने बोले तो आगे बढ़ते कोशिश करते रहे आसन करून बाजी हम आगे बढ़ते हिसाब ने और परिवार के आगे बढ़ा तो चक्कर में हमें चलू से है ना समाज के बोले हम मौका जैसा लगे से तो जो नी चीज के जानते बीती आए उनके समझाऊ से नाम असन तो करू असन असन हो रही असन असन आए तुम असन करा से तो तुम उनके लाभ हो दे असन टाइम सांगले उन मन बोले हम जो बात के समझने वाले भी प्रेरित हो सो
1: तो दख मैस दखा असन आए कि इतलो अच्छा नगत गुड बात होली तुम चो संगे बोले तुम चो पूरा जीवना चो बोले अब तक चो अनुभव पढ़ाई लिखाई किस्ती किसानी व्यवसाय धंधा धार्मिक जो काम आए ये सब की जानू खोली तो असन गोट के जान लेने सुन लेने चिका है कि आम चो जो ये तो पीढ़ी आए उनमन आगे जाऊ खुला सकोत इतलो अच्छा तुम चो अनुभव के सांगला साल खूब खूब सेवा जुआर
0: जुआर जुआर माता दंतेश्वरी की जय।
2: आज जो सगा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे कृषक और व्यवसायी महेश चंद्र जोशी से ली गई भेंट वार्ता, भेंट करता थे बलबीर सिंह कच्छ। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में लीजिए सुनिए ममता चंद्राकर और साथियों के गाए छत्तीसगढ़ी गीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी, आपन मंचो सवाल, आपन मंचो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
3: लोकगीतों के कार्यक्रम गुर्दू में आप सुन रहे हैं ममता चंद्राकर और साथियों के गाए छत्तीसगढ़ी गीत।

0: गुरदुम, बस्तर के लोकगीतों का ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थे ममता चंद्राकर और साथी, ये आकाशवाणी जगदलपुर है।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
4: जीएसटी परिषद आप लोग 56वां बसका ने देह पाए लागून सुविधा और सामान के सस्ता करून देश जो खूबे लोग मन के सहायता कर ली से। डायबिटीज बीमारी चो राजधानी बल तो भारत के ए बीमारी चो बीमार लोग मन का जे रोज दिन चो जरूरत बन लोग ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप सुपरे जीएसटी चो दर ने कम कर तो रोली से। असने ब्रेस्ट कैंसर बलो ने छाती चो कैंसर बीमारी संगे अस्थमा चो इलाज ने काम एतो बीती

0: उपाय थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स उपरे बलेबल टेक्स चोदर के कम करतो रोली से।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी कि 756 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय दिन के 11 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए हमारा कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओ, आज हम आपको हिंदी सिनेमा जगत के एक ऐसे अभिनेता से परिचित कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी सहज अभिनय शैली और मासूम व्यक्तित्व से दर्शकों के दिलों में विशेष स्थान बनाया है। वे कलाकार हैं अभिनेता विवेक मिश्रण। आइए श्रोताओ, आपको सुनवाते हैं इन पर फिल्माया फिल्म दिल है बेताब का ये गीत।

श्रोताओं, अपने करियर के शुरुआती दौर में मिले सफलता को कायम रखना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। अभिनेता विवेक मुश्राण ने भी दर्शकों के दिलों में अपनी पहली फिल्म से ही एक खास जगह बना ली थी। विवेक जी का जन्म 9 अगस्त 1969 को रेणुकोट उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम दीपक मुश्राण और माता का नाम था अनुसुईया मुश्राण। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई रेणुकोट में ही की और फिर अपने आगे की पढ़ाई के लिए वे देहरादून के शेरवुड कॉलेज में चले गए, जो एक्टिंग स्कूल भी था। इसी दौरान इनकी दिलचस्पी एक्टिंग की ओर होने लगी और कॉलेज खत्म होते ही उन्होंने रुख किया माया नगरी मुंबई का और फिल्मों में काम ढूंढने लगे। इसी समय ही निर्देशक सुभाष घई को अपनी फिल्म के लिए एक नौजवान की तलाश थी और जब वे विवेक मुश्राण से मिले तो उनकी तलाश मानो खत्म हो गई और विवेक मुश्राण को मिल गई थी उनकी पहली फिल्म। फिल्म का नाम था सौदागर। ये फिल्म वर्ष 1991 में आई और इस फिल्म से ही विवेक मुश्राण ने बॉलीवुड में कदम रखा। इस फिल्म का गीत इलू इलू काफी लोकप्रिय हुआ और इसके साथ ही विवेक युवाओं के बीच चर्चित चेहरा बन गए। आइए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं फिल्म सौदागर का यही गीत।

फिल्म सौदागर की सफलता के बाद इनके पास कई फिल्मों के प्रस्ताव आने लगे और इन्होंने कई फिल्मों में काम भी किया, जिसमें फर्स्ट लव लेटर, बेवफा से वफा, राम जाने जान अनजाने, सनम किसना जैसी फिल्में शामिल हैं। बाद के वर्षों में उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं निभानी शुरू की। वे करीना कपूर अभिनीत फिल्म वीरे दी वेडिंग में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई दिए। इसके अलावा इन्होंने द वॉरियर पोएट और तमाशा जैसी फिल्मों में भी अपने अभिनय को बखूबी निभाया है।

फिल्मों के अलावा विवेक मिश्रा ने टीवी धारावाहिकों में भी महत्वपूर्ण पहचान बनाई। बच्चों के लोकप्रिय धारावाहिक सोनपरी में उन्होंने रोहित का किरदार निभाया, जिसे दर्शकों का बेहद प्यार और सम्मान मिला और बच्चों की दुनिया में यह धारावाहिक काफी मशहूर हो गया। इसके अलावा वे परवरिश, कुछ खट्टी कुछ मीठी, निशा और उसके कजन्स और कई अन्य टीवी सीरियल्स में नजर आए और कई यादगार भूमिकाएं निभाई। इनकी एक फिल्म सातवां आसमान का ये गीत आपको सुनवाते हैं।

श्रोताओ, विवेक मुशरान उन कलाकारों में से हैं जो अपनी सादगी और अलग किरदारों के चुनाव के लिए बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। और एक्टर होने के साथ साथ विवेक एक अच्छे गायक भी हैं। उन्होंने अपनी एक खुद की एल्बम भी लॉन्च की थी जिसका नाम था कहीं खो गया, और इसके बाद इन्होंने हाल फिलहाल कई वेब सीरीज में भी अभिनय किया है। आइए आपको इनकी फिल्म अनजाने का ये खूबसूरत सा गीत सुनवाते हैं।

विवेक मुशरान उन कलाकारों में से हैं जिन्होंने अपनी सादगी, सहज अभिनय और मेहनत के बल पर दर्शकों के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया। उनकी अभिनय यात्रा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का मार्ग है। पर्दे पर उनकी चॉकलेटी मुस्कान, संवादों में उनकी सहजता और अभिनय में उनकी ईमानदारी ही उनकी असली पहचान है। आइए हम सब मिलकर अभिनेता विवेक मुशरान के उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य और निरंतर सफलता की कामना करें और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ उनकी फिल्म प्रेम दीवाने का ये गीत भी सुनें।

अभी आप हिंदी फिल्म जगत के अभिनेता विवेक मिश्रान पर केंद्रित हमारा कार्यक्रम एक ही कलाकार सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस वक्त दिन के 11:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। इसमें सुनिए बॉम्बे जयश्री की आवाज में ये पहला गीत। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। अभी दिन के 11:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार एकांश हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के लिए एकीकृत आजीविका कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई नेशनल यूथ म्यूथाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ ने 7 स्वर्ण पदक सहित 17 मेडल जीते। और मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन प्रदेश के कुछ जिलों में तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के लिए एकीकृत आजीविका कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। मुख्य सचिव विकासशील ने इस संबंध में अधिकारियों को विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ये कार्यक्रम बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिलों में शुरू किया जाएगा। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने राज्य के सभी 194 नगरीय निकायों में शहरी विकास योजनाओं की निगरानी और सशक्त करने का निर्णय लिया है। विभाग की सचिव संगीता आर ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, स्वच्छ भारत मिशन और अमृत मिशन सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि आज 6 जून को सभी राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी अपने अपने जिलों में पहुंचकर योजनाओं की प्रगति और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए एक वृहद पौधारोपण अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत पूरे प्रदेश में 21 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने बताया कि प्रदेश के सभी बूथों में अनिवार्य रूप से पौधारोपण का कार्य किया जाएगा। दुर्ग जिले में अफ्रीकी देशों से आए 4 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को एहतियात के तौर पर 21 दिन के लिए होम आइसोलेशन में रखा गया है। इनमें कांगो, इथोपिया, युगांडा और सूडान से आए यात्री शामिल हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज दानी ने बताया कि सभी यात्रियों की प्रतिदिन स्वास्थ्य निगरानी की जा रही है। फिलहाल 4 यात्री पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनमें किसी प्रकार के लक्षण नहीं पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई नेशनल यूथ म्यूथाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ ने 7 स्वर्ण पदक सहित 17 मेडल जीते हैं। इस चैंपियनशिप में 26 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 900 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ से 36 सदस्यीय दल इस चैंपियनशिप में शामिल हुआ। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा आज से शुरू हो गई है। ये परीक्षा 9 जून तक चलेगी। परीक्षा 2 पालियों में हो रही है। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन प्रदेश के कुछ जिलों में तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। आज प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी दी गई है। भारत सरकार की राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन दंतेवाड़ा स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में 8 जून को सुबह 10 बजे से किया जाएगा। मेले में जिले के समस्त आईटीआई के वर्तमान प्रशिक्षणार्थियों, पूर्व प्रशिक्षणार्थियों और अन्य इच्छुक युवाओं को आमंत्रित किया गया है। गौरेला पिंड मरवाही जिले के कोटमीकला साप्ताहिक हाट बाजार में ज्वेलरी व्यवसायी की हत्या और लूट मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल उर्फ मनीष मंडल को झारखंड के देवघर से गिरफ्तार कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के लिए एकीकृत आजीविका कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई नेशनल यूथ म्यूथाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ ने 7 स्वर्ण पदक सहित 17 मेडल जीते। और मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन प्रदेश के कुछ जिलों में तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ ही में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त दिन का 12 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम लोकरस। प्रस्तुति है संपतराम नाग की, संयोजक है चंद्रशी ठाकुर, और तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोकरस।

0: फोन इन लोगरस के सुनतो सपा दादा दीदी मन के मच बाटले जुआर हाले सुनु पहिल फोन काचो आए।
1: हेलो
2: फोन इन लोगरस।
1: नमस्कार दादा, मैं चिंगरी कुरासिया कालदी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ इंद्रभान सिंह बोला था।
2: हाँ दादा, जुआर ना कसा ना सास।
1: ठीक है दादा, ड्यूटी में हूँ और ड्यूटी के टाइम खत्म हो गई से और बस आए का टाइम हो गई से दादा। और हमर कती तो खूब आंधी तूफान रही से दादा, एक हफ्ता सारे कोई कार्यक्रम ठीक से सुन नहीं पाए, नेटवर्क गड़बड़ रही से एकदम।
2: हाँ हाँ, तो सफाई बाटा है ना असन जल गर्मी क्यों की रात मिल रही है।
1: हाँ गर्मी से राहत मिली से आज में दिसंबर को पंडवानी गीत सुनू दादा, वो का पिजन बाई की आवाज में, पिजन बाई की आवाज में पंडवानी गीत वो गीत ला सुना दिया दादा।
2: ठीक है इंद्रवान दादा, तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ से ना सुनाते हुए।
1: शामिल करा दादा, जोहार।

काम। एक दिन एकादशी दुआस के दिन किच्चा कहा रानी सुयेशना के पास भोजन खाए बर पहुंची और लेके थाली जब तैयारी भये सुयेशना और देवी सलेंद्री हाथ में पंखा लेके हिलावा थवे कका।

सुदर्शना कहते नहीं भैया नहीं, ये तो देवी द्रौपदी के दासी है, ये कर नाम सलेंद्री है, और पास में बेटी के सामान रखे हो, ये तोर भाची है कि चक्कत है, गांव भर के लते बेटी की बे तो सब जन मोर भाची नहीं हुआ है, पर ये मोर राज रानी के लायक है, 12 बजे रात के मोर से घर में भोजन के थाली सजा के आज भेज देबे। सुदेशना घायल हो गए और देवी सलेंद्री ला बोले, देवी सलेंद्री 12 बजे दोपहर के बेर हो गए, कहे भाई भोजन के

और सैलेंडरी कथे दाई और भैया के नियत मोला अच्छा नहीं लागे तब मैं का करो बेटी ये थाली ला जल्दी ते पहुंचा के आ जा। हाथ में थाली लिए लोटा में पानी और देवी सैलेंडरी आगे आगे चलने।

सोचत अपन आँखी लमूंद ली। देवी सलेंद्री भोजन लगे के पहली मन में सोचा है भगवान मोर भरते दया करे मुरारी, काबर कि अभी अभी अगर आँखी मनी दिया गे मैं थाली ला।

0: बना तो राय का ज्यादा जुगे करुण रुख मन के निक तो राय ने पटेल दादा सांगा आज कौन गीत के सुन तो कच फोन लगा ला ससना
1: ममता चंदा का के दे दो फिर
0: हाल ठीक है पटेल दादा तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ से ना सुनाते हुए

0: हेलो पुनीन लोगराज।
1: हेलो,
0: हाँ पुनीन लोगराज।
1: पुनीन लोकरस।
0: हाँ कौन बोला सर? दादा आगे ना संगास नहीं ना।
1: दादा, मैं अमीर कश्यप बोले हैं ना, सामने
0: हाँ
1: लगा ले।
0: हाँ और अमीर दादा कसन
1: आमी
0: आसना सांगा खूब दिन ले फोन लगा
1: तो
0: ले
1: नगत
0: सकते।
1: नगत आसू, आल तो मैं आकाशवाणी परिवार कसन आसना।
0: हाँ मी सपाय अच्छा दादा।
1: तू संपत नाग बोल।

0: किसने
1: हाँ दादा, मैं संपत नाग बोले से। हाँ
0: चिताले ना चुचवा के
1: मुख्य चिताला
0: हाँ
1: चिताला लाग ली
0: ये
1: का। और
0: दे
1: अमीर दादा दान दानी बुनुक मुरिया लास ना कहाँ बाटे आजकल।
0: रोपा लगा का छुई तैयार करूँ ना पोला पका तराय
1: हाँ, और पानी कसन आ
0: पानी
1: जाले तुम चो गाँव मन बाटे।
0: तो आजकल नहीं आता ना
1: हाँ, फिर
0: रोज शाम शाम तो बादरी धाके समांतर मारे नहीं अच्छा ले
1: हाँ, और
0: लेकिन पानी सुविधा से पानी दकान दकरे तो पोला पका लो रासे
1: हाँ, और कोनी कोनी बीच ने तो कौन कौन बटे अच्छा मार लिसका है ना सन।
0: हो कौन कौन तो बाटे अच्छा मारे से काय
1: हाँ, और अमीर दादा तुम चो गांव बाटे हम सर की बोल बेचू आस ना।
0: हाँ बेचू आत ना सरगी
1: हाँ कसन आस जल सर की होने सु।
0: सरगी बोले छाया से ना
1: हाँ, और अमीर दादा सांगा आज कौन गीत के सुन तो कच फोन लगा ला सस ना।
0: ये आज ही मुके गोटो को छत्तीसगढ़ी गीत सुना उन दिया सुना काय तो बीती ना उन चना के दार बीती
1: हाँ चल ठीक है अमीर दादा, तुम चमन कर लो गीत के सुनाओ से सुनाते बेना।
0: हाँ।

0: हेलो।
1: हाँ फोन इन लोग रस।
0: हाँ भैया, योगेश जांगड़े बोला था, सेवा बांधा बेमे तरह ले।
1: हाँ योगेश दादा, सांगा कसन आसस ना।
0: बढ़िया हम भैया।
1: हाँ और गर्मी कसन आ जाल दादा यहाँ।
0: अड़बड़ गर्मी भैया, घर ने बाहर नहीं निकले सकने से हो जाता।
1: हाँ।
0: हाँ
1: और काय काय काम बुता करू आज जले आजकल तुम्ही।
0: अभी तो अब खेती

0: मैं तैयारी करत हम भैया, मानसून बरसात आही
1: हाँ
0: ओकर बाद धान के बुआई काम ल करबो, तो अभी खेत में जोताई काम बराबर करे के काम ल करत।
1: हाँ
0: हाँ
1: गर्मी सीजन ने काय काय लगान रहा जाले सो तुम्ही।
0: अभी तो कुछ नहीं है, साग भाजी एक दूठो लगाए हम बाड़ी में, और खेत खार मन तो अभी खाली है।
1: हाँ, तो फिर पानी लेने रोपा लगा हुआ है ने।
0: हाँ हम ज्यादातर बुआई ओनारी के काम करथन भैया, रोपा थोड़ा से कम लगाथन।
1: अच्छा बुन तो बिके
0: हाँ
1: हुआ है।
0: हाँ
1: हाँ सांगा आज कौन गीत के सुन तो काज पवन लगा ला ससना।
0: शेख हुसैन जी का आवाज में कोई भी बढ़िया से गीत सुनवा दे। हाँ
1: तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ से ना सुनाते हुए।

0: हेलो पुनील लोगदास।
1: जुआर कर
0: हाँ जुआर ना कौन बोला सा सागे ना सागस नहीं।
1: सुखदा काम बने हिला कोंडा गांव जिला छोटे बन जोड़ा।
0: हाँ और सुखदा दादा सागा ना यो काय काय है आजकल काम बुता चले से।
1: आजकल है पानी पर तो नहीं मारे।
0: हाँ नी मारे गांव बट ने।
1: हाँ बट मारे हिला जगदलपुर बट।
0: हाँ जगदलपुर बाट बोले कौन कौन बाट मारे से ना के कौन कौन बेरा।
1: गरम गर्मी कैसे ना फिर
0: हाँ गर्मी तो लागे से ही ना फसुक दादा तुम चबार सरगी मन बिन वास ना बिने सत ने। अशोक दास प्रयाम दादा सांगा आजी कौन गीत के सुन तो कैसे फोन लगा ला सास ना।
1: चंद्रिका प्रयाम से दादा या नांगर फांद जाओ।
0: ठीक है अशोक दास दादा तुम चमन कर लो गीत के सुनाओ से ना सुनाते हुए।

0: हेलो पोनिन लोगराज
1: जोहार दादा
0: जोहार ना आगे ना सांगास नहीं कौन बोला सास तुम्ही
1: कावर आस ले पे गोंचू दादा बोले
0: हां गोंचू दादा सांगा ना खूब दिन ले फोन लगा लिस काय नु
1: ओ तुम्ही बोले ना अमीर भाई साल
0: हां
1: बेड़ा बूता था मन तक शांत
0: करते हां हां जान दानी बुनुक सार लास ना तुम्ही
1: ना जुन दादा ला तो काय बोले
0: कला सास बोला
1: ना जुन
0: हां पानी कसा ना जाले गोंचू दादा तुमचो गांव बाटे
1: ओ सोनो आर दिन रेता दे आदुका इली दादा
0: हां खूब इली ना
1: खूब इली
0: पानी का सन मार ले जाले
1: पानी बली थी हाँ, नागर हाँ, एक दिन नागर और चले थे
0: अच्छा नागर जब तसनी लीने
1: आओ
0: सांगा ना आज कौन गीत के सुन तक आज फोन लगा ला सर
1: मुद्रा हम कैसे अब बोलो भी गीत सुना दिया से
0: ठीक है गोंचू दादा तुम चमन कर लो गीत के सुनाओ से सुनाते हुए ना

0: हेलो, फोन इन लोगरास
1: हाँ,
0: वंदे मातरम। आगे ना संगा सुनाए दादा, कौन बोला सास तुम्हें?
1: रामचंद्र माखीजा
0: संगा आज कौन गीत के सुन तो कजल लगा सासना।
1: आप सुनाओ। यह केदार यादव जी की आवाज में है, ये छत्तीसगढ़ है भैया, सुन लो एक राम कहानी। छाती मारे सूरत आ गई और आंखी में पानी भैया, यही गीत लग सुनाइए आप। और मौसम कैसे है सर उधर?
0: हाँ, मौसम तो इबे गर्मी लागे से ही ना आजकल।
1: हाँ,
0: हाँ
1: बदल छाए है, उमस छाए है, गर्मी हवे।
0: हाँ हाँ एम
1: हाँ, पड़े रही थे एक दो दिन में, अभू
0: हाँ हाँ
1: रात रात में।
0: हाँ
1: और वैज्ञानिक मन बताए थे केरल से मानसून आई एक जून से, तो कहीं कहीं ओकर असर दिखत है हमारे
0: हाँ
1: छत्तीसगढ़ में।
0: हाँ
1: बदल है, आज बदल है, फिर धूप भी
0: गर्मी नहीं आया संजल ने है।
1: है। हाँ
0: अल ठीक है माखी जा दादा, तुम चमन कर लो गीत के सुनाओ से ना सुनाते हुए
1: हाँ दादा, वंदे मातरम।
0: वंदे मातरम।

0: हेलो पुनील लोगरस, कौन बोला सर? दादा
1: दादा मैं दीपक यादव बोले थे।
0: कहाँ ले दीपक दादा?
1: ये मैं किलेपाल
0: किलेपाल ने काहे बनावास दीपक दादा?
1: मैं दादा फारेस्ट नहीं रहा हूँ।
0: हाँ हाँ रेडियो किधर दाए सुनवास फिर दादा?
1: दिया नहीं सुनवाया दादा।
0: हाँ हाँ कसन लगवा है ना ये आकाशवाणी जगदलपुर कार्यक्रम?
1: अच्छा लगवाए।
0: हाँ तुम ही तो रान राखा करा सास बोले से।
1: रान राखा कर तो रहा है ना दादा, फिर तो हम चुका जाए बोले अच्छा रुआ है।
0: नहीं कर तो रहा है कि नहीं सफाई भी रान के राखा कर लेने वाले देना ने रान
1: तो
0: रान
1: तो
0: रले
1: पानी
0: तो।
1: घस रहे दादा,
0: हाँ पानी संगे
1: पानी
0: संगे और बोल जसन चाती आए बोड़ा आए और प्रकार जो राने मीरू आए नहीं ना सागवान बोले।
1: हाँ दादा ये तो आम से ही का जाए ना दादा, ये
0: हाँ
1: इतरो बल राम अगर आम ही नहीं सुरक्षा कर ले फिर कौन करवाए हम।
0: हम के सपाए के किने के सोच विचार कर तो रहे हम के रूप मन बोल उतलो नी गोन तो रहे ने
1: चाहे कि विदेश विदेश भी तमन ये बात युवा काया हम तो बस्तर के एकदम मन करवा।
0: हाँ उन विदेश बिता होने तक चौरान के दक्षिण को बड़ी को आज जानो हम के बोला चला गया है नहीं ना रान रले ने किनिक चाहे गांव बिरास चाहे लगे किनिक जाऊन बोल सका जे बोले ऐसे
1: किसान ने कहा उतरो गर्मी बल्ले नहीं आए उतरो ठंड बल्ले नहीं आए हम तो बस्तर में। हाँ दादा कहा कि विदेश ने तो इतरो गर्मी आसे कि पता नहीं कुबे आसे उन्हें कहा जे हम जितरो बल्ले ये बात यू बात हम जो बस्तर ने उनके कहा अच्छा लगुआ है।
0: हाँ अच्छा लगुआ है। और दीपक दादा सांगा आजकल फिर जसन कहाँ कहाँ पड़िया होता का बूटा लगा तो वाट मन बोल करू हसना तुम्हें?
1: हाँ दादा मैं हूं ऑपरेटर काम करवाया।
0: अच्छा ऑपरेटर नहीं कोनी कोनी जसन की बाड़ी ने नाले पेर मोरा ने कोनी कोनी आजकल उन मिलगिरी और बोल
1: मीरू आए उनके नहीं हुआ कोनी को लगा हुआ था।
0: हाँ
1: हाँ कि असन पौधा लगाता था कि जैसे कि आम के फायदा मिले जैसे कि आम होली इमली होली सेल्फी होली असन पेड़ के लगाते रहे।
0: हाँ जैसे ही बोल ली शाम होली मुनगा होली नाल पर पनस होली ये तेतर संगे संगे ये मोर रुख मन बोला आजकल की निकम मत हो जाए से उन लगा
1: कि ये सब के लगा ले आम के बोले फायदा मिले थे।
0: हाँ
1: दादा मके गोटो गीत सुन तो रहे
0: हेलो संग ना जी कौन गीत के सुन तो कच फोन लगा ला सर। दीपक दादा तो जो फोन तो कर ली एक जगह जी हम जो बाटले गीत सुना सुनाते।

0: हेलो फोनिंग लोगरास।
1: हाँ दा फोनिंग लोगरास।
0: हाँ कौन बोला सर? दादा आगे ना संगा सुनाई ना।
1: संजीत कुमार बने दादा पांडियाड गांव परस गांव ले।
0: हाँ और संजीत दादा संगा ना आजकल काय काय काम उता करू आज तुम्ही
1: बेड़ा बता दा जोनर टोल नु सुना छे तो पानी गल मार जाता बीच बीच ने।
0: हाँ और जोनर टोल सार लास दादा तुम्ही।
1: हाँ दादा।
0: हाँ हाँ कसन रे जले सु जोन दा काय बोल
1: रेड कल दुनिया दादा रेड कल इस डाउन आ जोनर छ जी।
0: हाँ तो कौन कौन बेरा आसनी डाउन रो आए और कौन कौन दिन बोलची आए बोल काय ने।
1: हाँ दादा मंडी निकल बिकट भी दादा इतना जो अंदर बिकते बिकन से गला।
0: हाँ सांगा दादा आज कौन गीत के सुन तो काज फोन लगा ला सासने
1: मनीराम मंडई हम चु संगर से गोनी गीत सुना दिया दादा।
0: मनीराम चो।
1: हाँ दादा
0: संजीत कुमार दादा सांगा ना कितलो तक पढ़ ला सास जल तुम्ही
1: मच एमएससी कंप्लीट दादा
0: काय ने कर ली जल एमएससी
1: गणित ने कर ले दादा।
0: हाँ
1: आजकल डीएलएड एग्जाम दे जाऊ रहे हैं।
0: हाँ कसन बन ली जल ना जी डीएलएड भी ती पेपर रहे तो
1: ठीक बन ली दादा।
0: हाँ
1: अच्छा कॉलेज में दादा बीएड डीएड करें दे वाले से
0: नहीं कर तो रहा है ना समय रहता मेरा ये कर तो रहा है कॉलेज वगैरह करूँ नहीं हुआ है बी आ बी वाले ने।
1: हाँ दादा
0: ठीक है दादा तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ से ना सुनाते हुए।

0: हेलो पोनिन लोगराज।
1: हेलो।
0: हाँ पोनिन लोगराज।
1: हाँ राम राम भैया।
0: हाँ राम राम। कौन बोल रहे हो दीदी आप?
1: रानीगांव नगरी ले चित्ररेखा साहू।
0: और दीदी बताओ आज कौन सा गीत सुनने के लिए फोन लगाए हैं?
1: पंचराम मिर्जा कोई भी गीत सुना दे छत्तीसगढ़ी।
0: हल ठीक है दीदी, तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ से सुनाते हुए।
2: मोर

0: দাদা দিদিমান কার্যক্রম পনিন লোগরাস চো রেকর্ডিং রোজেলে কিংবার দিনকে তিন বাজেলে দারুন সাড়ে তিন বাজে তক ওয়েসে এটা তুমি বলে ফোন করুন তুমি চমন করলো গীতকে শুনুক সকাশ ফোন কর তো কাজে আমচো নম্বর আয় দুই দুই দুই ছয় ছয় ছয় আর গোটক নম্বর আয় দুই দুই দুই এক ছয় শূন্য ফোন কর তো পহিল জগদলপুর চো এসটিডি কোড নম্বর আয় শূন্য সাত সাত আট দুই লগাউক নি ভুলকা এদায় পনিন লোগরাস লে মকে দিয়া বিদা জুয়ার।
1: अभी आप लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम लोकरस सुन रहे थे। प्रस्तुति थी संपत राम नाग की, संयोजक थी चंद्रऋषि ठाकुर। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। अभी दिन के एक बजने को है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज स्लोवेनिया के नवनियुक्त विदेश मंत्री टॉन काजर को बधाई दी और उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। पूर्व राजनयिक टोन काजर ने स्लोवेनिया में प्रधानमंत्री जिनेश जानशा के नेतृत्व वाली नवगठित दक्षिणपंथी गठबंधन सरकार में आधिकारिक तौर पर शपथ ली। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन का हिस्सा होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। भारत अमेरिका सेना के अधिकारियों की वार्ता को 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीतिक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमांड जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वोवेल ने की। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल में आज भारतीय आम के प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रमुख भारतीय फल आयातकों ने हिस्सा लिया। इसमें महाराष्ट्र के अल्फांसो और केसर, आंध्र प्रदेश के बंगनपल्ली और हिमायत, उत्तर प्रदेश के लंगड़ा, दशहरी और गुजरात के पके राजपुरी आम शामिल हैं। अमरीका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों की का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही पूरा नहीं करता बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पिछले वर्ष जुलाई में सिएटल में भारतीय आम की शुरुआत की थी। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस वक्त दोपहर के 1:05 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कृषि समसामयिक की बेड़ा खाड़ा चुगोट।
4: कुकुड़ी पसंद रलने हनी अटकने बिकले खूबे फायदा हो सके और घरे कुकुड़ी रले सगाई लोने अलग ले घेनुन पैसा खर्चा करुक नहीं पड़े। मानतर ये तेबे हो दे जेबे कुकुड़ी के बीमार से मार नहीं रहे। बेरा समय ने कुकड़ी मन के कई एक बीमारी झोंटे सत जेचो ने आम के खूब्बे नुकसान उठाव पड़े से हुनी कजे ये मनचो सही रख रखाव और बीमारी ले बचा तो उवाट के जानू रतो जरूरी होय से। आमचो बस्तर संभाग ने जोन विधि ले कुकड़ी पोस्तर होय से उनके ग्रामीण बेकयार्ड मुर्गी पालन वाले सत बोलो ने कुकड़ी मन के घर छो आखना नाले बैला खोटा छो कुनी रेटे गुड़ा ने ठान बनाउन संगाउन से। कुकड़ी के बीमारी ले बचा तो काजे ये ठान छो सफाई के ध्यान देतोर खूबे जरूरी होय से। एचो काजे कुकड़ी गुड़ा ने चूना और लाकड़ी के मिसाउन हल्का हल्का बिखरुन दिलो ने खूबे नंगत रहे से। गुड़ा के

0: सबले पहिल कुकड़ी पटकी के खाले लटकाय से मुरुस ने दखा दे से लाल हरा नहाले हरदिया रंग चो दस्त करे से और मन करुन नी खाए असन काही बल लक्षण दखा दिलो ने तुरते लगे चो पशु औषधालय ने जाऊन डॉक्टर मन के सांगुन इलाज करतोर जरूरी आए। पशुपालक भाई मन ऐसे ही संगे संगे और गोट मन के बले कुकड़ी के बीमार ले बचत काजे जानतर ऐसे उन्हें ये आए कि हर हमेशा थिरथिरा कुकड़ी के जी घेन तो राय रतोठान किंडी डेंग होता राय और कुकड़ी के बीमारी चो लक्षण दखा दिले तुरते उनके नंगत कुकड़ी ले अलग संगात राय। बीमार होन मरल कुकड़ी के खोदरा खोड़ून ऊपर ले चुना के बिखरून माटी पाटून देते राय। बाहर ले घेन आन लोग कुकड़ी चो ऊंडकी पटकी के बले बाहर नहीं पकात राय एक बले खोदरा खोड़ून पाड़त राय। जोन बले चीज ने पानी नहाले कोंडा देउन से बलन ठान ने उनके बले रोज साफ सफाई करतोर जरूरी है। असन पता चले दे कि लगे चो घरे नहाले लगे चो पारा ने कुकड़ी मन के कहीं बीमारी झोंटली से तो आप लोग घर चो कुकड़ी हुन बाटे नहीं जावत तुरते ऐसी व्यवस्था करू पड़े से और रोग राई ले बचा तो खाजे डॉक्टर मन के सांगुन टीका लगाता रहे। टीका लगाउन रलो ने कुकड़ी के उन बीमारी ले हमी बचा सकवा। ये टीका मन के नियम ले 6 महीना और 1 साल भीतरे डॉक्टर मन लगाऊन दे सत हम ये टीका लगाऊन जोन बीमारी ले कुकड़ी मन के बचा सकूँ उन बीमारी मन चमना सांगे दे ये बीमारी है झुमरी बीमारी माता बीमारी और गोटक हो से गंबारो। पशुपालक भाई मन कुकड़ी गोटक नंगत फायदा देते बीती व्यवसाय आए जोन रख रखाव और इलाज चो कम खर्चा ने जगे फायदा दे से उन्हीं काजे एके बले अच्छा मन करुन ध्यान देउन नंगत उवट ने कर लो ने तुमके नंगत फायदा होय दे।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि समसमाय की बेड़ा खाड़ा चुगोट, ये आकाशवाणी जगदलपुर है।
2: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस वक्त दोपहर के 1:10 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। गीतों का सफर है सुरों की रवानी है, गीतों का सफर है सुरों की रवानी है, आपकी फरमाइश से सजी आज की कहानी है। तो आइए दिल की बातों को धुनों में पिरोते हैं और फरमाइशी गीतों की आज के इस महफिल को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, स्नेही अभिवादन। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम श्रोता सुमन। मैं हूं आज के अंक की प्रस्तोता जूही जोशी। तो आइए शुरू करते हैं आज की सुरमई महफिल को आपकी फरमाइश के इस पहले गीत के साथ। फिल्म का नाम है गोरा और काला। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने, शब्द है आनंद बख्शी के, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस गीत को सुनने की ख्वाहिश हमसे की है आप सभी ने। आप हैं बीरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरे। खमरिया बिलासपुर से साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति और प्रतीक कुमार। श्री श्रृंगी ऋषि महानदी सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु, अंकित देवांगन। धरसीवा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा यादव, अनुराग।

अल्पना यादव, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग अभिषेक, अल्कना अलका, अनामिका, बलदाव यादव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सीएल यादव। अटल रेडियो श्रोता संघ साकरा सोमनी से नारायण लाल साहू, कुलवंतिन देवी, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी, मिलिंद कुमार, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू। जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार धंजे, शीला और गायत्री धंजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। हुकुम कटारिया, हुकुम चंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, दीपक सचिन कटारिया, श्रीमती प्रभा देवी कटारिया, कृष्णा विराज, अर्नव और काव्यांशी कटारिया। आप हैं सनावद मध्य प्रदेश से। मिहिरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गम्हाड़कर, सरिता गम्हाड़कर, सिद्धांत गम्हाड़कर और प्रिंस एकांश गम्हाड़कर। बहादुरा नागपुर से शैलेश गम्हाड़कर, वैशाली गम्हाड़कर, श्वेता सुमित गम्हाड़कर और ध्वनि गम्हाड़कर। राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। आप है छत्रपति संभाजीनगर से। टंगनिया रायपुर से अनिल कुमार यादव, श्रीमती भारती यादव, अयाश कुमार यादव और गगन कुमार यादव। भागीरथी नायक, जितेंद्र नायक, सुभाष नायक, रविंद्र, शिवानी, अश्विनी, हर्षराज, अरविंद, आदित्य और गुनगुन। आप सभी हैं रतनपुर से। तो लीजिए श्रोताओं, सुनिए आप सभी का पसंद किया हुआ ये तराना।

कार्यक्रम का अगला पसंद किया गीत फिल्म बहारों के सपने से है। गीतकार मजलू सुल्तानपुरी, संगीतकार आरडी बर्मन, स्वर है लता मंगेशकर का। लता मंगेशकर और मन्ना डे का इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी। आप हैं कुम्हार गली कोलगांव से, पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी, प्रतीक्षा, अभिषेक, सार्थक, प्रथमेश और संतोष चंदन। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू रविंद्र सेन और यहीं से ही खुशी रौनक सेन। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये आप हैं डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से। देवपेठ वाशिम से राजेश खंबायतकर, प्रेमा खंबायतकर, राजश्री भावसार और प्रीति। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा सालिया, शोएब खान, मुस्ताव खान, राव भाई और शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही और महराज जहां आप हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। दरबार कॉलोनी सनावत से किशोर कुमार सांवले, श्रीमती रेखा सांवले, हिमांशु, अनुराग सुलोचना, चारुवी और मास्टर प्रणव सांवले। सुंदरपारा रोहासी से डगेसर राम साहू, नूतन कुमार साहू, गौरव साहू। दतरेंगे से मनोज साहू, सूरज और सागर कुमार साहू। सांवरगांव महाराष्ट्र से रघुनाथ नारे, पुष्पाताई नारे, श्रीधर नारे और मीनल नारे। अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी केवट और कृष्णा केवट। बेरडी से हैं हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची और तनु करमरकर। तो लीजिए श्रोताओं सुनिए आप सभी का पसंद किया हुआ ये गीत।

श्रोता सुमन का अब ये अगला तराना आपकी फरमाइश पर फिल्म अगर तुम ना होते से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने, गीतकार गुलशन बावरा, संगीतकार आरडी बर्मन, और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी। आप हैं मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से, भाई पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू, ऋतु सिंह, बेमेतरा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, ग्राम पंचायत बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, चटौदा सारागांव से सुजान वर्मा, सुहत्रा, आयुषी, कृत वर्मा, जलगांव सोमनाथ जिला जालना से डॉक्टर नामदेव भूतेकर, अभिषेक भूतेकर, गणेश भूतेकर, कार्तिक और अश्विनी भूतेकर, जलगांव से ही वैष्णवी जगदाले, हरसुल सावंगी, औरंगाबाद से वैभव गौरव लोखंडे, भावसिंहपुरा औरंगाबाद से मेघराज युवराज कोलते, रिधोरा देवी और रुद्र कोलते, महाराष्ट्र बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल, छत्तीसगढ़ भाटापारा दत्रेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर, शिवाजी चौक राजीम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष्णवास्तव, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि, दिशा और लवी श्रीवास्तव, प्रमिलागंज अलोड जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूभाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा, करपावन सतोषा से गेनूराम बघेल, गोमती बघेल, तनुजा, सुभाष और ईशान बघेल, बिरसिंहपुर पाली जिला उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई सिंह, विकास सिंह, ओम प्रकाश सिंह, शुभम विश्वकर्मा और अरुण कुमार विश्वकर्मा, चूड़ी लाइन मुंगेली छत्तीसगढ़ से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर और फातिमा, कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी, आम है लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से, नंदकुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, दीपक, खुशबू, ज्योति ठाकुर, आप हैं ग्राम चरोदा बारनवापारा जिला बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ से, ग्राम नागरकोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू, संत गाड़गे नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से अनीता गाठोड़े, रमेश राव गाठोड़े, लोकेश कुमार गाठोड़े, ग्राम बटगांव डीघी बुलढाणा महाराष्ट्र से ही आप हैं वासुदेव बोधवड़े, माधुरी बोधवड़े, आकाश कुमार बोधवड़े, प्रकाश तुरसुनिया, नैतिक तुरसुनिया, धैर्य और आराध्या, आप सभी हैं उत्तर बस्तर कांकेर से हमारे श्रोता। तो लीजिए श्रोताओं, सुनिए आप सभी का मनपसंद का ये तराना।

कार्यक्रम का अगला आपकी चाहतों का ये गीत फिल्म घराना से सुनिएगा। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, शब्द है शकील बादायुनी के, धुन तैयार की है रवि ने, और इस प्यारे से तराने को सुनना चाहते हैं आप सभी। आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री, लालपुर से आप हैं लोकेश यदु, समीर यदु, दतरेंगे से विश्राम यदु, पार्वती, प्रतिमा, रीना और लक्ष्मीना यदु, शाहूनगर यवतमाल से आप हैं राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, रोशनी और बेबी प्रियांशी, महामाया पारा ग्राम दरचुआ से फिरंता साहू, दुलौरनी साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू, ग्राम दरचुआ से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू, कन्नेवाड़ा से देवेंद्र कुमार सोनवानी, देवव्रत सोनवानी, लक्ष्मी देवी सोनवानी, कुमारी गीतिका सोनवानी, दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, शेरी वडनेर अकोला से बलदेव दामोदर, अरुणा दामोदर, मनोज कुमार साहू, कृष्ण कुमार, धनंजय और कुमारी गायत्री साहू आप हैं मेघापारा चिल्फी से, गीदम रोड जगदलपुर से टी राजू राव, टी सुनील राव, शिवानी राव, तुलसी जया राव, भाग्यलक्ष्मी राव, आनंद राव, मनीष राव, श्रवण, नानू, नंदिनी और राधिका, मेघापारा महामाया चौक लोरमी से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दिव्यांशु पटेल, दिव्या दीपांजलि, दीपक और टेकलाल पटेल, देवीदीन अहिवार, सुनीता अहिवार, दिनेश, कपिल और पूजा अहिवार आप है जटपुरा पनवाड़ी महोबा से, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से आप हैं मुकेश कश्यप, सोनू कश्यप, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से ही आप हैं जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, दिव्यांशी, रेनू, रोनिका और समस्त यादव परिवार, ऊपरकोट मोहल्ला चौनखुटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजाना और अबान अब्बासी, ग्राम छिंदीडीह पुजारीपारा जिला कोंडागांव से सेतुराम चक्रधारी, मंगतिन चक्रधारी, आशीष कुमार चक्रधारी और अस्तिका चक्रधारी। तो श्रोताओं लीजिए पेश है आप सभी का पसंद किया हुआ ये गीत।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। इसमें लीजिए अब सुनिए आपके मनपसंद का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। शब्द है आनंद बख्शी के, धुन तैयार की है आरडी बर्मन ने और इस तराने के फरमाइश करता है आप सभी। आप हैं भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर वसंत रिगो, विनय ठाकुर, सोनाडी से सुब्रत चौधरी, बेबी अनिशा, रायगढ़ से नीलू मेग, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान, माहिरा नूर, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा, शेरकोट जिला बिजनौर मोहल्ला हलवाई यान से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदारानी और हिना कौसर, नेहरू वार्ड भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत साहू, राघवेंद्र साहू, पांठर कवड़ा से आप हैं अनिल बुरांडे, उषा, प्राची, अनुश्री और धनश्री बुरांडे, बल्लारशा से सूरज जी लोंढे, प्राची और एकलव्य, सतीश वाघमारे, अतीश वाघमारे, स्वाति, वर्षा, श्रवण, श्रीमेण वाघमारे आप हैं एमआईडीसी चंदननगर सतारा से, विजय चौहान, तेजस्विनी चौहान, अंकिता चौहान, अनिकेत, माया चौहान आप हैं वरणा शाहपुर कोल्हापुर से, तेलीपारा बिलासपुर से रज्जन साहू, बेबी शानी साहू, छन्नूलाल श्रीवास और अनिता श्रीवास, रोहित, जयलक्ष्मी, ऋषभ, अंशलक्ष्मी आप हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, सुभाष सिंह चक्रधारी, कविता, मुस्कान, अनुष्का चक्रधारी आप सभी हैं ग्राम भंडार सिवनी जिला कोंडागांव से, जिला मुंगेली गोल बाजार खपरी कला छत्तीसगढ़ से संतोष कुमार सोनी, सुनीता, खिलेश, नेहल, पीहू, छोटी, दानिश, दीक्षा, संजय, पूजा, रामा, पूर्वी और पुलकित, कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन आप सभी हैं बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से, श्रवण कुमार साहू आप हैं मदनपुर कवर्धा से, संतोष, हिमेश, लक्ष्मी, प्रतिभा, हितेश आप सभी हैं भीमखोस तरपोंगी से, जिला कोंडागांव ग्राम फरसगांव से आप हैं हमारे श्रोता फागेश्वर मंडावी, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, धनेश तिवारी, सावन नायक, अंकिता और बेबी वैदेही जोशी, कामठी नागपुर से श्रीमती किरण शर्मा, कैलाश प्रसाद शर्मा, आशीष और अमृता शर्मा। तो लीजिए श्रोताओं सुनिए आप सभी का पसंद किया हुआ ये गीत।

0: अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।
1: श्रोताओ, अब लीजिए सुनिए ये अगला फरमाइशी नगमा फिल्म सिलसिला से। आवाजें हैं अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर की, गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार शिव हरी, और इस गीत को सुनने की ख्वाहिश हमसे की है आप सभी ने। आप है हिच्छा महासमुंद से, अदालत दास वैष्णव, मानस सतीश वैष्णव, रिचा गायत्री वैष्णव, दतरेंगी से मनोज कुमार साहू, सूरज सागर साहू, जिला खंडवा मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस, मन पटेल, शिवपुरम कॉलोनी खंडवा से वी एस महोबिया, कमला महोबिया, रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता, संजय, नंदिनी, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, डॉली, देवराज और भैयू दादा। मालेगांव से आप है दत्ता घायाल, सुनीताबाई घायाल, सानिका और गजानन घायाल, काटा रोड वाशी महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरोशे, सुषमा सुरोशे, निधीश सुरोशे, परिधि और मायरा सुरोशे, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव जी, जगराव पंजाब से सुनील पाठक, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली, पूजा और प्रभा देवी तामुरिया, आप सभी हैं डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गोहर, श्रीमती वंदना गोहर, मयंक और तन्वी गोहर, तीन महुआ खापरखेड़ा से तुलसीराम साहू, हेमंत, मुकेश, आरती, ममता, जिगर, हर्षिता साहू, नोनीलाल साहू आप हैं तेंदू डावर से, रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास, शिव कुमारी, राम दुलारी, बिहारी पटेल, नरेंद्र साहू, दिलीप साहू और गेंदू भाई, शहडोल मध्य प्रदेश से सोनू खान, मोनू और गोलू खान, ब्रजेंद्र प्रजापति और कविता प्रजापति, बुढ़ार मध्य प्रदेश से ही आरती सिंह, दुर्गा, पूजा, राजकुमार और अदिति सिंह, अमोल इंगोले, अर्चना सर्वेश, अधीरा और राजवे इंगोले आप हैं चितवाड़ी अकोला से। तो लीजिए श्रोताओं सुनिए फिल्म सिलसिला का ये गीत।
0: जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

धनवान, इस फिल्म का ये गीत आपकी फरमाइश पर सुनेगा। सुरेश वाडेकर, लता मंगेशकर के युगल सुरों में, गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीत निर्देशन हृदयनाथ मंगेशकर का। और इस तराने को सुनना चाहते हैं आप सभी। आप हैं धाड़ी नाधुरा महाराष्ट्र से, श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे और वैशाली बाठे। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या और करिश्मा कामले। शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर टेमा, जिला खरगोन मध्य प्रदेश से डॉ तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, डॉ अमित वर्मा, सचिन समर, राज आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, इशिका वर्मा और अंजलि श्वेता वर्मा। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉ रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया। कतियापारा जुना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश, आशीष, रवि, मोनू, सोनू, कान्हा, आदित्य देवांगन। किकिरमेटा बेलहारी पाटन दुर्ग से संतोष शर्मा, रुखमणी शर्मा। गुरामी डोंडी लोहारा बालोद से पीयूष नेताम, जोहत्री बाई नेताम। नयापारा बेमितरा से ईश्वरी प्रसाद साहू। जुनवानी दुर्ग से सुरित राम साहू। ग्राम बनबघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज नीलेश, कुमारी अंजलि सारवा। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेक बीरक और मीका बीरक। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और साइना और निवान शर्मा। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। तो लीजिए श्रोताओं, सुनिए कार्यक्रम श्रोता सुमन का ये अंतिम गीत।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी नगमों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: skipper Tilak Verma has been named as vice captain. BCCI has also included young sensation Vaibhav Suryavanshi in the squad for the first time, following his great IPL 2026 season scoring highest runs. Prince Yadav has also been added to the squad. The team was announced after a meeting of Team India's Men's Selection Committee, led by Chief Selector Ajit Agarkar and BCCI Secretary Devajit Sekhia, for deciding the squad for the tours of Ireland and England and the Asian Games in Japan, as well as India A's tour of Sri Lanka multi-day games at the BCCI headquarters in Mumbai today. India will face Bangladesh in the final of the SAF Football Women's Championship at Madgaon, Goa today. The match will be held at 6:30 p.m. Earlier, India secured its place in the final by defeating Bhutan 1-0 in the semi-finals. India has won this title 5 times so far. In hockey, India will face host Japan in the final of the Men's Under-18 Asia Cup 2026 in Takamigahara in Japan today. The match will start at 3:30 p.m. IST. Earlier, India beat its arch rival Pakistan 5-3 in the second semi-final in a high-scoring contest. An Indian benchmark indices extended their losing streak into the second consecutive week, weighed down by persistent global headwinds. The Reserve Bank of India's supportive liquidity measures and currency stability initiatives provided some support to market sentiment, but a downward revision in growth projections dampened investor confidence. During the week, the 30 share Sensex at BSE lost 533 points to close at 74,243. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi holds meeting with his Economic Advisory Council to further boost India's economic growth. RBI simplifies rules for FPIs in government securities to make investment in India easier. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal in New Delhi this evening. CBSE extends last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till tomorrow. In Punjab, at least 9 people killed after a vehicle collides with a truck on Firozpur Fazilka Road this morning. IMD issues red alert for heavy rainfall over Keralam and Mahi till tomorrow. And in cricket, Shreyas Iyer replaces Suryakumar Yadav as India's new T20I captain, Vaibhav Suryavanshi included in squad for first time. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
3: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
4: With Nepal, we have an expansive agenda.
5: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
4: Partnership that we have with Nepal.
1: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास की एक नई युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
6: मेट्रो के लिए 60 न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जलटमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
7: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारायकाल में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
8: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति हैं। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉ मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता, बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस वक्त दोपहर के 2:30 हुए हैं।
10: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
11: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
10: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
11: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
10: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
11: क्यों?
10: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
12: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
13: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाए समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाए सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782222666। फोन इन किसानवाणी, अपन मंचो सवाल, अपन मंचो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
14: सो बिड़किन बिड़िया राहत तिंदनत उंडनत सामान तलाय दुरकता डबल रोटी आरी और छेना पनीर असित के इंजे जीएसटी लगे मयो इदेन संगेन 33 जरूरी दवाई नद मोला वेंट कम की सित तोड़ अदेन के इलाज तलाय खर्चा वेंट कम लगे माता जीवन बीमा तगवन इंजे जीएसटी छूट दुरकिता अदेन के पॉलिसी पोइतनत इंजे सस्ता आंता सुडला कार गाड़ी और 350 सीसी ता पोटरो गाड़ी ता पोर्रो 28% गाड़ी असित के सस्ता दुरकिता।
9: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमारे मेहमान। इसमें हमारे अतिथि हैं बस्तर संभाग पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदर राज। इनसे भेंट कर रही हैं डॉक्टर मधु जैन। प्रस्तुति है चंद्रशी ठाकुर की। तो लीजिए श्रोताओं सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमारे मेहमान।

0: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय जगदलपुर।
1: और सफलताएं भी हासिल की हैं। सुंदरा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार
2: जी। नमस्कार
1: सुंदरा जी, आपके बारे में पूरी दुनिया जानती है गूगल के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से, पर हम आज आपसे आपके बारे में, आपकी शिक्षा, आपके परिवार और आपके प्रोफेशन, आपके शौक के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहेंगे।
2: जी, मैं मूलतः तमिलनाडु राज्य का कोयम्बतूर जिला का रहने वाला हूँ। मेरा प्रारंभिक शिक्षा अपने गाँव में हुई है। मेरा परिवार एक कृषक परिवार है, सभी लोग अभी भी खेती किसानी काम से जुड़ा है। प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात कोयम्बतूर शहर में मेरा हायर एजुकेशन हुआ, तत्पश्चात तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बीएससी एग्रीकल्चर साइंस कंप्लीट किया। फिर वर्ष 2003 में आईपीएस एग्जाम क्लियर होने के पश्चात छत्तीसगढ़ कैडर आवंटन हुआ। तब से विगत लगभग 23 वर्षों से छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर संभाग में अलग अलग जिम्मेदारी में एएसपी से लेकर एसपी, डीएजी और वर्तमान में आईजी के रूप में कार्य करने के एक अवसर मिला है।
1: आप ये बताइए हमें कि आपने इस क्षेत्र में आने का निर्णय कैसे लिया? आप जैसे बता रहे हैं कि मैं कृषक परिवार से हूँ और इस पृष्ठभूमि में होने के बावजूद भी आपने पुलिस सेवा का क्षेत्र कैसे चुना?
2: तब हम स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। हमारे परिवार में इसके पूर्व में किसी प्रकार को कोई सरकारी नौकरी में नहीं थे। हम लोग उस समय आशा और उम्मीद भी नहीं थे हम भी किसी दिन एक सरकारी सिस्टम में एक सरकारी सेवा दे सकता करके, क्योंकि उस समय हम सबके मन में यही रहते हैं आईएएस आईपीएस इस प्रकार के जो सर्विसेज है, सिर्फ उन परिवार के जो बच्चे ऑलरेडी जिसके घर में कोई वरिष्ठ अधिकारी है या कोई संपन्न परिवार के लोग ही क्लियर कर पाएगा। सामान्य कृषक परिवार से या अन्य जितना भी जो सामान्य परिवार से लोग इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकता, इस प्रकार के दिमाग में एक टाइप की एक बात है। लेकिन बाद में तब हमने बीएससी एग्रीकल्चर साइंस तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कर रहे थे। उस दौरान हमारे कॉलेज का अनेक सीनियर है जिन्होंने यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस एग्जाम अपीयर हुआ, कई लोग उसमें सफल भी हुआ। तब हमको समझ में आए थे एक सामान्य परिवार कृषक परिवार से भी कोई यदि विद्यार्थी मतलब थोड़ा मेहनत करेगा, सही दिशा में यदि उनका प्रयास जारी रहेगा, निश्चित रूप से वो भी कामयाब हो सकता है। फिर उससे प्रेरणा लेकर हमने एग्जाम में अपीयर हुआ। हमारा सीनियर्स ने काफी गाइडेंस दिया, कॉलेज के प्रोफेसर से लेकर हमारा परिवार की दोस्तों में सभी लोग ने काफी सहयोग और समर्थन दिया, सबके आशीर्वाद रहा। फिर वर्तमान में आप सबके बीच में एक आईपीएस ऑफिसर रूप में सेवा देने के लिए एक अवसर भी प्राप्त हुआ है।
1: बिल्कुल, आपने तो बताया कि आपके कार्यस्थल पे आपने कई पदों पे सेवाएं दी थी। कार्यस्थल पे अलग अलग जिम्मेदारियों पे जब आपकी पदस्थापना होती है तो आप तो चूंकि हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं तो आपको यहाँ पर काम करते हुए भाषा का भी आपको कभी दिक्कत सामना करना पड़ा होगा, और किस तरह की चुनौतियों का सामना आपने किया?
2: तब हम स्कूल में पढ़ाई कर रहे और कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, उस समय हमारा जो मीडियम है तमिल और इंग्लिश ही रहा, इसी कारण से हिंदी सीखने के लिए उस समय जो सब्जेक्ट भी नहीं रहते थे। तब हम लोग आईपीएस में सेलेक्ट हुआ, फिर पुलिस अकेडमी में हमको हिंदी सीखने के लिए क्लास होते हैं, उसी से फिर हम लोग हिंदी का जो पढ़ने लिखने के लिए सीखना मतलब काफी मतलब
1: पुलिस अकेडमी में आपने हिंदी पढ़ना सीखा है?
2: जी, 23-24 साल की उम्र में ही फिर हम नया भाषा सीखने के लिए क्लासेस अटेंड किया है। उसके बाद फिर तब इधर क्षेत्र में आने के बाद फिर जैसा इधर का जो डिपार्टमेंटल हमारे स्टाफ से बात करते करते क्षेत्र की जनता से बात करते समय फिर थोड़ा बहुत हिंदी को इम्प्रूव किया। उस समय काफी हिंदी में बोलने के लिए कठिनाई होते कि जैसा ग्रामर मिस्टेक्स है, जेंडर मिस्टेक्स है, जैसा तमिल भाषा में जैसे सभी चीजों को मतलब एक ही जेंडर में हम एड्रेस करते हैं, लेकिन इधर जैसा अलग अलग चीजों का अलग अलग जेंडर दिया जाता है। उदाहरण के लिए बस आते बोलते हैं और ट्रक को

0: जाते बोलते हैं, लेकिन तमिल में ऐसा नहीं होते हैं, सबको एक ही टाइप का एड्रेस करते थे, इसलिए शुरू शुरू में थोड़ा ग्रामर को जेंडर को लेकर इश्यूज हुआ करते थे, बट अभी काफी समय हो गए थोड़ा।
1: भाषा को लेकर आपको कभी संकोच महसूस नहीं हुआ, आपने बड़ी आसानी से इसे वो कर लिया आपने हिंदी को?
0: निश्चित रूप से जब काफी देर बाद आप नया कुछ भाषा सीखते हैं उसमें थोड़ा चुनौती रहते हैं, जैसे आप कम उम्र में सीखते हैं आसानी से सीख जाते हैं, लेकिन काफी विलंब के बाद यदि आप नया भाषा सीखते उसमें काफी चुनौती होती है, लेकिन सबका सहयोग रहा, सभी कोलिग्स का, सभी स्टाफ का, जनता भी, मतलब कभी जिस हमारा भाषा को लेकर किसी प्रकार का ये टिप्पा टिप्पणी नहीं किया, उसको एंजॉय भी किया और उसका सुधरने के लिए कुछ गाइडेंस भी किया। सिमिलरली जैसा बाहर का जो इधर से हिंदी स्पीकिंग स्टेट से यदि कोई केरल, कर्नाटक या महाराष्ट्र जाते, उनको भी उस क्षेत्र का भाषा सीखना पड़ते हैं, वो काफी जल्दी सीख भी लेते हैं। और उन क्षेत्र की
1: जानकारी कौन कौन सी भाषाएं आती हैं
0: वर्तमान में? जैसा तमिल है, हिंदी है और इंग्लिश है, और स्थानीय भाषा में देखा जाएगा गोंडी भाषा है जो तमिल भाषा से काफी मिलते जुलते हैं, जैसा तमिल में हम लोग उन्नु रेंडु मूनु नालु ऐदु ऐसा करके जो न्यूमेरिकल्स के लिए बोलते हैं, एक दो तीन चार के लिए, गोंडी में भी देखा जाएगा वैसे ही है उन्नु रेंडु मूनु नालु ऐदु, जैसा हाथ को हम तमिल में कई बोलते हैं गोंडी में भी कई बोलते हैं, पैर को काल बोलते गोंडी में भी काल बोलते, इस प्रकार काफी जो शब्दावली का मिलते जुलते। गोंडी भी एक द्रविड़ियन भाषा का जो ऑरिजिन का है, इसलिए थोड़ा तमिल भाषा और गोंडी भाषा में काफी कुछ सिमिलरिटी हमको देखने को मिलती है।
1: और कौन सी चुनौतियों का सामना आपने किया भाषा के अलावा?
0: शुरुआत में तब सर्विसेज में आते हैं, अब घर परिवार से काफी दूर हो जाते हैं, फिर जैसा नया स्थान है, नया इलाका है, नया भाषा है और नया जनता, इस प्रकार का शुरू शुरू में काफी आपको एडजस्ट करने के लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ राज्य में और खासतौर पर बस्तर में मेरा अधिकतम सेवा रहा, इधर के क्षेत्र की जनता का जितना प्यार और स्नेह और बाकी जितना भी हमारा सपोर्ट सिस्टम है उससे भी काफी कुछ हमको समर्थन मिला, इसलिए वो चुनौती मतलब बाद में एक अपॉर्चुनिटी के रूप में तब्दील हो गई थी, इससे वर्तमान में ऐसा हमको महसूस नहीं होते, मतलब हम घर से दूर है, मतलब परिवार से दूर है, कभी ऐसा महसूस नहीं होते हैं।
1: आप इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, हमारे श्रोता भी सुनकर के आश्चर्य करेंगे कि सर इतनी अच्छी हिंदी कह रहे हैं। और आपके जो शौक हैं बचपन से, हर किसी को होता है शौक कोई ना कोई, चाहे वो संगीत का हो, चाहे वो चित्रकला का हो या घूमने का हो, आपके शौक किस तरह के रहे?
0: जैसा हमारा परिवार एक कृषक परिवार रहा है और हमारा जो घर है मतलब गांव से भी दूर रहते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा रहता है मतलब जैसा खेती के बीच में रहते, जो कृषक परिवार जो दक्षिण भारत में अधिकतम उसी टाइप से सिस्टम रहते हैं, इससे काफी अन्य लोगों से जाकर खेलने कूदने के लिए या कुछ नया चीज सीखने के लिए ज्यादा अवसर नहीं मिलते हैं, स्कूल के पश्चात फिर परिजन को थोड़ा खेती किसानी में सहयोग करने के लिए।
1: आपको खेती के कार्य भी आते होंगे, ये भी एक तरह से आपका शौक रहा है?
0: ये परिवार के लोग जो मदद करने के लिए थोड़ा प्रसिद्ध भी रहते हैं, लेकिन उस समय ज्यादा कोई नया हॉबीज कुछ सीखने के लिए अवसर नहीं मिला, बाद में तब सर्विस में आने के बाद शादी के बाद हमारे यहाँ श्रीमती जी और वर्तमान में बेटियां भी दोनों पेंटिंग कर लेते, कभी कभी उनसे पेंटिंग सीखने के लिए प्रयास करते हैं।
1: और कौन सी पेंटिंग आप बनाते हैं?
0: जैसे घर में तो लोग टैंजर रिवर्स ग्लास पेंटिंग से लेकर ऑयल पेंटिंग, ग्लास पेंटिंग और कैनवास पेंटिंग सब कर लेते, मैं अभी फिलहाल कैनवास पेंटिंग सीखने के लिए प्रारंभ किया है।
1: ओहो बिल्कुल, आप पेंटिंग करके भी आपका ध्यान अपना समय बिताते हैं और परिवार के साथ समय बिताने के साथ साथ आप शौक को भी पूरा करते हैं। और आपके दोस्त अभी भी आप उनसे मिलते हैं या आपके दोस्त मित्र जो बचपन के थे वो आजकल कहाँ हैं, या अभी के जो आपके दोस्त होंगे या उनके साथ भी आप समय व्यतीत कर पाते?
0: जी जरूर, लेके जितना हमारा परिवार से सपोर्ट मिला है उतना हमारा दोस्तियारी में भी काफी सपोर्ट मिला, क्योंकि जिस समय हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे उस समय काफी कुछ आपको रिसोर्सेज की कमी रहते हैं, आपको फाइनेंशियल बजट का भी काफी चुनौती रहते हैं, उन सबके समय एक दूसरे को मदद करते हैं, दोस्त फ्रेंड सर्कल में आपको जो चीज समझ में नहीं आती वो लोग हमको पढ़ाते, इस प्रकार काफी एक अच्छा सपोर्ट हमारा फ्रेंड सर्कल से भी मिला है।
1: संसाधनों की कमी हो और वित्तीय भी यदि कमी से जूझ रहे हैं तो परिवार के अन्य सदस्य या मित्र ऐसे वक्त पर काम आते हैं जिनसे सहायता लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं निसंकोच यदि आप उनसे मदद ले तो। आप ये बताइए कि घर और बाहर का संतुलन आप कैसे बनाते हैं, क्योंकि आपका जो जॉब है वो इस तरह का है कि आपको शायद समय बहुत कम मिल पाता होगा और 24/7 आवर्स की ड्यूटी जैसा लगता है ये कार्य जो हम देख पाते हैं बाहर से, तो आप कैसे संतुलन इसमें बना पाते हैं?
0: एक सरकारी प्रोफेशन में खासतौर पर पुलिस की नौकरी में जो फैमिली और प्रोफेशन के बीच का जो बैलेंस है काफी एक चुनौती रहते हैं, लेकिन सौभाग्य से फिर हमारा फैमिली से काफी एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, जो हमारा इमीडिएट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली जितना भी जो परिजन है सब लोग हमको ये छूट दे के रखा है और एक सहयोग भी दे के रखा है, कभी भी आपको परिवार के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सामाजिक काम और पारिवारिक काम हम सब

0: मिलकर कर लेते हैं।
1: लेंगे।
0: बाकी जो आपके प्रोफेशन की दृष्टि में आपको जो समय देना चाहिए निश्चित रूप से आप उसमें ध्यान दीजिए करके, इसी काम से, इसी कारण से जो फैमिली और फ्रेंड सर्कल से जो मदद मिला, कहीं ना कहीं हमारा प्रोफेशन में हम ज्यादा समय और फोकस देने के लिए एक भाग्य मिला है।
1: बिल्कुल, ये परिवार का सहयोग और मित्रों का सहयोग और परिजनों का सहयोग भी आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने कार्य पे पूरी तरह से फोकस कर पाएं, तभी आप इतना बड़ा काम कर सकते हैं। आपने बताया कि पेंटिंग तो आप अभी सीख रहे हैं, पर कार्य का अत्यधिक दबाव भी आप हमेशा महसूस करते होंगे, क्योंकि जो आपका क्षेत्र है वो ही इस तरह का है कि आपको हर दिन एक नई चुनौती को देखने को मिलता है। तो आप अपने आप को तनाव मुक्त कैसे रखते हैं? कोई योगा, मेडिटेशन या फिर और ऐसा कोई काम जिससे आपको अच्छा लगता है, जो खुश आपको करता हो वो काम?
0: जैसा आमतौर पर ये धारणा रहते हैं जैसा पुलिस की नौकरी में या अन्य जितना भी शासकीय सेवा में थोड़ा तनाव रहते करके, बट तब आपके इरादा स्पष्ट रहते हैं, आपका जो टारगेट टेरी क्लियर है क्षेत्र की जनता के सेवा में, आपको तनाव से ज्यादा एक जिम्मेदारी का जो एहसास है वो ज्यादा रहते। फिर भी जैसा कुछ फ्री टाइम मिलते उस दौरान जैसा पेंटिंग अभी सीखने के लिए और कुछ कुछ नॉवल्स पढ़ने के लिए, और अभी OTT प्लेटफॉर्म्स में जो तमिल मूवीज और अन्य जितना भी जो डॉक्यूमेंट्रीज इस टाइप का जो देखने के लिए एक अवसर मिल जाते हैं, इससे थोड़ा काम के बीच में इस प्रकार का जो
1: रिफ्रेशमेंट आपको मिल जाता है,
0: थोड़ा एक अवसर आजकल प्राप्त हो जा रहा है।
1: संगीत भी आप सुनते होंगे कभी न कभी, कुछ न कुछ ऐसा कोई गीत आपको जो पसंद हो, जो आप सुनना पसंद करते हो?
0: संगीत के क्षेत्र में मेरा ज्ञान काफी सीमित है, जैसे अभी उस दिशा में भी थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए प्रयास की जा रही है। इधर का जैसा हमारा ट्राइबल जो संस्कृति है, गोंडी हल्बी के जो गीत काफी अच्छा लगते हैं सुनने में, अभी काफी जो जादू बस्तर का काफी अभी देखने के लिए भी मिलता है, उसका काफी फेमस भी होते
1: हुआ है।
0: लेकिन एक जो गाना है जैसा हम वो कामयाब है, जैसा सिविल लिबर्टी मूवमेंट के दौरान ये विशन ओवरकम करके उस गाने का हिंदी अनुवाद में जो हम होगा कामयाब है, उसके देखने से सुनने से काफी आपको मोटिवेशन मिलते, वो हमारा एक पसंद का गाना रहा।
1: तो चलिए श्रोताओं, आज हमारे इस खास मेहमान की पसंद का खास गीत भी हम सुनते हैं, हम होंगे कामयाब।

0: बधाई हो, आपने 25 लाख रुपए की लॉटरी जीती है।
1: सिर्फ बताता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी किस तरह मनोबल आगे रख करके
0: मांगता। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। आपकी व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, साइबर अपराधियों से बचें। साइबर सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी। फोन बज रहा है, लेकिन अगर आप वाहन चला रहे हैं तो ये कॉल कुछ देर बाद भी उठाई जा सकती है। एक कॉल, एक मैसेज या एक पल का ध्यान भटकना दुर्घटना का कारण बन सकता है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग ना करें। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें। सुरक्षित ड्राइविंग अपनाइए, क्योंकि जिंदगी किसी कॉल से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है।
1: और वाकई ये गीत अपने आप में प्रेरणादायी है, जो लोगों को बताता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी किस तरह मनोबल आगे रख करके काम किया जाता है।
0: बस एक मिनट, सिर्फ एक मिनट की जल्दी, और कभी कभी वही एक मिनट पूरी जिंदगी बदल देता है। हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए, गति सीमा का पालन कीजिए और वाहन चलाते समय मोबाइल से दूरी रखिए, क्योंकि कोई आपका इंतजार कर रहा है सुरक्षित घर लौटने का। यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें, अपनों को सुरक्षित रखें।
1: सुंदरराज जी, आपने बस्तर में बहुत लंबा समय बिताया है, और बस्तर व्यक्तिगत तौर पर आपको कैसा लगता है? यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ के आदिवासी क्षेत्र के लोग, यहाँ के शहरी क्षेत्र के लोग, इनके साथ आपके अनुभव कैसे रहे?
2: बस्तर क्षेत्र की जनता का एक अलग आइडेंटिटी है, साथ साथ क्षेत्र की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है, इधर का जो कल्चरल हेरिटेज है, इधर का गीत संगीत नृत्य है, और जितना भी इधर का अन्य जो सांस्कृतिक विरासत है, दुनिया में अपना एक अलग पहचान के साथ अभी उभर सामने आ रहा है। इसको हाईलाइट करने के लिए अभी हाल फिलहाल में बस्तर पंडुम का भी वर्ष 2025 और 26 में आयोजन किए गए, जिसमें माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, इवन देश के राष्ट्रपति महोदय भी उपस्थित होकर हमारे क्षेत्र की जनता को मनोबल बढ़ाने के लिए काम किया है। और निश्चित रूप से बस्तर का, वनांचल क्षेत्र का, इधर का ग्रामीण क्षेत्र का और शहरी क्षेत्र की जनता का काफी एक अच्छा स्वभाव है, इधर सबको साथ ले जाने का और एक उनका एक आदत है, और काफी संवेदनशील भी है और प्रकृति को लेकर काफी सेंसिटिव भी है। इस प्रकार एक यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी के साथ बस्तर अभी आने वाले समय में और बेहतर पहचान के साथ देश दुनिया सामने अपना एक आइडेंटिटी बनाएगा।
1: और आपका तो नाम जाना जाता है बस्तर में नक्सलवाद को खत्म करने की ओर पे, तो इस काम को जब आपने किया तो आपको कैसा महसूस होता था और कैसे आपने इस काम को कर लिया?
2: भारत सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य शासन का एक स्पष्ट संकल्प थे और क्षेत्र की जनता की मन मन में भी यही चाहते नक्सल गतिविधि पूर्ण रूप से समाप्त हो, क्योंकि नक्सल गतिविधि कारण से लगभग दो पीढ़ी बर्बाद हो गई थी। कई हिंसात्मक गतिविधि कारण से हजारों के निर्दोष आदिवासी ग्रामीण महिला बच्चे के जान चले गए थे, हमारे सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा बलों का शहादत हुई है, राष्ट्रीय संपत्ति का काफी नुकसान हुआ और लोगों का जानमाल का काफी खतरा बनाकर रखा। इसी समस्या को समाधान करने का शासन की मंशानुरूप और क्षेत्र की जनता की इच्छा के अनुसार हमारे सुरक्षा बल, स्थानीय प्रशासन, पुलिस सबने मिलकर काफी एक अच्छा टीम वर्क के साथ काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप अभी वर्ष 2026 में बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल गतिविधि लगभग पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। इस काम में चौथा भागीदारी हमको भी निभाने के लिए एक अवसर मिला, उसके लिए शासन के प्रति और क्षेत्र की जनता के प्रति हम आभार है, और आने वाले समय में इस मजबूती को और ताकत के साथ आगे ले जाने का कार्य योजना तैयार करके उसमें भी कार्यवाही की जाएगी।
1: बहुत बहुत सुंदर आपने कहा बस्तर के लिए, हम बहुत ही आभारी हैं आपके इस विचार को सुनकर के। हम एक चीज और जानना चाहेंगे श्रोताओं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं और जैसा आपने समाचार पत्रों या अन्य मीडिया से पढ़ा होगा इनके व्यक्तित्व के बारे में, कि कितने कड़े और कठिन काम इन्होंने किए हैं, पर उतने ही सहज और मृदुभाषी व्यक्तित्व के धनी हैं आप। और आज आपसे बातचीत करके हमें ऐसा महसूस हो रहा है, जो एक छवि होती है पुलिस वाले की, एक कठोर

0: या बहुत ही डरावनी सी, वैसा कुछ बिल्कुल भी नहीं। और हम भी जब आपसे पहली बार मुलाकात किए थे तो हमारे मन में भी यही था कि आईजी हमारे कितने सिंपल हैं और कितने अच्छे से हमें बात किए हैं। ये कम से कम 10-12 साल पहले की मेरी पहली मुलाकात रही है आपसे। तो आप इस पर्सनैलिटी को, आप कैसे इस रोल में आपको खुद को निभा पाते हैं, जो कि एक कड़क रोल है पुलिस वाले का और आपकी पर्सनैलिटी एकदम सिंपल है?
1: जैसे पुलिस के संबंध में भी हमेशा पब्लिक में एक धारणा रहते हैं, पुलिस हमेशा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, पुलिस हमेशा कड़क रहना चाहिए, लेकिन इधर के क्षेत्र की जनता जिस तरीके से काफी एक सिंपल नेचर का है, और आपका यदि कोई भी मैसेज कन्वे करना होगा आप क्लैरिटी के साथ यदि कन्वे कर देगा, फिर आपको गुस्सा करने के लिए या ज्यादा कोई स्ट्रिक्टनेस दिखाने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ते है। जो आपके जो शासन की ओर से आप क्या कुछ कार्य करना चाह रहे थे, और उसके काफी सरलता के साथ, काफी क्लैरिटी के साथ हम क्षेत्र की जनता को यदि कन्वे कर देगा, फिर उसके बाद फिर आप उससे संपर्क करना, उससे संवाद करना, उससे सहयोग लेने में किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं होते हैं। सिमिलरली हमारा जो टीम का सभी साथीगण, जैसे नीचे आरक्षक से लेकर सभी अधिकारीगण, सब लोग भी काफी सेंसिटिवली काम करते हैं, और जो भी आप विषय उनको जनता के हित में बोलते हो वो बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हो और काम को पूरा मेहनत और लगन के साथ करते, इसलिए कभी आपको कोई कठिन शब्द को इस्तेमाल करने के लिए या कोई गुस्सा दिखाने के लिए आवश्यकता नहीं पड़े, और नेचर से भी मतलब थोड़ा
0: आप शांत हैं और सौम्य हैं। बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही कि यदि आपको जो काम पूरी स्पष्टता के साथ करना है और उस संदेश को आपको यदि जनता को बहुत स्पष्टता से दे देनी है, तो शासन प्रशासन को अनावश्यक रूप से कठोर होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ एक कारणों को छोड़ दें तो, बट हमारे आईजी जिस तरह के हैं वैसा ही सरल व्यक्तित्व उन्होंने अपनी कार्यशैली में भी अपनाया हुआ है। बस्तर वासियों को आकाशवाणी के माध्यम से आप कोई संदेश देना चाहेंगे?
1: जी मधु जी, जैसा बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और विकास हम सबका एक संयुक्त जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के संबंध में मैं क्षेत्र की जनता को जो स्थानीय हल्बी भाषा में मैं संदेश देना चाहूंगा, बस्तर छो शांति, सुरक्षा और विकास हम सब छो जिम्मेदारी हासे इतन नगत निभावन है जोहर दादा दीदी मन। यदि गोंडी में भी हम उसको बोलना चाहते
0: बहुत
1: हैं
0: खुँ, बहुत
1: जी, बस्तर छो शांति, सुरक्षा और विकास नंगल सब लोग की साझी जिम्मेदारी है। नान बस्तर न लोगन न विनती करते इलाज मिलके इधर लक्ष्य पूरा कर दो। जय जोहर, जय बस्तर, जय हिंद।
0: बहुत ही बढ़िया संदेश आपने दिया। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो बस्तर के युवा हैं, जो आज यूपीएससी की, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी न किसी क्षेत्र में आगे आने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए आप कुछ खास संदेश देना चाहेंगे?
1: अभी बस्तर क्षेत्र के युवा हर फील्ड में काफी मजबूती से आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम स्पोर्ट्स में देख रहे हैं, कल्चरल इवेंट्स में देख रहे हैं, साथ साथ जो सरकारी जो सेवा में भी उनका काफी एक अच्छा योगदान और भागीदारी देखने के मिल रहा है। विशेष तौर पर बस्तर पुलिस में अभी हाल फिलहाल में काफी बड़ी संख्या में स्थानीय युवाएं होती जो पूर्व में किसी न किसी कारण से खुद अपने क्षेत्र के सुरक्षा के लिए एक अवसरों से वंचित हो गए थे, उस टाइप का युवाएं होती भी आज के डेट में पुलिस में भर्ती होकर, अन्य सुरक्षा बल में भर्ती होकर अभी डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, बस्तरीय बटालियन इत्यादि फोर्सेस में काफी एक अच्छा योगदान दे रहे हैं, और हम आशा करते हैं आने समय अन्य जो क्षेत्र में भी, जैसे अन्य जो सिविल सर्विसेज में, प्रशासनिक सेवा में, मेडिकल फील्ड में, और जो जो उनके मन में इच्छा है, एक अच्छा कलाकार के रूप में भी, एक अच्छा पेंटर के रूप में, आर्टिस्ट के रूप में, ऐसा बस्तर का नाम दुनिया में रोशन करने के लिए उनको भी एक अवसर मिलेगा। उसी दिशा में लगातार शासन काम कर रहे हैं, और स्पोर्ट्स के फील्ड में भी हमको बस्तर ओलंपिक्स में काफी अच्छा भागीदारी देखने के लिए मिला है, और इन सब विषय को लेकर हमको पूरा विश्वास है आने वाला समय बस्तर क्षेत्र के युवा युवती क्षेत्र का नाम अलग अलग प्लेटफॉर्म में जरूर रोशन करेगा।
0: बस्तर के आदिवासी इलाकों में भी आप काफी गए हैं, तो बस्तर का जो आदिवासी समाज है और बस्तर का जो शहरी समाज है, प्रबुद्ध वर्ग है, उनको लेकर के आपके क्या विचार हैं?
1: निश्चित रूप से बस्तर क्षेत्र की वनांचल, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में जनता काफी संवेदनशीलता के साथ जो अपना विषय को देखते हैं, और उधर का जल जंगल जमीन को रक्षा करने के लिए, संरक्षण करने के लिए उनका काफी एक मन में इच्छा रहते हैं, और सबसे मिलकर सबको साथ लेकर आगे बढ़ने को उनका एक स्वभाव रहते हैं, उन सबसे काफी हम प्रभावित है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो इस कल्चर को, इस एक आइडेंटिटी को और मजबूती से आगे ले जाने के लिए जो शासन की ओर से, पुलिस की तरफ से सभी प्रकार का सहयोग और समर्थन रहेगा, वो निश्चित रूप से बस्तर आने वाले समय में जो दुनिया के सामने एक अलग आइडेंटिटी, एक पॉजिटिव और वाइब्रेंट आइडेंटिटी के साथ उभर कर सामने आएगा।
0: बस्तर की महिलाएं विशेष रूप से श्रमशीला कही जाती हैं, और बस्तर में अपने महिलाओं को खेती करते भी देखा है, तो बस्तर की महिलाओं के लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे, शहरी और ग्रामीण दोनों महिलाओं के लिए?
1: बस्तर के प्रगति में महिला का भी योगदान काफी महत्वपूर्ण है। इसके पहले भी जो क्षेत्र की महिला जंगल में महुआ बिनने से लेकर अन्य जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स का कलेक्शन, उसका प्रोसेसिंग और खेती में भी अपना काम बहुत मेहनत से लगन से करते हैं और परिवार की जिम्मेदारी को भी काफी अच्छी तरीके से संभालते हैं। और जैसे महिला का योगदान मतलब बस्तर क्षेत्र के विकास का अब तक काफी महत्वपूर्ण रहा और आने वाले समय में उनका काफी और अवसर भी मिलेगा शासन और प्रशासन का इस दिशा में काफी, जैसा महिला स्वयं समूह का माध्यम से और अन्य जितना भी जो ग्रुप्स के माध्यम से इस दिशा में काफी अभी प्रयास की जा रही है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जो बस्तर के जो विकास और प्रगति में महिला का काफी अच्छा योगदान हम सबको देखने के लिए मिलेगा।
0: आपने बहुत ही अच्छे संदेश सभी के लिए दिए और उन लोगों के लिए भी दिए जो प्रतियोगी अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, और आपके इतने सारे अनुभव को सुनकर हम वाकई कृतार्थ हुए हैं। और आपने इतना समय हमें दिया और बड़ी सहजता से सौम्यता से आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए और स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मधु जी। आप सब श्रोताओं को भी हम आश्वस्त करना चाहते हैं जो बस्तर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जैसा भी पुलिस और सुरक्षा बल स्थानीय प्रशासन सबने शासन के दिशा निर्देशों पर लगातार काम कर रहे हैं, आने वाले समय में भी इस जिम्मेदारी को और अच्छी तरीके से निभाएगा, वो सबके लिए आप सबका सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से हम सब मिलकर बस्तर का एक नया दिशा और स्वरूप आने वाले समय में एक सकारात्मक रूप से दे सकता है। सबको पुनः पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय जवाहर।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे पुलिस अधीक्षक कार्यालय जगदलपुर।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारे मेहमान। इसमें बस्तर संभाग के पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदरराज जी से मुलाकात कर रही थी डॉक्टर मधु जैन। प्रस्तुति थी चंद्रशी ठाकुर की। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बजे हैं। मीडियम वेव पर हमारे कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होते हैं। शाम 5 बजे मीडियम वेव पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। अब हमें इजाजत दें। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.2 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में सुनिए कार्यक्रम विवरण। पहले सुनिए हमारी आज की सभा में प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज रात 9:30 पर सुनिएगा साहित्य भारती, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। युवा दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी पेश करेंगे शाम 5:10 पर। दशुराम और साथियों के गाए गोंडी गीत सुनिएगा शाम 6:35 पर। हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर शाम 7 बजे। किसान वाणी, ये प्रायोजित कार्यक्रम होगा शाम 7:30 पर। रात 8 बजे बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम जोनी उजर में सुनिएगा लोकनाथ वैष्णव और साथियों के गाए हल्बी गीत पीला मन का जिगोट। ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात 8:30 पर। प्रस्तुति होगी नम्रता ठाकुर की। अमचौरान अमचुचियुना, ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे रात 9:15 पर। इसमें सुनिएगा संतोराम मौर्य से भेंट वार्ता, भेंट करता होंगे बलवीर सिंह कच्छ। रात 10 बजे लोक वाद्य धुनों पर आधारित कार्यक्रम पाड़ में सुनिएगा फूल कंवर पाड़ और पीला कनूर कदो पाड़। वादक कलाकार होंगे सैजुराम और साथी। अब लीजिए सुनिए हमारी कल की सभाओं में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। कल रात 9:30 पर आप सुनेंगे रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। विशेष कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी सुनिएगा सुबह 7:10 पर। जिले की चिट्ठी शाम 6:05 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुनेंगे सुबह 6:05 पर। चिंतन सुबह 6:20 पर। सुबह 6:25 पर होगा श्री रामचरितमानस का गायन। कृषि सामग्री की बड़ा खड़ा जगोट का प्रसारण किया जाएगा सुबह 6:35 पर और पुनः दोपहर 1:05 पर। सुबह 6:40 पर हुलहुली कार्यक्रम में सुनिएगा दंतेश्वरी आयापाड़। वादक कलाकार होंगे भागीरथी और साथी। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे सुबह 8:45 पर। हल्बी समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा सुबह 7:30 पर। लोक मंजरी, इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे विभिन्न बोलियों में बस्तर के लोकगीत सुबह 8:30 पर। बच्चों का कार्यक्रम बालवाड़ी प्रसारित किया जाएगा सुबह 9 बजे एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे करीब फिल्म के गीत सुबह 9:30 पर। सुबह 10 बजे गुलशन कार्यक्रम में सुनेगा नए तराने। फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम चाहत हम आपको सुनवाएंगे सुबह 10:30 पर। प्रस्तुति होगी हरिप्रिया पाणिग्राही की, संयोजक चंद्र ऋषि ठाकुर का। बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में सुनिएगा दयो और साथियों के गाए हल्बी गीत सुबह 11:30 पर। दोपहर 12 बजे रूसरूसा लोक गाथा में सुनिएगा आंधा राजा। गायिका होंगी सुबरी बाई और साथी। शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन का प्रसारण समय होगा दोपहर 12:30 का। दोपहर 1:10 पर हम आपको सुनवाएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन कला और कलाकार। ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा दोपहर 2:30 पर। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत समूह सौर में। युवा दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी पेश करेंगे शाम 5:10 पर। गोंडी समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा शाम 6:30 पर। हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर शाम 7 बजे।
ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम आमचो गांव होगा शाम 7:21 पर। रात 8 बजे बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम बाली फूल में सुनिएगा शिवराम नाग और साथियों के गाए हल्बी गीत पीला मन काजी गोट। ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात 8:30 पर। प्रस्तुति होगी पीलूराम बघेल की पुरानी फिल्मों से रात 9:15 पर। रात 10 बजे बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम दौना में सुनिएगा मधुराम और साथियों के गाए हल्बी गीत। ये थी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत समूह स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत समूह स्वर में, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं। पेश है युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवावाणी।

0: हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। मैं हूं आपका रेडियो साथी विक्रमनाथ।
1: और दोस्तों, मैं ऋषिका वर्मा। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा अभिवादन। नमस्कार
0: ऋषिका।
1: हाँ,
0: क्या तुम्हें नहीं लगता कि आजकल युवाओं में मानसिक तनाव बहुत बढ़ गया है?
1: हाँ विक्रम, बिल्कुल। पहले भी समस्याएं होती थी, लेकिन आज के युवाओं पर पढ़ाई, करियर और भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा दबाव है।
0: सही कहा। मेरे कई दोस्त हमेशा परीक्षा और नौकरी की चिंता में रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे सफल नहीं हुए तो उनकी भविष्य खराब हो जाएंगे।
1: केवल पढ़ाई ही नहीं विक्रम, सोशल मीडिया भी एक बड़ा कारण है। लोग दूसरों की सफलता देखकर अपनी तुलना करने लगते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, जब कोई अपने सोशल मीडिया पर अच्छी नौकरी, महंगी चीजें या घूमने की तस्वीरें डालता है तो दूसरे युवाओं को लगता है कि वे पीछे रह गए हैं।
1: बिल्कुल, इस वजह से उनमें हीन भावना और आत्मविश्वास की कमी आने लगती है।
0: मैंने यह भी देखा है कि कई युवा अपने परिवार की अपेक्षाओं के कारण तनाव में रहते हैं। माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा अच्छे अंक लाएं और हर क्षेत्र में आगे रहें।
1: सही कहा। कभी कभी ये जो उम्मीदें हैं इतनी बढ़ जाती हैं कि युवा खुद को असफल समझने लगता है।
0: और फिर वे चिंता, घबराहट और तनाव शिकार हो जाते हैं।
1: हाँ, और यही कारण है कि मानसिक तनाव आज युवाओं के बीच एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है।
0: ऋषिका,
1: हाँ,
0: एक और कारण जो मुझे महत्वपूर्ण लगता है, बेरोजगारी। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी कई युवाओं अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिलती।
1: बिल्कुल, कई युवा सालों तक प्रतियोगी परीक्षाएं या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने की तैयारी करते रहते हैं। लगातार असफलता मिलने पर उनका जो आत्मविश्वास है ना, या फिर हम कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं,
0: हाँ,
1: वो कम होने लगता है।
0: और जब दोस्त या रिश्तेदार बार बार पूछते हैं कि नौकरी कब लगेगी, तब तनाव और बढ़ जाता है।
1: सही कहा। इसके अलावा आजकल की जो डेली रूटीन है वो भी मानसिक तनाव को बढ़ा रही है। युवा देर रात तक जागते हैं, उन्हें प्रॉपर नींद नहीं मिलती और फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो गई है।
0: मोबाइल और इंटरनेट पर ज्यादा समय बिताने से भी मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है।
1: कई बार युवा अपनी समस्याओं को किसी से साझा नहीं करते।
0: हाँ,
1: वो सोचते हैं कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या उन्हें कमजोर समझेंगे।
0: यही कारण है ऋषिका कि उनका तनाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है और कभी कभी डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं का रूप ले लेती है।
1: और विक्रम, परिवार और दोस्तों का जो सहयोग होता है ना, वो सबसे जरूरी है ना।
0: हाँ बिल्कुल,
1: यदि कोई युवा तनाव में है तो उसे अपनी बात खुलकर कहने का अवसर मिलना चाहिए।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल ऋषिका। समस्या को छिपाने की बजाय उसके बारे में बात करना ही पहला समाधान है।
1: सही कहा विक्रम, मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना

0: ना आपका शारीरिक स्वास्थ्य है।
1: हाँ ऋषिका, बिल्कुल। हमने तनाव के कई कारणों की बात की, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इसका कोई समाधान भी है?
0: देखो विक्रम, समाधान तो हर चीज का होता है ना,
1: जी
0: और
1: बिल्कुल।
0: इसका भी बिल्कुल है। सबसे पहले युवाओं को अपने समय का सही प्रबंधन करना चाहिए।
1: हाँ
0: जब काम रूटीन में होता है या सही तरीके से किया जाता है तो तनाव काफी कम हो जाता है।
1: हाँ ऋषि का, और पढ़ाई या काम के बीच थोड़ा आराम करना भी जरूरी है।
0: हाँ
1: लगातार काम करने से मानसिक थकान बढ़ जाती है।
0: सही कहा, एक प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी, योगा, मेडिटेशन, ये सब चीजें भी तनाव को कम करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं।
1: हाँ ऋषि का, ये तो बहुत जरूरी है। मैंने सुना है कि प्रतिदिन कुछ समय अपनी पसंद की गतिविधियों के लिए निकालना भी लाभदायक होता है।
0: हाँ, और जैसे कि संगीत सुनना, किताबें पढ़ना, चित्र बनाना या दोस्तों के साथ समय बिताना मन को शांत रखता है।
1: बिल्कुल। सोशल मीडिया का उपयोग भी सीमित करना चाहिए। दूसरे से तुलना करने की बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण है।
0: और यदि तनाव बहुत अधिक हो जाए तो उन मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिस्ट से मदद लेने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए।
1: सही कहा ऋषिका। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ सही मार्गदर्शन देकर व्यक्ति को तनाव से बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं।
0: हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ये समझना चाहिए कि जीवन में सफलता और असफलता दोनों आती हैं। असफलता अंत नहीं होती, बल्कि सीखने का एक अवसर होती है।
1: बिल्कुल ऋषिका। सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और परिवार का सहयोग मानसिक तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: हाँ, और विक्रम, मुझे लगता है यदि युवा अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो वे न केवल तनाव को नियंत्रित कर सकते हैं बल्कि एक खुशहाल और सफल जीवन भी जी सकते हैं।
1: हाँ ऋषिका, मैं पूरी तरह सहमत हूँ तुम्हारी बात में। तो दोस्तों, हमें मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए और हमारे जो परेशानी है हमें एक दूसरे से शेयर करना चाहिए, जिससे हमें एक लाभदायक मिल सके और रास्ते मिल सके।
0: विक्रम, अब आगे बढ़ते हैं
1: हाँ बिल्कुल।
0: और हम अपने प्यारे से श्रोताओं को बताते हैं कि आज क्या-क्या कार्यक्रम हम उनके लिए लाए हैं।
1: जी बिल्कुल। दोस्तों, आज है दिन शनिवार, हेलो युवाणी का दिन। आज हम अपने प्यारे श्रोताओं से करेंगे बातचीत और उनको सुनवाएंगे उनके पसंदीदा गीत।
0: तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: तो दोस्तों, पहले कॉलर से करते हैं बात।
0: नमस्कार, हेलो युवाणी।
4: जी हाँ, नमस्कार।
0: नमस्कार सर, आप
4: संजीत कुमार बोल रहा हूँ मैम, पांड्याड गांव परस गांव से।
0: जी, कैसे हैं सर आप?
4: बढ़िया है मैम, आप कैसे हो?
0: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ
4: जी।
0: क्या करते हैं आप?
4: इंडियन तो खेती किसानी चल रहा है मैम, मक्का तोड़ाई हो गया है
0: जी। तो कैसी थी इस बार की खेती?
4: ठीक था मैम, पानी का तो दिक्कत होता है मैम गर्मी में
0: जी।
4: तो आज मौसम तो चेंज हो रहा है मैम, तो सभी श्रोता साथी भी अपना सेहत का ख्याल रखें।
0: और इसी के साथ आपकी गीत की फरमाइश जान सकती हूँ?
4: फिल्म मन का एक गीत है मैम, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है।
0: तो चलिए जी, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। धन्यवाद।
4: धन्यवाद।

0: ಇದ್ ಬದ್ಲೆ ಮತ್ತಂಕ್ ಅಚ್ಚಾ ಮಾನೆಡ ಇಲ ಚುಡುನ್ ಸಸ್ತಾ ಆತ ಸೆಂಗೇನ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಜಾಕಿ ಔರ್ವೆಂಡ್ ಸಾಮಾನ್ ಕಿನ್ ಮೋಲವೆಂಡ್ ಕಮ್ ಮತ್ತಂಕ್ ಜನವರ್ ಕಿನ್ ಇಲಾಜ್ ತಗವೆಂಡ್ ರಾಹತ್ ದೊರ್ಕನದ ಉಮ್ಮಿದ್ ಮಿಂದೆ ಇವು ಪೂನಾ ಮೋಲತೆ ಗ್ರಾಹಕ್ ಲೋರ್ಕ್ ಅವ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಲೋರ್ಕ್ ಫಾಯ್ದಾ ದೊರ್ಕಿತ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ತ ಕೊಂಡೆ ಪೂನಾ ಮೋಲಾ 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ದಿನ ಲಾಗು ಆಯನದ ಮಿಂದೆ
1: नमस्कार हेलो युवाणी
2: हेलो युवाणी
1: सर आपका नाम
2: जी मैम मैं पत्रसराम लेखा ग्राम मधुत हिमा पारस बोल रहा हूँ मैम
1: कैसे हैं आप
2: बढ़िया मैम थोड़ा अभी बारिश हो रहा था मैम अभी थोड़ा सा बूंदाबांदी हो रही
1: मतलब मौसम ठंडा सा है अब
2: हाँ अभी थोड़ा बहुत ठंडा है मैम तो सुबह टाइम तो एक टाइम गर्मी बहुत रहता है मैम क्या करूँगी
1: जी, जी, जी। और जी। खाली समय में क्या करना अच्छा लगता है
2: जी मैम मैं खाली टाइम में मेरे को गीतों को सुन करना वो पियानो प्ले करने का पसंद है मैम जैसे कुछ भी सॉन्ग को
1: जी जी जी
2: जी
1: अच्छा
2: वैसे तो, भी मैं खाली टाइम रहता हूँ ना मैम मोबाइल से गाना बजा कर उसको सुन के प्ले करता रहता हूँ
1: अच्छा
2: जी
1: जी मतलब आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है
2: जी म्यूजिक में ही अभी 4 साल का वो किया था मैम
1: अच्छा
2: इसी बार कंप्लीट हुआ
1: तो आप आकाशवाणी से कब से जुड़े हुए हैं
2: मैम मैं तो आकाशवाणी से मैम अभी से तो नहीं है बट हमारे यहाँ जब मैम लोग छोटे छोटे थे उस समय रेडियो लाइव से पता
1: जी
2: उस समय से जब मेरे को उतना हिंदी समझ नहीं आता था
1: जी,
2: उस समय पढ़ा लिखा नहीं था उतना उस समय से जुड़ा हूँ बचपन का नहीं पता जी
1: मतलब बहुत साल हो गए आपको
2: जी,
1: आकाश
2: जी बहुत साल हो गए मैम ऐसा अभी मोबाइल में सुनते रहते हैं अब रेडियो तो नहीं है लेकिन मोबाइल ऐप के माध्यम से सुनते हैं वी रेडियो
1: अच्छा
2: जी
1: जी तो आज आपकी फरमाइश हमारे लिए
2: मैम बस सात रंग का सपने का टाइटल सॉन्ग सुना दीजिए
1: तो चलिए सर आपको सुनवाते हैं आप
2: मैम आपका शुभ नाम जानना चाहता हूँ
1: जी मैं आपकी रेडियो कंपेयर दोस्त ऋषिका वर्मा बात कर रही हूँ

0: हाँ नमस्कार
1: जी, आपका नाम?
0: मैं सुरेश कुमार सारथी बोल रहा हूँ मैम, बेमेतरा जिला वार्ड नंबर 20 से।
1: जी कैसे हैं सर आप?
0: बहुत बढ़िया है मैम।
1: जी क्या करते हैं?
0: जी मैम, जैसे मैं सारथी हूँ वैसे मेरा काम भी सारथी का है।
1: जी जी
0: मैं ड्राइवर हूँ मैम। पहले जमाने में क्या है, हमारे पूर्वज लोग घोड़ा रथ टांगा सब चलाते थे।
1: जी
0: और अब तो धीरे धीरे सब ये सब लुप्त हो गई।
1: जी जी
0: अब इलेक्ट्रॉनिक का जमाना आ गया है मैम, तो उन्हीं का ड्राइवर हूँ मैम।
1: अच्छा,
0: यही हमारा रथ है।
1: जी बढ़िया है।
0: अपने इधर बेमेतरा जिला में भी बहुत तेजी से गर्मी बढ़ा हुआ है मैम, बहुत भीषण गर्मी है।
1: जी
0: जिसकी वजह से घर से निकलना बहुत दुर्लभ हो गया है, बहुत मुश्किल हो गई है। और क्या है मैम, अभी के इस मौसम में जितने भी हमारे श्रोता भाई हैं, जितने भी नागरिक हैं, उनको अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ही अत्यंत ही जरूरी है।
1: जी
0: इस मौसम में क्या है मैम, खान पान में भी ध्यान देना बहुत उचित जरूरी है।
1: जी
0: मसालेदार युक्त और तेज मिर्च मसाला वाला भोजन नहीं।

0: करना चाहिए
1: जी जी
0: इस मौसम में, अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए और फल फ्रूट ज्यादा सेवन करना चाहिए मैम। और अभी अषाढ़ लगने वाला है, कुछ समय में अषाढ़ लग जाएगा मैम, तो अषाढ़ के समय जब पहली बारिश होगा उस समय हम श्रोताओं से विनम्र विनती करते हैं कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, ताकि आगे भविष्य में आगे आने वाली पीढ़ी को जल संकट और ऐसे भीषण गर्मी का सामना करना ना पड़े मैम। पेड़ की कटाई हो रही है मैम, उन पर रोकथाम भी लगाया जाए।
1: सर आपने बहुत अच्छी संदेश दिए हमारे प्यारे से श्रोताओं को, उम्मीद है कि वो भी इस बात का पालन करेंगे, पानी पिएंगे और अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे। सर इसी के साथ
0: बहुत जरूरी है मैम
1: जी,
0: हम तो पूरे सारथी खानदान और पूरे सारथी परिवार की ओर से यही संदेश हम अपने श्रोताओं को देना चाहेंगे मैम
1: जी। सर इसी के साथ कौन से गीत की फरमाइश है आज आपकी हमारे लिए?
0: मैं एक गीत जीने की राह फिल्म की है मैम,

0: अभियान।
1: इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
2: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
3: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: हाँ नमस्कार, हेलो युवाणी।
6: नमस्कार सर,
5: मैं रामचंद मठिया काठमांडू बोल रहा हूँ सर।
6: जी रामचंद जी, और अपने बारे
5: आप दिल का क्या कसूर वाला गीत सुनाएंगे? कोई भी गीत सुना दीजिए।

0: हेलो युवाणी नमस्कार।
1: आप जी आए योगेश जांगड़े बोल रहे हैं सिंधवा बांधा बेमेतर
0: जी। योगेश योगेश
1: बढ़िया भैया। अब मूल काम खेती बाड़ी का ही है भैया
0: जी।
1: जी और अभी फिलहाल तो खाली है, अभी बरसात मानसून आएगा उसके बाद ही काम शुरू होगा।
0: जी जी आप कौन से क्षेत्र से हैं?
1: बेमेतरा जिला पड़ता है भैया, पास में ही गांव है।
0: जी
1: जी
0: और समय समय पे मतलब युवाड़ी में भी मतलब सुनते हैं ना।
1: जी जी जी जी जी गंगा जमुना सरस्वती से सुनवा देंगे।
0: ओके योगी जी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: तो दोस्तों, आज के हेलो युवाणी में बस इतना ही। अगर आप भी हमसे बात करना चाहते हैं और अपने पसंद की गीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
1: दोस्तों, हमारा नंबर है 222666, यानी 222666। हमारा दूसरा नंबर है 222160, यानी 222160। दोस्तों, इन नंबरों के आगे जगदलपुर का एसटीडी कोड लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। एसटीडी कोड है 07782, यानी 07782। हम हेलो युवाणी की रिकॉर्डिंग प्रति गुरुवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक करते हैं। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी नए कंपेयर साथी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। मैं ऋषिका वर्मा
0: और मैं विक्रम नाग।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला टीम को भी बधाई दी है। मौसम विभाग ने केरलम और माही में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं।

0: अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग अभिषेक के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। सुशासन तिहार में मुख्यमंत्री आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के निमधा गांव और शक्ति जिला के ठठारी गांव में लगाई जन चौपाल। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति काली 7 जून के रायपुर के एक दिनी प्रवास में रही और भारतीय जनता पार्टी डहर ले पूरा प्रदेश में 21,00,000 पौधा रोपे के बड़का अभियान शुरू करे गए है। अब समाचार विस्तार ले। सुशासन तिहार में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के निमधा गांव पहुंचिन और ग्रामीण मनले भेंट करेन। ओमनले बिजली पानी राशन रद्दा दवाई पानी शिक्षा और आवास जैसन जरूरी सुविधा के बारे में विस्तार ले चर्चा करेन। ए मौका में मुख्यमंत्री ग्रामीण मन के मांग ऊपर जिला में नर्सिंग कॉलेज निमधा गांव में मिनी स्टेडियम और मंगल भवन पर राशि स्वीकृत करे के घोषणा करेन। यही गोट बात के दौरान राजस्व विभाग ले जुड़े एक शिकायत सामने आईस जेमा मुख्यमंत्री संबंधित राजस्व निरीक्षक ला कड़ा चेतावनी देवत हुए साफ कहिन कि जनता के समस्या ला बेरा में निराकृत करो नहीं तो कड़ा कार्रवाई पर तैयार रहो। मुख्यमंत्री बताइन कि प्रदेश में जल्दी सीएम हेल्पलाइन शुरू करे जाही जेखर माध्यम ले लोगन मन टोल फ्री नंबर ईमेल और व्हाट्सएप ले घलो अपन शिकायत दर्ज करा सकी। मुख्यमंत्री आज शक्ति जिला के ठठारी गांव में घलो जन चौपाल लगाइन। ए गांव में ग्रामीण मन के मांग ऊपर मुख्यमंत्री सहकारी बैंक खोले के घोषणा करेन। लोक निर्माण मंत्री अरुण साव रायपुर जगदलपुर रद्दा में केसकाल घाट 4 लेन बाईपास रूट के निरीक्षण करेन। ओमन निर्माण एजेंसी ला बेरा में गुणवत्ता के संग काम ला पूरा करे के निर्देश दिन। 11 किलोमीटर ले ज्यादा लंबा ये रद्दा ला 308 करोड़ रूपया के लागत ले बनाए जावत है। ये बाईपास में 2 ठिन बड़का और 2 ठिन मध्यम पुल घलो बनी। श्री साव केसकाल ले सलना तक रद्दा ला मजबूत करे बर चलत काम के निरीक्षण घलो करेन। श्री साव अपन कोंडागांव प्रवास के दौरान जिला मुख्यालय में विभागीय अधिकारी मनसक बैठका करेन और आने आने विकास काम के समीक्षा करेन। बैठका में ओमन जिला के 3 नगरी निकाय कोंडागांव केसकाल और फरस गांव में वर्षा ले पहली सबो तैयारी पूरा करने के निर्देश दिन और पिए के पानी के गुणवत्ता ला बनाए रखे बर सरलक जांच करे बर घलो कहेन। श्री साव आज अपन जगदलपुर प्रवास के दौरान निर्माणाधीन नालंदा परिसर के संगे संग आने आने विकास काम के निरीक्षण करें और अधिकारी मनले सबो कामला बेरा में पूरा करे के निर्देश दें। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति काली 7 जून के रायपुर के एक दिनी प्रवास में रही। वह रायपुर में रखे गए पिछड़ा वर्ग संगठन के सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होई। एकर अलावा अधिकारी मन के 1 ठिन बैठका में घलो शामिल होई। ए बैठका में मुख्य सचिव के संग राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रमुख सचिव घलो मौजूद रही। अपन प्रवास के दौरान ओमन राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संग शिष्टाचार भेंट करी। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णा गौर घलो रायपुर पहुंचे थे। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक साहू बताइन कि श्रीमती गौर प्रदेश पदाधिकारी मन संग बैठका करी और संगठन पिछड़ा वर्ग के समाज के सशक्तिकरण और अवैया कार्यक्रम मन के बारे में मार्गदर्शन देही। भारतीय जनता पार्टी डहर ले पर्यावरण ला बचाए और संवारे बर एक बड़का पौधारोपण अभियान के शुरुआत करे गए है। एकर तहत पूरा प्रदेश में 21,00,000 पौधा रोपे के लक्ष्य रखे गए है। भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी बताइन कि प्रदेश के सबो बूथ में खचित पौधा रोपे के काम करे जाही। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश डहले प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी के प्रसारण काली संजा 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। एक कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के सबो आकाशवाणी केंद्र एक संग रिले करी। एदारी के अंक में आप मन बिलासपुर जिला के बारे में जानकारी सुनिया। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
2: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावे। हमार

0: फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगू बढ़वो बाचे समाचार कोती। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी CGPSC के मुख्य लिखित परीक्षा आज ले शुरू हो गए है। ये परीक्षा 9 जून तक चली। परीक्षा दो पाली में होत है। पहली पाली बिहनिया 9 बजे ले मझनिया 12 बजे तक और दूसरिया पाली मझनिया 2 बजे ले संझा 5 बजे तक होही। परीक्षा पर 5 ठन केंद्र बनाए गए है, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर और जगदलपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सदस्य डॉक्टर प्रवीण वर्मा और कलेक्टर गौरव सिंह ह रायपुर में परीक्षा केंद्र के निरीक्षण करें और व्यवस्था के जायजा लेन। सुनैया मल्ला बता दें कि CGPSC के प्रारंभिक परीक्षा 22 फरवरी के आयोजित करे गए रहिस। धमतरी जिला में भारतीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड यानी NCCF और छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण गृह निगम को तिले 30,000 मीट्रिक टन के अतकहा अनाज भंडारण क्षमता विकसित करे जावत है। केंद्र सरकार के विश्व के सबले बड़े अनाज भंडारण योजना और रेलवे माल गोदाम के तहत जिला में बड़का स्तर में अब्बड़ अकन गोदाम बनाए जावत है। एक बार धमतरी जिला के 4 ठन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति ल चुने गए है। एमा अवरी, कोसमर्रा, पोटियाडी आमदी और कोलियारी शामिल है। ये चारों समिति मन में 2,500 मीट्रिक टन क्षमता के नवा आधुनिक गोदाम बनत है। एकरे संग राज्य भंडारण निगम कोतिले धमतरी और कुरुद में 10,000 मीट्रिक टन क्षमता के दो बड़का गोदाम के निर्माण चलत है। एकर अलावा कुर्रा स्थित समिति में घलो नवा गोदाम बने के काम चालू हो गए है। उहे धमतरी केंद्रीय बड़ी रेल लाइन परियोजना में रेलवे स्टेशन के संगे संग माल गोदाम के निर्माण के काम घलो तेजी ले चलत है। सुनिया मल्ला बता दन की सरकार ह ए रबी मौसम में जिला के किसनहा मल्ले 60,54,00,000 रुपया के चना बिसाए है। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण यानी रेरा ह प्रोजेक्ट के कामन एरिया ला रहैया या उहां के समिति ला नई सौंपे के मामला में 595 बिल्डर मन ला कारण बताओ नोटिस जारी करे है। रेरा अधिनियम के तहत घर के कब्जा दे के बाद या ओ प्रोजेक्ट में एक निश्चित संख्या में घर बुक होए के बाद वहां के कॉमन एरिया ला हस्तांतरित करना जरूरी है। रेरा 15 दिन में ये नोटिस के जवाब मांगे है। जवाब नहीं दे के स्थिति में बिल्डर मन ऊपर रेरा अधिनियम में मामला दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करे जाही। पद्म पुरस्कार पर नामांकन की प्रक्रिया जुलाई तक जारी रही। गृह मंत्रालय बताई से कि पद्म पुरस्कार पर नामांकन और अनुशंसा जेन 15 मार्च ले शुरू हो रहीस एमा केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल ऊपर ऑनलाइन ही स्वीकार करे जाही। सुनिया मल्ला बता दन की पद्म पुरस्कार जेमा पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल है एमन देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुए नेशनल म्यू थाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ 7 स्वर्ण पदक समेत 17 मेडल जीते है। ये चैंपियनशिप में 26 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 900 खिलाड़ी मन भाग लेन जेमा छत्तीसगढ़ ले 36 सदस्यीय दल शामिल हो। छत्तीसगढ़ के 7 जिला में ग्रामीण परिवार मन के आय बढ़ाए बर एकीकृत आजीविका कार्यक्रम शुरू करे जाही। मुख्य सचिव विकासशील है ए संबंध में अधिकारी मन ला विस्तृत कार्य योजना तैयार करे के निर्देश दिन है। ये कार्यक्रम बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिला में शुरू करे जाही। और आखिरी में प्रमुख समाचार एक गांव फेर। सुशासन तिहार में मुख्यमंत्री है आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के निम्धा गांव और शक्ति जिला के ठठारी गांव में लगाएं जन चौपाल। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति है काली 7 जून के रायपुर के एक दिनी प्रवास में रही। और भारतीय जनता पार्टी डहर ले पूरा प्रदेश में 21,00,000 पौधा रोपे के बड़का अभियान शुरू करे गए है। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
2: थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम होगा। मीडियम व्यू और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:20 होने को हैं। संस्कृत समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।

0: प्रवासस्य बहुदिवसीय क्रीडायाः कृते दलस्य निर्णयार्थं एषा सभा आयोजिता इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। बस्तर के लोकगीत में सुनिए दशोराम और साथियों के गाए गोंडी गीत।

0: बस्तर के लोकगीत में अभी आप सुन रहे थे दशरथराम और साथियों के गाए गोंडी गीत। हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार
1: ये
0: हम
1: आकाशवाणी रायपुर से
0: रिले करेंगे।
1: अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर
6: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
7: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
6: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
7: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
6: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
7: क्यों?
6: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
8: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
9: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
10: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
9: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
10: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
9: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
10: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
8: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
11: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
10: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
11: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
10: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
11: आकाशवाणी से।
8: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
12: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ग्राम निमधा और सक्ती जिले के ठेठारी गांव में जन चौपाल लगाई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति कल रायपुर में सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होंगी। सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है और प्रदेश के विभिन्न स्थानों में अगले 5 दिनों तक आंधी तूफान और गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ग्राम निमधा पहुंचे और ग्रामीणों से रूबरू हुए। उन्होंने ग्रामीणों से बिजली, पानी, राशन, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर जिले में नर्सिंग कॉलेज, ग्राम निमधा में मिनी स्टेडियम और मंगल भवन के लिए राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। जनसंवाद के दौरान राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायत सामने आने पर मुख्यमंत्री ने संबंधित राजस्व निरीक्षकों को कड़ी चेतावनी देते हुए स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं का समय पर निराकरण करें, अन्यथा कठोर

0: कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में जल्द ही सीएम हेल्पलाइन शुरू की जाएगी, जिसके माध्यम से नागरिक टोल फ्री नंबर, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने आज सक्ती जिले के ठेठारी गांव में भी जन चौपाल लगाई। इस गांव में ग्रामीणों की मांग पर मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंक खोलने का ऐलान किया। लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने रायपुर जगदलपुर मार्ग पर केशकाल घाट फोरलेन बाईपास रूट का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण एजेंसी को समय सीमा में गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए। 11 किलोमीटर से अधिक लंबे इस मार्ग का निर्माण 308 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इस बाईपास में 2 बड़े और 2 मध्यम पुल भी बनाए जाएंगे। श्री साव ने अपने कोंडागांव प्रवास के दौरान जिला मुख्यालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली और विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। श्री साव ने आज अपने जगदलपुर प्रवास के दौरान विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्य समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति कल 7 जून को रायपुर के एक दिवसीय प्रवास पर रहेंगी। वे रायपुर में आयोजित पिछड़ा वर्ग संगठन के सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होंगी। इसके अलावा अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक भी लेंगी। इस बैठक में मुख्य सचिव के अलावा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रमुख सचिव भी मौजूद रहेंगे। साध्वी निरंजन ज्योति अपने प्रवास के दौरान रायपुर में राज्यपाल रमन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से शिष्टाचार भेंट भी करेंगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णा गौर भी कल रायपुर पहुंच रही हैं। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक साहू ने बताया कि श्रीमती गौर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होंगी और संगठनात्मक विषयों, पिछड़ा वर्ग समाज के सशक्तिकरण और आगामी कार्यक्रमों के संबंध में मार्गदर्शन करेंगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए एक वृहद पौधारोपण अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत पूरे प्रदेश में 21 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने बताया कि प्रदेश के सभी बूथों में अनिवार्य रूप से पौधारोपण का कार्य किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की जल प्रबंधन पहल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने सिंचाई दक्षता बढ़ाने और जल संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए राज्य में लागू कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन आधुनिकीकरण यानी MCAD मॉडल की प्रशंसा की है। मंत्रालय ने अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर इस मॉडल को अपनाने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे किसानों, जल संसाधन विभाग और सुशासन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता का सम्मान बताया है। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के लिए एकीकृत आजीविका कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। मुख्य सचिव विकासशील ने इस संबंध में अधिकारियों को विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ये कार्यक्रम बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और मोहला मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिलों में शुरू किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रकृति का संरक्षण भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है और पर्यावरण की रक्षा सभी की जिम्मेदारी है। श्री चौधरी ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए औद्योगिक उत्सर्जन की ऑनलाइन निगरानी और फ्लाई ऐश प्रबंधन की व्यवस्था को मजबूत किया गया है। उन्होंने बताया कि नवा रायपुर में 20,000 से अधिक पीपल के पेड़ लगाकर इसे पीपल सिटी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा आज से शुरू हो गई है। ये परीक्षा 9 जून तक चलेगी। परीक्षा दो पालियों में हो रही है। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा के लिए प्रदेश में 5 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर और जगदलपुर शामिल हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की प्रक्रिया जुलाई तक जारी रहेगी। गृह मंत्रालय ने बताया है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं जो 15 मार्च से शुरू हुई हैं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। पद्म पुरस्कार जिनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल हैं देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई नेशनल यूथ म्यूथाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ ने 7 स्वर्ण पदक सहित 17 मेडल जीते हैं। इस चैंपियनशिप में 26 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 900 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ से 36 सदस्यीय दल इस चैंपियनशिप में शामिल हुआ। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में बिलासपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी कुछ दिनों में प्री मानसून गतिविधियों के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में आगामी 3 से 5 दिनों तक आंधी तूफान और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। राज्य में 12 से 18 जून के बीच मानसून के दस्तक देने की संभावना है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज कवर्धा के नए हाईटेक बस स्टैंड का शुभारंभ किया। इस बस स्टैंड में पुलिस सहायता केंद्र भी स्थापित किया गया है। दुर्ग पुलिस ने अंतर्राज्यीय ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 9 आरोपियों को नागपुर से गिरफ्तार किया है। मौके से मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, सिम कार्ड सहित भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और करीब 23 लाख रूपये के आभूषण जब्त किए गए हैं। दुर्ग जिले के नंदनी थाना क्षेत्र के कोड़िया धान खरीदी केंद्र में आज आग लग गई। इस घटना में 100 क्विंटल से अधिक धान जलकर नष्ट हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर अभिजीत सिंह मौके पर पहुंचे और जांच के निर्देश दिए। रायपुर के जय स्तंभ चौक स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जोनल ऑफिस में आज आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने बताया कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। और विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में महासमुंद में कल संडे ऑन साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ग्राम निमधा और सक्ती जिले के ठेटारी गांव में जन चौपाल लगाई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति कल रायपुर में सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होंगी। सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। और प्रदेश के विभिन्न स्थानों में अगले 5 दिनों तक आंधी तूफान और गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का
3: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: हाँ दादाजी जीवन, मैं तो मुंडरा गढ़रा धुरुन बतंबर ले बस्तर किशोर कार्यक्रम सुन तो जमाए गांवकारी दादा दीदी मन सियान सजन भाई बहन संजोरा संजोरिन मन के मैं कुर्सो करें से राम राम। पीला मन के बले मचो बाटले खुब्बे खुब्बे मया करें से दादा दीदी मन देखा मैं तंबर ले मात्र मोटर बोल धरू नीरे से आरु ए बीच समिया बोल ने घाम बेरा चो समिया आए और घाम बेरा घाम संगे संगे सांझ सांझ बेरा काय रस्या पानी कांजी पानी बोले तोसन बोल हो ऐसे और ये भी चो समिया ने बोले ने माई मूर बीती काम कमाई ने वैसे बेड़ा खड़ा बीती जो कमानी बाटे बोलू ध्यान देव पड़े से। तो उसने दादाजी ने नाम चो बोले ने माई मूर बीती वैसे खेती बाड़ी संगे संगे आपलान आपलान और बरन बरन चो दखा खेती बाड़ी संगे संगे तियार मोहतुर मन बोले होते जाए से और होए से बोले और सपाए तियार हो नाले मंडी बाजार हो सपाए गोट सपाए चो बोले गोटो अलग अलग रुसुम मन रहे से बोलू आपला नातम रीति नीति हिसाब नहीं रहे से। तो मैं बोले से उसने ची गोटो काम चो बड़े भारी बोलू ये थाने आम चो ये बाटे होए से जेके बोलू से बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरा बोले ने ये इदलो बड़े बोलू तियार होए से ये और कितलो समय तक ये चले से ये चो बोल गोटो कई रुसुम मन रहे से रीति नीति मन रहे से ये तिहार चो बोले बना तो बीती और ये 75 दिन ले बोलू ज्यादा दिन तक बोलू ये भी ये चो तिहार बना तो बीती ये रुसुम मन होए से बोलू और ये थाने कई देश ले बोले अलग अलग जो लोग बोले उन बाती का ये थान चो उवाट मन की रुसुम मन की जाने सोत दखे सोत आरु सीखे सोत बले आ के बे नी दखलो बीती मन थे थाने दखु दखे सोत। तो ये गोटो काम चो बल्ले ने रीति नीति बीती गोटो रुसुम रहे से ये सबले बल्ले ने मायमूर बीती होए से असन तो तियार मोहतुर सपाय होए से मान सपाय बाटे होए से मात्र सब बाट से गोटो अलग अलग बल्ले उसने अलग अलग वाट मन रहे से। तो उसने दशहरा बस्तर दशहरा ने बोले यथाने कई बल्लेन प्रकार बल बरन बरन चो जे बानी मन होते जाए से होए से बोलू एक ही संगुकनी हो कसन बल्ले 75 दिन चो बोले इतलो दिन चो बीती ये रहे से बल्ले ने कितलो ये थाने बानी बानी चो बोलू रुसुम मन रहे से जेके नानी नानी वाट बीत नानी नानी बीती कामी जान ले बोले जानुक नहीं हुए उतलो ये थाने रहे से और ये बल्ले ने मूर होए से हरियाली अमावस्या ले बोलू ये बीती मूर हुआ ये चो तिहार बोलू बस्तर दशहरा चो आर्य थाने पूरे बल्ले ने सपाय बाटचो देवी देवता ये सोत उन मनचो पूजा पाठ होय से न्यूता पठाय सोत हाँ ते भी उन फलाना दिन ले सु मूर होय से बोलन बाती फिर उन सपाय आपलान आपलान बल्ले ने सिंगार होली जमक मन होली बोलून धरुन धरुन परगना बाटले ये अमरुन बाती ये आपलान आपलान रुसुम मन के बोले थाने करे सो दखाय बोलू पूजा पाठ संग संग कर सो थाने देवी देवता संग संग कितले ये थाने बोलू होए से जेके बोलू से हम बस्तर दशहरा चो संस्कृति ये चो विशेषता बोलू होए से पहला वैसे माउली परघा वैसे निशा जत्रा माईमूर बीती मनात बसन तो खूबे खूबे ये थाने खूबे आसे जेके बोलू बोले नहीं होए बोलतो असना कितलो बोले ने ये भी चो बीती नुआ कई कई समय ले बोलू ये चलते ये तो बीतिया असन नहीं कि ये भी चो बना लो बीतिया यारू आमी बनाऊं बाती चले से असन नुआ पुरखती दाएं जब बोलू ये चो बोलू असन रुसुम मन चले से होते यही से बोलू ऐ थाने और लोग मन बरन कई कितले लोग ऐसे होत कितले दखे सोत कितले बाहर ले बोले ऐसे होत ये थाने 8 चक्का चो बोलू ये थाने रथ चले से हाँ देवी देवता काछन गादी काछन बोलू ये गाड़ी गादी हो ऐसी ये बल हो ऐसी हाँ बरन बरन चो बोलू ये थाने जोगी बसाई भी थी हो ऐसे 9 दिन चो माउली परगाव निशा जत्रा बोले ने ये पुराना बीती मन ऐसे उसने ची आमचो हर तियार तियार मोतुर मन बोले आमचो गोटोक अलग उनचो पहचान होए से बना तो बीती होए से ए जान तो बीती होए से कसन बोले ने आगे जुगे चो ये तो बीती बीती मन जोन जीनिस मन रहे से काई ची बोले हो तियार मोतुर उनके बल तो गोटा आम के भुलक तरनो है उनचो बले ने दखा रखा करतो रामचो मायमूर बीती गोटोक धर्म होय से कसन बले ये बीच समय ने खूबे भारतीचो समय है मानते राम पुरखती दाय बीती मन जोन मन जीनिस मन जोन रीतिनीति बीती मन जोन वाट मन रह से नहीं ये मन के आम के बिल्कुल भूलक तरनो है उसने आमचो घर घर चो बोले बोलू कोनी बाहर जन पढ़ाई लिखाई करे सोत कोनी बाहर नौकरी चाकरी करे सोत धंधा पानी करे सोत मानते आमचो रुसुम बीती आए उनकी तो भूलकुक तो नहीं हो आमचो विशेषता जोन रह से आमचो जोन पहचान बोलू जोन रह से जान पहचान जोन आमचो चीना वाना बीती जोन रह से जो आमचो नीति रीति बीती जोन करतो वाट मन रह से ये बीती मन के आम के भूलक तो नो आए कसन बल्ले ने भूलक तो जावा फिर ये तो समय ने आम काय के जानवा काय के सीखवा असन वाय दे तो उन्हीं का जी आम के बनान संगाते जावा और पीला झीला जो ना तो उनके बल्ले सांगते जावा दखाते जावा तेबे उन मन सीख दे ना ले फिर धीरे धीरे उन भूल कुन जा दे तो फिर बल्ले ने आमी सुरता कर ले बल सुरता नहीं है तो यही काज दादा दिन में आमचो हर सपाय बनी तैयार मोतुर बाजार मंडी होय से आप लो जोन विशेषता जोन उनचो लगाव रहे से जोन उन बानी बीती रहे से जोन रुसुम मन रहे से बिल्कुल एक ही भूलक तो नए घोटो घरे जितलो आमी पिलाजी लग सिखावन है उसने बाहरी बीती बोले आम के असन उठ मन के बोले आम के सिखाक पड़े से गाँव ने हो पारा ने हो आप लो राज ने हो देश ने हो तो यही सपाय बानी मन के आम के भूलकतर न बाहर लेबल सीख तो रहा है मानते राम चो मायमूर बीतिया से उनके भूलकतर न आए बल्कि उनके दूसर लगे बोले अमरा तरह दूसर लगे बोले सांग तो है कि आम चो बाटे असन है नलामी लगे असन है ये ने आम चो ये असन गोठियाओं से ना ले बोली आए ना ले ये आए है नहीं ये आप लोग बीती के भूलकतर न आए लुकातर न आए तो तेबे आप लोग पहचान बने दे आप लोग जान पहचान हो दे आप लोग जोन बीती बने रहे से उन बले दूसर के बले जानकारी धरे दूसर लेवल सीखते रहे आराम के बले सिखाते रहे बोलू तो दादा दीदी मन आले मैं ये गोट के तो अमरा ले मंत्र देखा अमचलग मचलग बले नहीं और बले मोटरान गोट बतास होत अली मन के बले मैं अमरा है से।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 cc तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
4: जीएसटी काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तगा टैक्स तुन और वेंट सरल बना की तोड़ बस ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडोई लेकिन 18% टैक्स किसी तोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता एचएस कोड क्लासिफिकेशन किन परवा की वलेवा गाड़ी ना सामान तपोरो इंजे ओंडोई 18% टैक्स किसी तोड़ इत बुताते इव सामान पाड़नोर और सामान तच इयनोड़ तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओयना बूता सरल आयना उम्मीद मिंदे इलेक्ट्रिक गाड़ी न पर्रो मुन्नीटा लेकेन 1% टैक्स मंता नेलता माटा इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मूड चक्का न गाड़ी 1% जीएसटी मोला तेने दोर किता अदेन के अव सोबेर कम टैक्स ता गाड़ी बने मास मनता।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस ऊपर एवर एक समान 18% कर लागे दे आगे ये 28% रहे एचएस कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा करलो बिना ऑटो पार्ट्स ऊपर एवर एक समान 18% कर होली से ए काम ले कल पुर्जा बनातो कंपनी अरु घेन तो

0: एबल आय गीत गोविंद बले नंगते आय सुनतरी आय गीत गोविंद संगे दखा तुम जाना सा कई बरन बरन च बलतोसन बाजा गाजा बल होय से और उसने चे कहिनी बल होय से उसने चे कविता बल होय से तो बल्लेने यथाने बरन आपलान आपलान जोन रहे से नहीं काय सुंदर आपलान आपलान बीती बोलू उन जानकारी हो ना रे गोट हो उन थाने बोलू ये थाने रहे से बल्लेने काई ची बीती चो उन गोटोक बलतोसन रहे से की बल्लेने काई पूजा पाठ बीती होली होली ना आले काई धर्म बोलू गीत गोविंद बोलो गोटोक लाइन ने गोटोक सुतुर के जोड़ तो बीती ये मन बोले थाने गोट मन रहे से तो उसने देखा ये कविता मतलब बोले सोनू कविता ये थाने कविता ने बोल देखा बरन बरन चो थाने बानी बानी चो उट मन रहे से बोलू कोचे पारा चोली ना आले कोचे घर चोली ना आले कोचे बाड़ी चो बल तो कोई कोई कनी कोनी रुख चोरेली होली नाल कोनी तियार चो होली बोले ने कविता बोले देखा बरन बरन चो थान रहे से तो उसने चे देखा ये आम्मी तियार मोतुर बोल बनाओ से कोनी तियार मोतुर ने देखा कोनी पांचो बोलू पूजा हो ऐसे बोलू कोनी रुख चो पूजा बोले ने वरन वरन से आमा तैयार होली उन थाने फरसा पांचो होली धान नवा समय देखा कुड़ी पान होली बोले ने गोटोक अलग अलग ये चो पहचाना रुंचो रुसुम बीती रहे से उसने कविता ने बोले रहे से बोले अलग अलग चो गोट मन तो उसने ये कविता ने आसे बोले ने ए कुड़ी फूल चो बीती गोटा से थाने ये मन सांगे तो सांगे सोत श्री घासीराम तो मचो बोल तो गोटे आए कि सपाए बानी च बोले ने अलग अलग गोटोक बना तो बीती हो ऐसे सांग तो बीती हो ऐसे तो कुड़ी फूल चो बीती के आले ये कविता क्या मैं बोले सुनू आरु गाँव कर दादा जी मन तुम्हें बोले एक ही सुना
1: नंदीदड़ी चो कुड़ी फूल खूबे सुंदर आय अचना चा पीला मान जोनी उजुराय अचना चा पीला मान जोनी उजुराय कुड़ी पान के बचौरले काम देवाय सतई कुड़ी पान के बचौरले काम देवाय दखनवा जीव न काजे ये दे काम देवाय दखनवा जीव न काजे ये काम देवाय सिर्ग सिंह न बचौ

करुआ, जसन जसन बीमारी रले उनके दूर करुआ, हे जसन बीमारी रले उनके दूर करुआ। ये तो एकादे संगते रले सबके जान तो राय, हाँ ये तो एकादे संगते लेके सबके जान तो राय। दका कुड़ी उठ के बचाओ रले काम देवुआ, काई कुड़ी बुटक बचाओ रले काम देवुआ। नंदी दड़ी चो कुड़ी पुल को बे सुंदर आय, नंदी

जंगल बाटले जड़ी देखले काम देवा जसन सुगर बीमर रले उनके सबके छंडौआ जसन सुगर बीमर रले उनके सबके छंडौआ का जय कोड़े बूट के हमके बचातवा दका लोग रोग रहे दे हुनके दूर करुआ तेतरो रोग बीमारी रहे से हुनके दूर करुआ हम तो बतर की तरह

गणित जीवन हम तो जीवन आय सर सीवन गणित जीवन हम तो जीवन आय यदि सब जन के बचाओ रले काम देवा यदि सब बन के बचाओ रले काम देवाय संगत गोट के नंगत करुण नंगत रतो राय सतय संगत गोट के नंगत करुण नंगत रतो राय सतय सियन मन के सांगल गोट के हम के दर तो राय सतय सियन मन से सांगल गोट

के दस्तात वाय जंगल बाटे रुक रहे हमके बचत वाय जसन बैदी रुके देखुन हमी हमके बचत वाय जसन जड़ी रुक रली जले हमके बचत वाय हाट पटन जड़ी बूटी के बिकुक ने तो नुआ हाट पटन में जड़ी बूटी के बिकुक ने तो नुआ दका करे हमके ये काम देवुआ सत हम

रही यदे माता पिता सांगून दिला सबके काम दिली यदे माता पिता सांगून दिला सबके काम दिली ते गोट के सुरत कर ले सबके बनुआ ते गोट के सुरत कर ले ते तो बनुआ हमी माई बाबत को गोट की निधर लिखा तो बन।

हाँ, ये कार्य से देखने ये सुनु कविता भित्रे कुड़ी फूल चोरली, ये कवि कविता के बोलू सांगत्रोत। हाँ, सांगत्र लयमन श्री घासीराम। तो दादा दीदी मन आले ये थाने बोले हरिक चो बीती गोट रली, और हरिक ने बोले रतो रे ऐसा न है। अब मैं बोलते रहे गोटोक मच लगे बोले ये गीता से आले गीत के अमराय से पाछे गीत कुरिया मंच नाव के पाछे सांगे दे। पहले गीत के सुन।

हाँ दादा दीदमन, ये काय सुंदर ये गीत रेली, एके गाव रोत बाबूलाल बघेल अरे मंचो संगवारी मन मांतर दाका मंचो मुंडरानी और आसेता आले एके बोले मैं अमरान देन पाचे मंचो गीत कुरिया मंचो नावा के सांगे दे आले के बोले सुनू।

हाँ दादाजी मन धक्का धक्का रसे ही खेल गीत रे ने अरे गीत बल कितलो सुंदर रे गीत के गावरो दिलीप कुमार पांडे अरे मंचो संगवारी मान दादाजी मन दखा गीत गोविंद सपाय होली गोट बार सपाय होली मांतर दखा आपलो जीवना के चला तो काजी बल ने आपलो दे जीव जांगर नंगत रतर खूबे अच्छा है और कई चीज बल काम धाम हो बेड़ा खड़ा हो कई चीज धंधा पानी हो ये सपाय का जी आप लोग परिवार छो आप लोग लोक छो हाथ गोटोक रहू रहे से और यही हाथ रले निकाय कि आप लोग काम धाम बले नंगत रहू है तो यही काजी सपाय गोटो खून बाती रत रहा है गोटो खून बाती सलाह सुतरुन बाती काम धाम के करत रहा है। तो मैं विदा धरे से कार्यक्रम बस्तर के स्वर सुन तो जमाए दादा दीदी सियान सजन भाई बहन मन के मैं कुर्सो करें से राम राम।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

किसान वाणी कार्यक्रम सुन तो सपाए खेतिहार दादा दीदी बोड़ू बढ़ाए और संग जोहरिया संगवारी के मैं झिटकू करें से जुहार और रेडियो कटा कटा बटलो सपाए नानी नानी पीला मन के बले मोजो बाटले खुब्बे खुब्बे मया और चुमा। तो दादा दीदी मन आजकल चो समिया कल जुग चो समिया है। आजकल चो समिया नहीं कहीं काम कर तो काजे आसान होए से तो कहीं काम कठिन बल होए से और न सुन बल जाए से। जसन की बल्लों ने देश दुनिया जित्रो बाढ़ती बांटने जाए से उसने प्राकृतिक संपदा चो कमी बल होते जाए से। जसन बलुआत नहीं विकास और विनाश एक सिक्का चो दुठन पहलू आए। मानतर ये गोट फंद गोट है दादा दीदी मन। काहे कि दादा दीदी मन विकास कर लो ने विकास जो बांटने रेंगलो ने विनाश कर तो अनिवार्य नु है। काहे कि दादा दीदी मन प्राकृति संभता जो बिना नुकसान करुन भातिन बले विकास करुक सकू से। मानतर लोग ना समझी और सरल बाट के धरुन भातिन प्राकृतिक चो क्षति कर सोत नुकसान पहुंचा सोत। ये चो प्रभाव सीधा आम चो गरीब खेतिहार दादा दीदी मन झेल सोत हुन मन के प्रभाव पड़े से। जे चो कारण मौसम चो अनियमितता होए से सही समय ने पानी नहीं गिरे नहीं तो बिन मौसम बारिश होए से। और आजकल देखुक सकासी दादा दीदी मन की गर्मी कितरो बाढ़ ली से ये काय होए से मौसम चो अनियमितता। जसन की आजकल अंधाधुन रुख राई मन चो कटाई होए से खदान चो नाम ले विकास चो नाम ले ये सब काय होए से ये चो प्रभाव चो कारण हम चो मौसम चो अनियमितता होए से। बल्लो ने की मौसम जसन की पानी चो कमी हो जाए से जितरो पानी गिरतो रहे से उतरो नहीं गिरे और बिन मौसम बारिश होए से जसन जेठ बेरा पानी गिरे से। जसन की आजकल देखो सकासित जेठ सर तो बतर होए से मानतर नव तप्पा बलुआत एने बले पानी घसरे से असन अनियमितता होए से। जे चो कारण हम चो सीधा प्रभाव फसल के पड़े से। फसल जे चो कारण हम चो फसल चो पैदावार कम होए से और हम चो फसल कर तो भूई ने जो उपजाऊ क्षमता रहे से हुन बल कम होते जाए से। कल युग समय ने असन होए से कि हमी आगर बाढ़ती करूं दे बोलून भातिन जसन की खेती कमानी ने हमी धान कमाओ से नहीं तो जोंदरा कमाओ से नहीं तो कई प्रकार जो हमी खेती बाड़ी करूं से हुन ने हमी अच्छा बाढ़ती करूं दे बोलून भातिन कोनी कोनी आगर जांच पड़ताल पूछा पछारा नहीं करत तो हुन मन धड़ल्ले से रासायनिक खत बुलवात हुन के हुन चो प्रयोग कर सोत। जसन यूरिया होली पोटास होली डीएपी होली एक बल कर तो रहा है मानतर ए जो बले एक निश्चित मात्रा होए से एक कितरो कौन भी तीन खत के लगा तो रहा है कौन भी तीन खत के नहीं लगा तो रहा है एक हम के जानुक लागवाए। आजकल मोबाइल चो जमाना से तो मोबाइल ले हम के जानकारी धर तो रहा है कि हाँ ये भी तीन हम चो भूई आए तो भूई ने कौन भी तीन फसल के बोलो ने अच्छा पैदावार हो दे और कौन खत के लगा लो ने था उन फसल चो मात्रा आगर हो दे बोलन भाते जांच पड़ताल कर ले हम चो फसल चो जो पैदावार हो दे हुन बढ़ते जाए से। तो ये कसन कारण हो से अनियमितता हमी हम चो ना समझी कारण अनियमितता होली से। तो तुम्ही खूबे आजकल देखुक सकासित की आधुनिकीकरण चो कारण हमी एक प्रकार ले तो हमी खूबे बाढ़ती चो बाटने हिंडू से। मानतर बाढ़ती संगे संगे हमी कुछ असन नासमझी काम बल करून जाऊं से जे चो भरपाई करुक लाए हमी खूबे समय लागे दे या फिर करुक ही नहीं सकूं दे असन बल होए से। तो हुनी काज हमके जानुक लागे दे कि मौसम परिवर्तन ने हमके हम चो खेती ने कितरो प्रभाव पड़े से। हुनी काज हमी असन असन जसन की पानी कोनी साले आगर गिरे से कोनी साले कम गिरे से कोनी साल आगे जो जमाना असन रली की हर साल अच्छा मतलब पानी गिरे हुन चु कारण हम जो खेती कमाने ने अच्छा बाढ़ती होते रहे। मानतर आजकल असन होए से अनियमितता होते जाए से। और दादा दीदी मन मौसम परिवर्तन कारण तापमान बल बढ़ते जाए से पानी बल कम होते जाए से और पानी कम गिरे से सोतान पानी बले खाले जाते जाए से गर्मी अगर बाढ़े से ये सब चो कारण हम चो सीधा प्रभाव कहाँ पड़े से हम चो खेती बाड़ी ने पड़े से। उन्हीं का जी हम के समझू के लागू आए हम के जानू के लागू आए कि हम अगर प्राकृतिक संपदा चो सही उपयोग करूँ और हम ही जानू और हम के रुखराई के संरक्षण करत रहा है संवर्धन करत रहा है जय चोले हम चो ए तो भी तीन पीढ़ी बले हनुमन बल अच्छा जीवना जीव दे। बल्लो ने मौसम परिवर्तन खूब एक गंभीर चुनौती होली से और ये चो कारण हम चो जो खेती कमानी होए जो फसल होए से होने खूबे प्रभाव पड़े से। तो दादा दीदी मन ये तो रली खेती बाड़ी जो संबंधित जानकारी ज्ञान ध्यान चो गोट हम चो लगे गोटोक जहला बला से आले एके बले सुनो।

0: येतोरली जहाला आमचो कार्यक्रम भित्रे खेती कमानीची गोडतो धरून येऊनसे मांतर संगे संगे खेती कमानी संग संगे खेती कमानीचो उपाय मन कसन करुआ हुन मंच गोट मन बल धरून इलो से बल्लो ने हमचो लग गोटो भेट वार्ता से ये भेट वार्ता में और ये भेट वार्ता में सांसद मौसम संबंधित जानकारी मौसम विभाग चो वैज्ञानिक अधिकारी श्री एच पी चंद्रा सर आसे और भेट करता आय श्री लखमुराम मरकाम और एचो प्रस्तुति सुश्री चंद्र ऋषि ठाकुर आले ये गोट के बले सुनो
1: तो हामी खेती बाड़ी चो संबंधित कहीं ना कहीं ज्ञान ध्यान चो गोट धरू ने उसे तो आज ही उसने हामी हमचो बीच ने उपस्थित आसत हमचो विशेषज्ञ श्री एच पी चंद्राकर सर जो मौसम विभाग अधिकारी जगदलपुर चौथ तो सर आपन जो मौसम विभाग में पदस्थ आसत जगदलपुर में तो सबले पहल सर आप मन के खुबे खुबे धन्यवाद हम जो प्रोग्राम ने ये तो काजे
2: आपको भी धन्यवाद।
1: हाँ सर तो पहले मैं जानना चाहूंगा कि सर आपका परिचय आप अपने से देंगे आपका विशेष कार्य क्या रहता है आपके विभाग में उसमें बताएंगे।
2: मैं एच पी चंद्रा मौसम विज्ञानी हूँ यही अभी फिलहाल पदस्थ हूँ। मूल रूप से जो हमारा विभाग है वो जी। सबसे पहले जो काम करता है वो डाटा कलेक्शन का काम करता है उसके अंदर डाटा का फिर हम लोग कलेक्ट होने के बाद में उसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने के बाद आज की परिस्थिति में कौन सी मौसमी तंत्र है मौजूद है
1: जी।
2: उसके अंदर फिर हम पिछला मौसम को देखते हैं कि हमारा पिछला मौसम क्या था उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं कि हमारा आगे का मौसम हो किस तरह से जाएगा। तो इस तरह से हमारा डाटा जो कलेक्शन का काम है
1: जी
2: वो किया जाता है उसके बाद में उस पर एनालिसिस होता है। एनालिसिस करने के बाद में फिर आगे है
1: जी
2: मौसम की घटना किस तरह से हो सकती है क्या होगी
1: जी
2: ये हमारे जो पहले के जानकारी है
1: जी
2: वो और तात्कालिक जो मौसम की तंत्र है वो जो स्थित है वो दोनों को देख करके मौसम पूर्वानुमान को जारी किया जाता है।
1: अच्छा अच्छा सर ये प्रतिदिन जो डाटा कलेक्ट करते हैं प्रतिदिन भेजते हैं या फिर इसका साप्ताहिक होता है या मासिक होता है कैसे होता है सर इसको बताइए।
2: देखिए हमारे पास जो डाटा कलेक्शन है अलग अलग टाइप के हैं
1: जी।
2: एक तो जैसे जगदलपुर की हम बात करें तो यहाँ पर 24 घंटे डाटा कलेक्शन का काम है होता है
1: जी।
2: तो यहाँ तीन यूनिट अभी फिलहाल स्थापित है। एक को हम लोग बोलते हैं सरफेस ऑब्जर्वेशन या सतही प्रेक्षण। इसमें
1: अच्छा।
2: दिन में 8 बार प्रेक्षण लेते हैं और उसको तत्काल ही संबंधित उच्च ऑफिस है उसको हम भेज देते हैं। दूसरा है RSRW बोलते हैं जिसमें कि ऊपरी हवा की प्रेक्षण के लिए
1: जी।
2: हम लोग उस यूनिट में काम करते हैं जिसमें ऊपर में जो हवा चलती है तो उसमें तापमान है
1: जी
2: जल वाष्प की मात्रा है दाब है
1: जी
2: हवा की दिशा है और हवा की गति है
1: जी जी
2: इस ये 5 एलिमेंट है वो हमको मिल जाता है जिसको हम तत्काल ही जो हेड ऑफिस है उसको भेज देते हैं। तीसरा
1: अच्छा।
2: यूनिट है
1: जी
2: जो यहाँ पर AMS के नाम से जाना जाता है
1: जी
2: तो इसमें है मुख्य रूप से जो एविएशन सेक्टर को
1: अच्छा
2: तत्कालिक मौसम की जानकारी देने के लिए
1: हाँ।
2: इस यूनिट का काम रहता है। ये सामान्यतः हर 1 घंटे में ऑब्जर्वेशन होता है
1: अच्छा
2: और यदि वॉच आवर चला
1: हाँ।
2: तो उस परिस्थिति पर हर आधे घंटे में ऑब्जर्वेशन लेकर के संबंधित जो ATC है एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उनको दे देते हैं जो पायलट से सीधा संपर्क करके वहां के तत्कालिक मौसम की जानकारी को वो साझा करते हैं।
1: अच्छा अच्छा बहुत अच्छी जानकारी दी सर। जैसे कि सर हम किसानों की बात करें तो किसानों को हम आपके मौसम विभाग किस तरह से मदद करते हैं उनका विवरण कैसे रहता है सर थोड़ा उसके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए।
2: देखिए लगभग जो हमारा विभाग है मुख्य रूप से जो हमारा जो छत्तीसगढ़ का ऑफिस है
1: जी
2: वो है मौसम केंद्र रायपुर है वहाँ पर एक कृषि बुलेटिन जारी होता है तो कृषि बुलेटिन में जो मौसम विभाग है वो मौसम का पूर्वानुमान देता है उसके बाद में उसको संबंधित क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र या विश्वविद्यालय में भेज दिया जाता है। वहां से फिर जो कृषि वैज्ञानिक हैं उसमें संबंधित क्षेत्र में क्या क्या किसानों को करना चाहिए
1: जी
2: किन परिस्थितियों में क्या दवाई छिड़काव करना चाहिए या बाकी जो जानकारी है
1: जी
2: वो सारे के सारे देते हैं और इनको दोनों को कंपाइल करके फिर उसको वेबसाइट में डाल देते हैं या फिर संबंधित जो कृषि विभाग है
1: जी जी
2: उसको भेज देते हैं। तो कृषि विभाग है वो किसानों तक पहुंचाते हैं, जिसका लाभ है वो किसानों को मिलता है।
1: अच्छा अच्छा जी, जैसे कि सर हम जानना चाहते हैं कि मौसम, जैसे वर्षा ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है, ऋतुओं के अनुसार कैसे मतलब जानकारी एकत्रित करके हम किसानों को दे, ताकि उन लोग अपने कृषि में ज़्यादा आमदनी अर्जित कर सके। सर
2: देखिए, वास्तव में देखा जाए तो किसानों को एक से लेकर के तीन दिन का उनको मौसम की पूर्वानुमान की जरूरत पड़ती है। उसका कारण यह है कि उनको बहुत लंबे समय की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुख्य रूप से जो ये रहता है वो सिंचाई संबंधित रहता है। अभी एक दो दिन में पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ये परिस्थितियां रहती है। दूसरी चीज है कि पानी गिरेगा
1: जी सर,
2: तो वो किस दिन गिरेगा, जिसके कारण से उसको डाला गया खाद है या फिर डाला गया दवाई है वो बेअसर ना हो जाए, तो ये पूर्वानुमान है उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदे का है यदि उस पर ध्यान दें तो। तीसरी चीज है कि हर सीजन में कुछ न कुछ मौसमी घटनाएं होती हैं जिससे दुर्घटना होने के चांस है वो बढ़ जाते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो किसान वर्ग है वो प्रायः फील्ड में रहते हैं, तो फील्ड में रहते हैं तो उस परिस्थिति पर उसके बचाव के कुछ उपाय उसको चाहिए, क्योंकि वहां पर और कोई बचाने वाला या फिर और कोई घर नहीं है या कोई छत नहीं है जिससे वो बच सके
1: जी।
2: तो उसमें जो रहता है कि जैसे हम कहीं पर बाहर गए हैं, वहाँ उस कंडीशन पर खेत में बैठे हैं, गड़गड़ाहट हो रही है, मेघ गर्जन हो रहा है, मेघ गर्जन के साथ में जो बिजली गिरता है जिसको हम वज्रपात बोलते हैं, तो वज्रपात गिरने के कारण से बहुत सारे लोगों की अकस्मात है वो मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत दुखदायी रहता है कि ये क्षणिक में ही ये घटना हो जाती है। दूसरी चीज है कि बस्तर संभाग में बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ के जो यदि पानी गिरा तो जाहिर तौर पर नीचे की ओर बहुत तेजी से वो बहते हैं, तो इसको हम लोग टेक्निकल भाषा में हम लोग बोलते हैं फ्लैश फ्लड। तो यदि अच्छी बारिश हो जाए तो उस कारण से फ्लैश फ्लड आने के चांसेस रहते हैं, जिसमें कि जो नीचे में खड़ा व्यक्ति है या जानवर है या कोई घर है तो उसके बह जाने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं जो रहता है, तो उससे बचाव के लिए जरूरी है कि वो ध्यान दें कि हमको किस समय किस चेतावनी को जारी किया गया है, और उस चेतावनी का भले ही उस जगह पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है अलग बात है, लेकिन उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं वो घटनाएं होते रहती है।
1: जी जी।
2: तो इसलिए बहुत ज्यादा चेतावनी को नजरअंदाज ना करें, बल्कि उसको थोड़ा ध्यान देकर के सतर्क होकर के खेतों में या जहां भी काम कर रहे हैं वो काम को करें।
1: जी जी, सही कहा सर आपने। कभी कभी ऐसे होता है सर कि कुछ क्षेत्रों में उसका प्रभाव दिखता है, कुछ क्षेत्र में नहीं दिखता है, तो इसी वजह से उन लोग लापरवाही करते हैं किसान, तो इस तरह से कभी कभी उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। सही कहा, तो ऐसे सावधानी बरतेंगे तो उन लोग अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे कि सर, साथ ही साथ मैं ये पूछना चाहूंगा सर, जैसे मौसम और जलवायु में उसमें क्या अंतर हो सकता है?
2: देखिए, जो मौसम होता है उसमें मुख्य रूप से एक ही तत्व को देखा जाए तो उसमें पानी गिरना है, मौसम का मतलब पानी गिरने से। लेकिन उसके अतिरिक्त जो होते हैं उसमें अलग अलग टाइप की घटनाएं हैं, जो पानी ही गिरना नहीं, ओलावृष्टि भी है, या फिर बादल का आना है, या फिर गरज चमक होना है, या फिर अंधड़ चलना है, अंधड़ मतलब तेज हवा जो चलना है, तो ये सारी घटनाएं हैं
1: जी,
2: वो होती है। यदि जिस समय हो रहा है तो उसको हम कहेंगे मौसम।
1: अच्छा,
2: अब यदि हम जलवायु की बात करें
1: जी जी,
2: तो ये मान लीजिए कि जनवरी के महीने में प्रायः ठंड रहता है, तो लंबे समय तक लगभग 50 साल में, पिछले 50 सालों में उस जनवरी के महीने में किस तरह से मौसम है वो रहा है, तो उसकी जो औसत है उसको हम दर्शाते हैं, उसको हम जलवायु के रूप में जानते हैं। तो उसमें यही चीज होता है कि चूंकि ठंड के सीजन में मुख्य रूप से टेम्परेचर को देखा जाता है, टेम्परेचर मतलब ठंड की मात्रा है
1: जी,
2: अधिकतम को भी देखते हैं, क्योंकि उस समय कहीं दिन में भी इतना ज्यादा ठंड ना हो कि जिसके कारण से दिक्कत आए, इसको हम परिभाषित करते हैं शीत दिवस के रूप में या कोल्ड डे के रूप में।
1: जी जी।
2: तीसरी चीज है कि बारिश की संख्या, औसत दिनों की संख्या कितनी है। अब इसका मुख्य रूप से जो उपयोग होता है वो पर्यटन के लिए ज्यादातर उपयोग आता है। दूसरी चीज है कि ये जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होते हैं या फैक्ट्रियां चलती हैं या फिर जो यातायात के साधन है जी, उनके लिए ज्यादातर उपयोग में आता है।
1: हाँ हाँ जी, जैसे कि सर आजकल देखा जाए तो आधुनिक युग में औद्योगिकरण बहुत हो चुका है और अंधाधुंध कटाई भी हो रहा है, इसके वजह से पर्यावरण में कितना प्रभाव पड़ रहा है सर, इसका मौसम में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसको बताइए थोड़ा।
2: देखिए, औद्योगिकीकरण ही केवल नहीं हो रहा है, चूंकि जैसे जैसे ये जो औद्योगिकीकरण है वो बढ़ते जा रहा है, उसके साथ साथ लोगों के जो बसाहट या रहने रहन सहन बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया है
1: जी।
2: तो बदलाव केवल आदमी की जिंदगी में नहीं हुआ है या जनसंख्या में ही नहीं हुआ है,
1: जी
2: उसके अतिरिक्त मौसम में भी बदलाव देखने को मिलता है।
1: जी
2: अब जैसे हम एक ग्लोबल वार्मिंग करके शब्द है,
1: जी
2: तो ग्लोबल वार्मिंग में होता ही है कि यदि हमारा जो पृथ्वी है उसके तापमान में किस तरह से परिवर्तन आ रहा है, यदि हम देखें तो सन 2000 के और उसके बाद में
1: जी
2: चूंकि प्राइवेटाइजेशन चालू हुआ, उसके अंदर फिर औद्योगिकीकरण में तेजी आया,
1: जी
2: रोड सड़क दुनियादारी के बनने लगे,
1: जी
2: तो उसके कारण से एक तो औद्योगिकीकरण के कारण वहां से निकलने वाली ऊष्मा है वातावरण में गया,
1: जी
2: औद्योगिकीकरण होने के कारण से बहुत सारे पेड़ पौधे भी कटे,
1: जी
2: औद्योगिकीकरण होने के कारण से जो घर बनने लगे तो उसमें भी पेड़ पौधे कटे, या फिर वहाँ जो घरों में हैं
1: जी
2: जो ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी भी ऊष्मा तो आखिर में वातावरण में ही जाएगी ना,
1: जी
2: तो वातावरण में उसका भी जा रहा है। हम वाहन का उपयोग कर रहे हैं, पहले पैदल चलते थे, आजकल हम वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें जो ईंधन उपयोग हो रहा है, वो जो ऊष्मा उपयोग हो रहा है, अल्टीमेटली वातावरण में ही जा रहा है। तो इस तरह से हमारा जो सन 2000 के बाद में लगभग लगभग तेजी से बदलाव आया है, और सन 2025 तक
1: जी
2: लगभग 16 बार ग्रीष्म वर्ष के रूप में जाना गया है।
1: अच्छा, 2000 से 2000
2: से लेकर के 2025 सालों में
1: जी
2: 16 बार है जिसमें कि सामान्य ताप से काफी ज्यादा औसत तापमान है वो देखने को मिला है।
1: अच्छा, बढ़ती क्रम में दिखा है। जैसे कि सर ऋतु के बारे में यदि हम उसको प्रकार में बांटे तो कितने प्रकार के हो सकती है ऋतुएं?
2: देखिए, जो सामान्य बोलचाल की भाषा है एक अलग है
1: जी,
2: और जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो अलग है। इसमें है मुख्य रूप से देखा जाए तो हम जनवरी और फरवरी के महीने को विंटर सीजन के रूप में या शीत ऋतु के रूप में जानते हैं, उसके अंदर मार्च अप्रैल और मई के महीने को प्री मानसून सीजन के रूप में जानते हैं, उसके अंदर जून जुलाई अगस्त और सितंबर इसको मानसून सीजन के रूप में जानते हैं, उसके अंदर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसको हम पोस्ट मानसून के रूप में जानते हैं।
1: अच्छा अच्छा जी, बहुत अच्छा जानकारी दी सर। जैसे कि सर हम अभी कौन सी ऋतु चल रही होगी और इसमें हम क्या सावधानी बरतें और हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें, इसके बारे में?
2: देखिए, ये है सामान्य बोलचाल की भाषा में ग्रीष्म ऋतु है, लेकिन वास्तव में एक दूसरे कारण से इसको नाम दिया गया है प्री मानसून सीजन का।
1: हाँ,
2: ठीक है, चूंकि मानसून के पहले का जो सीजन है मार्च अप्रैल और मई के महीना
1: जी,
2: तो ये जो तीनों महीना है ये प्री मानसून के रूप में जाना जाता है। दूसरी चीज है कि ये प्री मानसून सीजन है, मुख्य रूप से इसमें सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है, चूंकि ग्रीष्म काल है तो गर्मी ज्यादा रहेगी, एक हो गई। दूसरी चीज है कि इस सीजन में अंधड़ चलने, ओलावृष्टि होना
1: जी,
2: और वज्रपात होने की घटना है बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें है कि ये सीजन है ये चार चीजों के लिए जाने जा रहा है। नंबर एक है कि गर्मी, नंबर दो है अकस्मात वर्षा है
1: जी,
2: तेज हवा चलना है और
1: जी
2: वज्रपात है।
1: अच्छा जी, जैसे कि सर काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि पहले गर्मियों में ज़्यादा वर्षा नहीं होती थी, लेकिन हम पिछले 5 साल की बात करें तो गर्मियों में भी अधिकतर वर्षा देखने को मिलता है, तो ये किस वजह से हो रहा है सर, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए।
2: देखिए, वास्तव में देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि प्री मानसून सीजन में बारिश नहीं होती है, होती है, पहले भी होती थी, आज भी हो रही है और आगे भी होते रहेगा। उसका कारण ये है कि जो भारत की भूमि है
1: जी
2: ये उत्तरी गोलार्ध में है, चूंकि सूर्य है
1: जी
2: ये उत्तरी गोलार्ध में रहता है, इसके कारण से एक ग्रीष्म ऋतु कहलाता है
1: जी।
2: दूसरी चीज है कि जो भारत की भौगोलिक संरचना है, तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, उत्तर है वो पहाड़ से घिरा हुआ है
1: जी,
2: हिमालय पहाड़ है
1: जी।
2: तो इस सीजन में चूंकि बहुत अधिक गर्मी पड़ने के कारण से
1: जी,
2: कुछ मौसमी तंत्र बनते हैं, और तंत्र बनने के कारण से नमी है या तो अरब सागर से आता है, मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी से आता है। यदि हम प्रदेश की बात करें तो इसमें सबसे अधिक जो नमी मिलता है इस सीजन में,
1: अच्छा,
2: वो है बंगाल की खाड़ी से मिलता है, और बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है तो जाहिर तौर पर उसमें कुछ ऊर्जा है, वो ऊर्जा है ये जितने तीन जो घटनाएं हैं, एक तो पानी गिरना है, दूसरी चीज है वज्रपात होना, अंधड़ चलना, और चौथी जो घटना होती है वो है ओलावृष्टि। तो ये चारों घटनाएं हैं यहाँ पर ज्यादातर देखने को मिलता है।
1: जी सर, जैसे सर ग्रीष्म लहर किस माह में ज्यादा होता है और इससे बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं?
2: देखिए, सबसे अधिक जो तापमान है
1: जी
2: वो है मई के महीने में होता है। तो ये मई के महीने में तभी परिस्थिति है वो बनता है जब यहाँ पर वर्षा की स्थिति कम हो। दूसरी चीज है कि यदि नमी ना रहे तभी ये घटना नहीं, ये घटना है ज्यादातर गर्मी हो बढ़ता है। अब गर्मी बढ़ने के लिए मुख्य जो फैक्टर रहता है ये है उत्तर पश्चिम से हवाएं आना चाहिए
1: जी।
2: दूसरी चीज है कि ये यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थिति रहना चाहिए जिसके कारण से जो धरती का जो गर्मी है वो ऊपर जाने से रुक जाए। तो ये जो रुकने के रुक जाए तो उस परिस्थिति पर यहाँ पर जो गर्म हवा है या जो हम विकिरण है जो अर्थ से निकल रहा है वो विकिरण है ट्रैप हो जाए, तो उस कंडीशन पर ग्रीष्म लहर या फिर बहुत अधिक तापमान की घटना है वो देखने को मिलता है। तो यदि छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में देखें तो मई के महीने में सबसे ज्यादा होता है
1: जी।
2: दक्षिण में प्रायः, दक्षिण मतलब बस्तर संभाग है चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ की ऊंचाई ज्यादा है इसलिए कभी कभार ही एक आध दिन के लिए ही ग्रीष्म लहर की स्थिति रहता है। और जो सरगुजा संभाग है जो भी पहाड़ी का क्षेत्र है, चूंकि मानसून है वहां लेट से पहुंचता है इसलिए वहां पर प्रायः मई के अंत या जून के महीने में सबसे ज्यादा ग्रीष्म लहर की स्थिति है वो देखने को मिलता है।
1: और मैदानी इलाकों में भी ज्यादा देखने को मिलती होगी
2: चूंकि जो छत्तीसगढ़ का मध्य भाग है जिसमें कि दुर्ग संभाग है, बिलासपुर संभाग है, रायपुर संभाग है, इसमें जो गर्मी के सीजन में है सबसे ज्यादा गर्मी देखने को ही मिलता है चूंकि वहां की ऊंचाई भी कम है
1: जी।
2: तो जो फैक्टर चाहिए तापमान को बढ़ने के लिए उसके लिए अनुकूल रहता है इसलिए ये जो तीनों है संभाग है इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है।
1: अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी सर आपने, हमारे किसानों के हितों को लेकर हमने बहुत सारे प्रश्न किए। और सबसे अंतिम में मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा सर, जैसे कि औद्योगिकरण बहुत हो रहा है और आधुनिकीकरण भी बहुत हो रहा है, लेकिन अभी कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं सर जहाँ पे सुविधाएं नहीं है, जैसे सूचना तंत्र नहीं है, कहीं पे विकसित नहीं हुआ है गाँव, तो उस जगह में ऐसे सावधानियाँ चीज नहीं पहुँच पाती, उन लोग को ज्ञान नहीं हो पाता कि उन लोग मौसम में कैसे बचें, उनको ऐसे कुछ उपाय बताइए सर जो मौसम को जानकर महसूस कर सकें कि आगे कुछ घटना घटने वाला है, तो उससे कैसे बचे सर, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी।
2: देखिए, अभी फिलहाल चूंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी है
1: जी
2: वो काफी विकसित तो किया गया है, जिसमें कि मुख्य रूप से जो प्रयास किया जाता है कि हम मौसम केंद्र में वहां पर एक चेतावनी है वो जारी करते हैं। चेतावनी दो टाइप का रहता है कि एक तो हम 24 घंटे के लिए जारी करते हैं, दूसरा है 3 घंटे में भी हो सकता है, वो 1 घंटे में भी हो सकता है, जहां भी परिस्थितियां हैं कि इस जिले में या इन शहरों में घटना हो सकती है तो उसको चेतावनी को तुरंत ही वो जारी किया जाता है। उसके लिए सबसे हम लोग जो उपयोग करते हैं वो सचेत करके है, तो सचेत में हम लोग डाल देते हैं उसको, उस वार्निंग को स्टेट गवर्नमेंट है उसको फॉरवर्ड करता है जिसको SDMA बोलते हैं, राहत आयुक्त के द्वारा संचालित होता है
1: जी।
2: वो जैसे ही प्रसारित करते हैं तो जहां जिस क्षेत्र में जो घटना होने की है
1: जी,
2: तो वहां के समस्त मोबाइल टावर में कार्यरत सभी मोबाइल में वो चेतावनी है वो जाता है। तो ये तो हो गया सीधा पहुंच, जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है वहां के लिए दिक्कत ही है, बाकी जगह के लिए कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज है कि यदि किसी आदमी के पास है स्मार्टफोन है या जो भी है एंड्रॉइड फोन है, तो उस कंडीशन पर एक जो वज्रपात से सबसे ज्यादा बस्तर संभाग में अकस्मात मृत्यु को देखा गया है, तो इसमें जो है एक ऐप आता है,
1: अच्छा
2: दामिनी करके ऐप है, इसको गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आपको स्थान का रजिस्टर करवाना है, रजिस्टर करवाने के बाद में जैसे ही आप चालू करेंगे तो वहां पर दिखाता है कि आपके चारों तरफ 20 से 40 किलोमीटर तक में कहां कहां पर लाइटनिंग यानी कि बिजली चमक रहा है या गर्जन वाले मेघ बने हुए हैं, जहां पर कि एक्टिव थंडर स्टार में चालू है, तो वो दिखाता है। तो मतलब मुख्य रूप से मेरा कहने का मतलब यह है कि उस क्षेत्र में न जाएं जिस क्षेत्र में एक्टिव जो क्लाउड है जहां पर थंडर हो रहा है उधर हो रहा हो, उससे बच करके रहें। एक तो उससे तीन चार घटनाएं होती हैं, नंबर एक है वज्रपात होने की, नंबर दो है अंधड़ चलने की, नंबर तीन है बहुत तेज बारिश हो सकती है या अंधड़ चल सकता है। तो ये कभी कभी इससे ओलावृष्टि है, चूंकि ये सीजन है ओलावृष्टि का है, तो ओलावृष्टि भी होता है और कभी कभी ओला की साइज है काफी बड़ा हो जाता है, तो आदमी भी घायल हो जाता है या फिर पशु पक्षी वो घायल हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा जो उपाय है वो दामिनी ऐप है, जिसको डाउनलोड करके सावधानी बरत सकते हैं।
1: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे इस प्रोग्राम में समय देने के लिए। ऐसे ही कभी आपसे फिर से मुलाकात होगी सर, तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप सभी को धन्यवाद।
0: ये तो रली भेंट वार्ता आमचो लगे गोटोक और जहाला से आले के बले सुनो।
3: भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
4: खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा।
3: इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य वीपी तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
0: ये तो रली जहला तुम्ही बाट दखासित होती झिटकू दादा गोटो गोट के तो भूलक लो। मांतर दादा दीदी मन तुम असन नहीं सोचा मैं नी भूलक ले से हुन गोट के। तो दादा दीदी मन हमी ज्ञान ध्यान संगी संगी हमी गीत गोविंद बलानु आओ। तो हम चु लगे गोटो के गीत आसे ये गीत चु बोलाए सुना हु कल जुक चुक कल ह और ये गावला सो थाम चो भद्रु कस्य पर हुन चो संगवारी मन आले गीत के सुनो।

तो कायरस या गीत रली भद्रु कसे पर हुन्छ संगवारी मन, और ये मन सुनाते रला हमके कल जुग चुक कल ह, मैं तुमके सांगते रह नहीं आजकल कल जुग जो समय आए कितरो बाढ़ती होए से और कितरो नुकसान होए से, तो हुन्छ ऊपर कायरस या गीत रली। तो दादा दीदी मन देखा हमी कार्यक्रम भित्री समयाने एहू से और समयाने हमके जोग बल लागे से घड़ी देखलो ने मचो जातो समया बल होए से। तो दादा दीदी मन किसान वाणी कार्यक्रम सुन तो सब पाए खेतिहार दादा दीदी बुड़ू बढ़ाए और संग जोहरिया संगवारी मन के मैं झिटकू जातो पूरे करें से खूबे खूबे जुहार।

किसान वाणी, अभी आप ये प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम जोनी उजर में सुनिए लोकनाथ वैष्णव और साथियों के गाए हल्बी नाट गीत।

बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम चोनी उजर में अभी आप सुन रहे थे लोकनाथ वैष्णव और साथियों के गाए हल्बी नाट गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम पीला मन काजीकोट। इसमें सुनिए रानी लक्ष्मीबाई, प्रस्तुति है नम्रता ठाकुर की।

पिलामन का जे गोठ ये कार्यक्रम सुन तो सब पाए पिलामन के मचे बाटले खुबे खुबे माया और लाड़। पिलामन अमी रोजे दिना काई नहाले काई ज्ञान बीती गोठ शिक्षा बीती गोठ नहाले महापुरुष वीर योद्धा मंचो जीवनाचो गोठ कहनी मन के सांगुन से सुनाऊं से ने। तो पिलामन आज मैं तुम चल पूरे अमराय से बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हाँ तो पिलामन चितालास आज मैं काचो जीवना चगोट के अमराय से। हाँ हाँ हाँ हाँ पक्की चितालास पिलामन आज मैं वीर योद्धा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई चो जीवना चो

कहनी के अमरायन से। पीलामन लक्ष्मीबाई चो जन्म 19 नवंबर 1828 के वाराणसी चो गोटोक मराठी परिवार ने होन रली। इमन चो पीला बिरो चो नाव रली मणिकर्णिका और सप्पाई इमन के लाडले मनु बलून हाक देते रहो। पीलामन मणिकर्णिका चो माय चो नाव भागीरथी बाई रली और बाबा चो नाव मोरोपन तांबे रहे। मणिकर्णिका चो माय रीति नीति चो जानकार बुद्धिमान और धर्म चो बाट नहीं हिंड तो बीती रला। पीलामन मणिकर्णिका जे भी 4 बरस चो रहोत और एमन चो माय चो मरनी होन गेली। मणिकर्णिका चो बाबा मोरोपन तांबे गोटोक मराठी रला और मराठा बाजीराव द्वितीय चो दरबार ने गोटोक अधिकारी रला। मणिकर्णिका चो दखा रखा करतो काजे घरे कोनी नी रला। हुनी काजे मनु चो बाबा आपलो संगे पेशवा बाजीराव द्वितीय चो दरबार ने मनु के नेते रला। और मणिकर्णिका पीला बिरा खूबे चंचल और सुंदर रहोत। हुनी काजे सप्पाए लोग हुनमन के छबीली बले बलते रहोत। पीलामन मणिकर्णिका शिक्षा ने बले काचे ले पाछे नीरला। इमन चो पढ़े लिखई घरे चिहोली और पढ़े लिखई संगे संगे इमन के शास्त्र ज्ञान जसन तलवारबाजी घुड़सवारी मलखम और रणनीति बल्लो ने युद्ध करतो नीति नियम के बले सिखाउन रला। और ये मन ये सप्पाए शास्त्र ज्ञान ने खूबे जानकार रहो। पीलामन फिर मणिकर्णिका खिंडिक बड़े बाड़ला। बल्लो ने मणिकर्णिका 14 बरख चो रला ते बे मन चो बिया झांसी चो महाराजा गंगाधर राव संगे होली। और ते बे मणिकर्णिका चनाव लक्ष्मीबाई संगाला। सितंबर 1851 ने रानी लक्ष्मीबाई के गोटोक बेटा होलो मांतर 4 महीना जीव रलो और मरुन गेलो। तेबे सन 1853 ने राजा गंगाधर राव जो स्वास्थ्य नसुक मुरियाली और राजा खूबे बीमार रहुक मुरियाला। तेबे हुनमन के सलाह दिला कि तुम्ही गोटोक पीला के गोद धरा बलून। फिर राजा और रानी सोर होला और दोनों सोर होन भाती गोटोक लेका पीला के गोद धरला और हुन चो नाव दामोदर राव संगाला। फिर तीनों आप लोग प्रजा संगे हरिक ने रहोत। फिर राजा गंगाधर राव चो स्वास्थ्य फिर नसुक मुरियाली और राजा गंगाधर राव चो 21 नवंबर 1853 ने हुनमन मरुन गेला। तेबे अंग्रेज मन आप लोग राज्य हड़प तो नीति ले बालक दामोदर राव चो नाव ने अदालत ने मुकदमा करला और मुकदमा बलो ने पेशी होली अंग्रेज मन और रानी लक्ष्मीबाई चो मंजी। रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेज मन पेशी ने खूबे बलाबली होला मांतर ए पेशी के पाछे खारिज करुन दिला। फिर अंग्रेज अधिकारी मन राज्य चो खजाना के जपत करला और रानी चो मनुक चो धरलो कर्जा के सालाना खर्चा ले काटतो काजे आदेश निकराला। ऐ लागुन पीलामन रानी लक्ष्मीबाई झांसी चो किला के छाड़ून भाती झांसी चो रानी महल ने गेला और होता रहुक मुरियाला। मांतर रानी लक्ष्मीबाई हिम्मत निहारला और हर हाल ने झांसी चो रखिया करतो काजे निर्णय धरला। फिर पीलामन सन 1857 ने झांसी चो लड़ई देश चो गोटोक प्रमुख लड़ई बनली और रानी लक्ष्मीबाई झांसी चो सुरक्षा काजे गोटोक स्वयं सेवक सेना चो गठन करुक मुरियाला और ये सेना ने मेहरार मन के बले भर्ती करला और युद्ध करतो काजे मेहरार मन के प्रशिक्षण दिला और दूसर लोग मन बले ये संग्राम चो सहायता करला। पीलामन झलकारी बाई नाव चो गोटोक मेहरार रली। झलकारी बाई और रानी लक्ष्मी बाई चो थमना गोट की असन दखा दे। हुनी काजे झलकारी बाई के आप लो सेना चो मुखिया बनाला। फिर 1857 के सितंबर और अक्टूबर महीना ने पड़ोसी बल्लो ने लगे चो राज्य ओरछा और दतिया चो राजा मन झांसी चो ऊपरे आक्रमण करुन दिला। मांतर पीलामन रानी लक्ष्मी बाई एमन के हराउन दिला। फिर 1858 ने जनवरी महीना ने अंग्रेज सेना मन बल्लो ने अंग्रेज मन झांसी चो बाटे एक मुरियाला और मार्च महीना ने झांसी शहर के सप्पाए बाटले घेरला और 2 हफ्ता लड़ाई चलली और ये लड़ाई ने अंग्रेज मन शहर के कब्जा करला। मांतर रानी लक्ष्मीबाई हार नहीं मानला और पूरा वीरता ले बल्ले बहादुरी ले झांसी चो रखिया करला और रानी लक्ष्मीबाई आप लो नानी असन सेना बल्लो ने खिंडिक महा सेना संगे बल्ले खूबे बहादुरी ले अंग्रेज मन संगे लड़ाई लड़ला
और लड़ाई ने आपलो बहादुरी चो परिचय दिला। पिला मन रानी लक्ष्मीबाई आपलो पाटकुती दामोदर राव के तुआल संगे बांधुन भाती घोड़ा ने बसुन एकलच अंग्रेज मन संगे लड़ाई लड़ते रहला। और ये लड़ाई सर तो महानी दखा देते रहे। लड़ाई खूब्बे दिन तक चलते चिरली। तेबे फिर सरदार मन रानी के समझाला और ये लड़ाई भूमि ले जातो काजे विनती करला। तेबे रानी हुनथान ले निकरुन भाती कालपी नगर अमरला और हुता जाऊन नाना साहब और तात्या टोपे संगे भेंट होला और संगे मिसुन गोड बात करुन विचार करला। रानी चो वीरता और बहादुरी के अंग्रेज मन दखला और बल्ला ये मन तो हार नहीं माने। बलते रानी चो पाट पाट गेला। रानी चो घोड़ा खूब्बे घायल हो रहे। हुनी काजे हुन घोड़ा बाचुक लाए नी सक और मरुन गेलो। फिर रानी चो घोड़ा मरतो के रानी हार नहीं मान ली। तेबे बले हुन लड़ाई के लड़ ली। तात्या टोपे संगे मिसुन रानी लक्ष्मीबाई गोटोक सेना बनाला और ग्वालियर चो सैनिक मन नाना साहब सहागढ़ चो राजा वानपुर चो राजा सप्पाय चो सहायता ले ग्वालियर चो गोटोक किला के जीतला। फिर बाजीराव प्रथम चो वंश चो अली बहादुर द्वितीय बले रानी लक्ष्मीबाई चो संग दिला और रानी लक्ष्मीबाई अली बहादुर द्वितीय के राखी पठाउन रला। हुनी काजे अली बहादुर द्वितीय बले रानी लक्ष्मीबाई के ए लड़ाई ने लड़तो काजे संग दिला। रानी लक्ष्मीबाई साहसी बहादुर और निडर मेहरा रला। एमन आपलो झांसी के बचातो काजे अंग्रेज मन संगे युद्ध के फेर आगे बढ़ाला और रानी लक्ष्मीबाई आपलो बहादुरी दिखाउन ये युद्ध ने लड़ाई लड़ला। और फिर पिलामन 18 जून 1858 के ग्वालियर चो सरासरी युद्ध होली और हुन दिन रानी लक्ष्मीबाई आपलो सेना के बचातो काजे पूरे रला और लड़ाई करते करते रानी लक्ष्मीबाई घायल होन गेला और दखु दखु रानी लक्ष्मीबाई चो जीव जाते गेली और रानी आपलो वीर गति के प्राप्त करला। बल्लू ने पिलामन रानी लक्ष्मीबाई देश काजे शहीद होन गेला। पिलामन रानी लक्ष्मीबाई आपलो देश काजे इत्रो बहादुरी और वीरता ले लड़ाई लड़ला ने और नानी बेराले ची एमन बुद्धिमान बहादुर और खूब्बे समझदार रला। तो पिलामन असनी आपलो जीवन ने काई करा नी करा मानतर आपलो कर्तव्य चो पालन। बल्लो ने रोजे स्कूल जातो राय अच्छा अच्छा ज्ञान के सीखतो राय और कोनी बले बुता हो उनके ईमानदारी ले पूरा करतो राय और आपलो आया बाबा चो गोट के सुनतो राय। हुन मन आया बाबा मन आम चो आपलो पीला मन चो भले ही काजे ची काई बले गोट के बलुआ थुनी काजे घर चो बड़े लोग चो गोट के सुनतो राय और पीला मन जीवना ने आम के काय होतो राय निडर होतो राय। बल्लो ने आमी जब तक काजे ले डर हुआ तो कोनी बले काम बुता के आमी नी करूक सकू। हुनी काजे आम के आपलो जीवना ने निडर बनतो राय और हर काम ने पूरे तो रहते भी तो आप लोग जीवना के नगद बनाओ सकुआ आय कसन। हाँ तो पीला मन गोट संगे संगे गीत बले सुन लो ने हरिक लागू आय कसन। तो आले दाय गोटो गीत के सुनू।

तो पिलामन एक गीत तो सुन लू नी और गीत संगे संगे मचो जातो समय बल होली तो अदाय दिया स्म के बिदा जातो पूरे पिलामन का जे गोट ए कार्यक्रम सुन तो सप्पाय पिलामन के मचो बाटले खूब बेखुबे मया।

विलमन का जिगोट। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रानी लक्ष्मीबाई, प्रस्तुति थी नम्रता ठाकुर की। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार संध्या हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा, दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
2: Realize the full potential of our time.
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरूआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
2: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारकोदुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारकोदुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लैवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लैवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लैवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लैवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लैवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
4: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
5: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण

0: जमीन के वचन बारी आप लोग तो आजीविका बड़ा बोल सको था और आप लोग जल जंगल जमीन के सुरक्षित बल कर सको। उन 2018 ले हमी जो कानून बनली से भारत देश ने कि वन अधिकार कानून बलुआ जो 2006 ने बनली उनचो जब पालन होली लेकिन गांव गांव तक लोग के पता ही नहीं रहे कि उन कानून चो माध्यम ने बोले गांव चो लोग के पूरा अधिकार गांव की मिरुआई बोलते।
1: अच्छा
0: तो 2018 लाम के एचो बारे में पता चल लिया और तब ले हमी ये प्रक्रिया के गांव गांव तक जागरूक करते जाऊं से।
1: अच्छा हाँ हाँ तो बोले ने ये चो काजे बोले कहीं असन तुम चो जवान ले काम चो कहीं समूह बना ला सा का कसन है।
0: हाँ एक जगह सन बस्तर जिला ने कई असन हम चो लेखा मन चो एक आदिवासी युवा वर्ग चो लेखा मन एक मिशन बारी एक समाज चो माध्यम ने एक जिला स्तरीय युवा प्रभाग टीम आसे जो चो माध्यम ने हमी गांव गांव तक जाऊन चो जागरूकता चो काम करो से।
1: अच्छा हाँ हाँ
0: और उन संग संग बोले एक समिति बल बना लो से जो आदिवासी बहुउद्देश्य सहकारी समिति उन चो माध्यम ले बोले जाऊन बारी।
1: अच्छा
0: एक एक काम
1: कर। अच्छा तो जसन की तुम बल्ले से ये वंधन जो ये बचा तो काजे बल्ले ने जो अधिनियम बल बनली से सरकार बाटले एचो जो पालन आए बोलू भे ग्राम पंचायत ने अधिकार दिला तो काजे बोले ने कसन काम कर सास काय करूक लाय पड़े से।
0: सबले आगे दादा एक छो एता आमी ये काम करूं से सबले पहले जाऊं से जसन की उन्हीं कानून चो माध्यम ने धरुन भरी एक गांव स्तर ने जाऊं से और वो लोग के सबसे पहले जोन उन गांव लोक संघ है जोन कानून बन तो मेरा कानून ने संसद ने ही बल्ला कि नहीं गांव लोक संघ आमी खूब बड़े ऐतिहासिक अन्याय कर लू से उन अन्याय के दूर कर तो काजे जब संसद ने पास होली कि वन अधिकार कानून 2006 तो उन्हीं माध्यम के धरुन जाऊं और गांव लोग के समझाऊ कि ये जो जल जंगल जमीन और तुम चो गांव चो जो संस्कृति रीति रिवाज गांव चो व्यवस्था तुम ची आए ये बोलते पहला जाऊन बारी हम समझाऊ तो तब लागू है कि गांव चो लोग के नहीं। हाँ असन तो हम के कोनी आगे नहीं सांगू रहा लेकिन हम यू नहीं समझते रहो कि सरकार चाहे बोलते तब लोग के लागू है कि अपने आपने विश्वास हुआ है उन गांव लोग के कि नहीं हाँ असन हम चो आए तो नहीं और गांव लोग के बोल लगे ये तो हम गांव जब ले बोसली तब ले आसे जल जंगल जमीन और गांव चो रीति रिवाज व्यवस्था तब ले आसे तब लोग के बोल लगू है हम यू नहीं सोचते रहो सरकार चो है बोलते तो तब हम सांगो तो सांगो थुन मन के बहुत मजबूत लगो है विश्वास लगो है तब उन मन चालू करुआत कि नहीं ये कानून चो माध्यम ले हमी गांव चो एक सामुदायिक वन संसाधन जो ना अधिकार है हमी धरून दे तब उन मन बोलुआ तब हम उन मन के फिर और प्रक्रिया कि ये कसन कर थ्राए ये सांगते जाऊँ।
1: अच्छा हाँ हाँ तो संतु जसन की तो बल्लीस 2018 ले एक काम के मोर कर लास तो अब तक बल्ले ने कितलो असन पंचायत ने एक काम
0: ये तक आमन मंच कर लो भी थी दादा कि 2018 ले तक 60 गांव करीबन आमी सामुदायिक अधिकार दिलालू।
1: अच्छा
0: और 100 गांव तक अमर लू से कि ये चो जागरूकता करतोर तो उन 60 गांव ने पत्रक अधिकार दिलालू उन लोग एबे तक 15 गांव तक लोग एबे प्रबंध प्रक्रिया नागे बढ़ला से।
1: अच्छा
0: उनचो प्रबंधन कर सो जहाँ जोन गांव 60 गांव के अलावा 15 गांव ने जोन अधिकार मिलिस उन गांव लोग अब जल जंगल जमीन और गांव चो रीति रीति व्यवस्था के बचा तो काजे एक गांव ने ग्राम सभा बसुन उन मन प्रबंधन चो नियम और उन गांव ने खाता खोल तो ग्राम सभा नाव ने खाता खोल तो प्रक्रिया तक अमर ला।
1: अच्छा हाँ हाँ तो जसन बल्ले से 60 ठान मतलब पंचायत ने होली से सामुदायिक वन धन जो कर्तव्य थी काजे ये चुकाजे बल्ले ने काय प्रक्रिया हो काय करूक लाय पड़े से।
0: सबले पहले दादा ये चुकाजे जसन एमन के काय शुरू ले जब हमी दावा प्रक्रिया कर तो काजे सहयोग कर लू कि सबले पहले ग्राम सभा बस्तर उन मन के सीखा लू कि ग्राम सभा बस्तर सबले आगे तम चो बस्तर संभाग ने तो ग्राम सभा के पंचायत ले जोड़न दी बात लेकिन पंचायत एक राज्य सरकार या सरकार चो एक एजेंसी है। ग्राम सभा जो ना है कि गांव चो खुद चो एक अपने आपने खुद शासन स्वशासन उन करते हुए थे ग्राम सभा तो हुन चीज की हम सबले पहले हम ये मन के गाँव लोग के समझाते गेलू कि नहीं ये तुम चो गाँव चो तुम ये अधिकार है तुम ही खुद ले एक शासन स्वशासन करू सका नियम बना सका तब उन मन के लागली। हाँ बोले ग्राम सभा ने बोसुन उन मन सबसे पहले प्रस्ताव पास करुआ की ग्राम सभा की नहीं हाँ हम चो गांव ने जब सामुदायिक अधिकार आम के मिरली तो अब आम मने चौथा नियम बना का जे हमें ग्राम सभा बसो सबले पहले
1: अच्छा।
0: सबले पहले नियम बना तो तैयारी करूआ कि गाँव ने आम सबले पहले लकड़ी का कसन काटुक नहीं देवा ऊंचो पायल ऊंचो काजे आई गामी कसन धरुक नहीं देवा ऊंचो काजे नियम उनके रोकथाम कसन करवा ऊंचो काजे नियम उनसे पहले फिर शिकार बल हुआ है ऊंचो काज बल नियम बनवा कि आमी ये शिकार नहीं हो वन्य जीव बाचोत ऊंचो काज बल गाँव ली स्तर ने नियम बनवा और ऊंचो बाद ने फिर पानी ने बोले कई चीज चो नुकसान नहीं हो
1: अच्छा।
0: चाहे कई लोग मछली मार तो काज बोले दवाई बल डालुआ
1: हाँ।
0: बाहरी लोग नहीं हो तो उनचो काज बल नियम बनवा तो असनी कई प्रकार चो वन संसाधन चो एक नियम बनवा गाँव चो लोग ग्राम सभा बसुन उन नियम के फिर ले दूसरा ग्राम सभा बसुन उनके प्रस्ताव ने पारित करवा कि आमी आज ही ले आमचो गाँव चो नियम ये बना लू से जो ये नियम के पूरे गाँव चो लोग मानुक पड़े और उनचो संग संगे सीमावर्ती जित लोग गाँव लोग उन लोग के बोले ये आमचो गाँव चो नियम के पालन करुक पड़े
1: अच्छा।
0: ये नियम चो प्रस्ताव बनवा
1: अच्छा।
0: तो पहला ये करुआ तो उनके बाद अब नियम तो बन ली नहीं ना अब आमन मन के काया है वन संसाधन जो वनोपज चो है खरीदी बिक्री उनका एक खरीदी बिक्री हम एक गांव ने ग्राम सभा चो एक समूह या फिर एक गांव चो माध्यम ने इकट्ठा बिकवा क्योंकि अभी तक काय है बिचोलिया औने पौने भाव ने धरे सोत तो हूं चो काज बल ग्राम सभा ने बोसुआत और उन चुकाज बोला हम संग की नहीं असन असन करा बोलते उन मन फिर बोसुन बारी विचार करून एक ग्राम सभा नाव ने खाता खोल तो काज तय हुआ क्योंकि कानून ने आसे धारा चार ने सीधा सीधा चारिकी ने समिति बनान ग्राम सभा नाव ने खाता खोल तर
1: अच्छा।
0: तो हुनके बोला हमी सांग उलू तो हुनके बोले कर ला कि ग्राम सभा नाव ने खाता खोल ला जोन खाता खोल ला तो उनके बाद खाता खोलू नियम बल बन ली खाता बोले तो उनके बाद मन संचालित का जे बोले एक ग्राम सभा बस तो नियम बनवा
1: अच्छा।
0: कि आम के ग्राम सभा कितलो दिन ने बस तो रहे तो कई जगह अमन मन दखवा कि 10-15 गांव ने उन मन का एक ग्राम सभा नियम बना ला से कि आम के महीना दिन ने एक हार ग्राम सभा बस्तर अनिवार्य है
1: अच्छा।
0: तो महीना दिन हम काय काय काम होली से और आगे आम के काय काम करते रहे
1: अच्छा।
0: तो लिखित रूप ने उनमन फिर रजिस्टर बोले संधारण करून पूरा सही चीज करून उमन संगात जवात और फिर उन ग्राम सभा बैठ तो काज बल नियम बनाते गेलास
1: अच्छा।
0: तो हुनके बोला मी सामंत गेलो कि यहाँ तू मन मन करतो रहा असन करतो रहा बोलते तो ये बोले हम चो ये भी तक चो प्रक्रिया ये चल ली
1: अच्छा अच्छा। संतु जसन की थी 2018 ले लगभग एदाएं चो 5 साल असन होली
0: हाँ, हो
1: तो बोलो भी काय प्रभाव दखा दे से ये चो
0: ये भी तक चो दादा आमन मन बल देखो और तुमन मन बल सफाई जाऊन देखो दखा से कि मैं कुछ असन गांव के सांगुक सके जहां जो सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मिरलो गांव मिरलो बाजुन गांव जहां आगे बढ़न बारी सामुदायिक वन संसाधन के प्रबंधन और आपलो हिसाब ने उन मन राखा जागा करुन बारी कर सो तो हुन असन गांव मन प्रभाव देखुक मिरली से जसन ये भी देखुआ धुड़मा रास जाऊन देखुआ हुता आप लोग गांव ने ग्राम सभा ही सशक्त करून बारे उन मन नियम बल बनान खाता बल खोलून एक आजीविका नागे बढ़ लीस
1: अच्छा।
0: आजीविका नागे बढ़ लीस कसन बल एक पानी आस नाला जो तीरथगढ़ ले घसरू है पानी नाला आसे उन मन पानी के बल सुरक्षित करून साफ सुथरा करून उता एक बांस चो हमी बोलवा डोंगा बोलवा काया किंग असन नाम दिला से उन मन बनान हूं ताले हुन मन आप लोग आजीविका बल कमावा
1: अच्छा।
0: हाँ तो बाहरी लोग खूब विदेश ले बोले सोत खूब बड़े बड़े लोग जाए सोत तो हूँ ले जाऊन देखो बोल सका कि आपन मन अगर 30-35 घर आसे तो 30-35 घर लोग के सबके रोजगार मिले
1: अच्छा।
0: आगे हम हूँ देखते रहो हूं गाँव लोग सांगते रहो तो हम आंध्रा उन बाटे रोजी जाते लेकिन जब ले आम के अधिकार पत्रक मिरली तब ले आम चो गांव चो आजीविका बोला छोले और गांव चो नीति नियम जो ना है व्यवस्था है ठीक ठाक आसे भी तो ये आम के उता देखो मिरली उसनी प्रकार चो तीरिया गांव है एक माचकोट जंगल ने एरियान पूरे उड़ीसा सीमा ने हुता बोल उसनी आए हुता बोल उसनी पानी के ही सुरक्षित कर हनुमान बोले अच्छा ले आजीविका के बढ़ावा दे सो
1: अच्छा।
0: जंगल के राखत राखा कर सो थी उनके संगे संगे एक आप लोग गांव चो आजीविका के युवा वर्ग ने बोले समझे ऐसे कि नहीं अब आमन मन की जंगल के बचान जंगल ले आप लोग आजीविका बल बढ़ात रहे और चले कमाई बले हो उन संग बल ये चले से अभी तक तो दखा दिली
1: अच्छा। तो संतु देखा तुम चो बंधन जो सामुदायिक अभियान ये जो काम है बोले पूरे बस्तर संभाग ने बोले अच्छा जसन के अभी तो सांगलीस की कई गांव में ने पर्यटन

0: क्षेत्रन बदले हुन मनके रोजगार चो अवसर मिले से मानतर सरासरी ने बले ने कोनी बले पंचायत के बले ने सामुदायिक वन धन जोन अधिनियम चो अंतर्गत ये बना तो काजे तुम चो बाटले कहीं बलुक चाय रेडियो चो माध्यम ले
1: अगर कोनी गांव अगर बनाक चाय से और ये कानून चो माध्यम ने कि एक गांव के सामुदायिक वन संसाधन अधिकार धरुक चाय से तो आमन मन बाटले हर तरीके ले सहयोग रह दे उन्हीं आमी बोलुक चाहूँ से कि गांव ने गांव चो लोग एक जागरूक होत आप लोग गांव के ग्राम सभा के जागरूक करो क्योंकि जल जंगल जमीन जो ना है अपन मन गांव बिताचो है न कि कोनी सरकार और शासन प्रशासन क्योंकि गांव ही आए जो जब ले गांव बोसली से तब ले आप लोग जल जंगल जमीन के आप लोग संस्कृति के गांव चो व्यवस्था के गांव बीता वचन संगालास उन्हीं का जो कानून बल बले से कि आपन गांव बीता मन ये अधिकार के धरोत और आपन मन जितलो ज्यादा अच्छा लोग सके ये अधिकार के धरून प्रबंधन संरक्षण करुन बारी हुताल आप लोग आजीविका बल बढ़ावत और कई अच्छा चीज चाहे पर्यटन हो चाहे पानी ले हो चाहे आप लोग खान पान के बले हो ये बे दखवा दखते जाऊं से कि खान पान के बले हम आदिवासी चे जोन व्यवस्था है खान पान है उनकी अब बाहरी चे लोग बले अपना चाहत क्योंकि उन मन समझ ला कि आदिवासी जीवन ने ही पूरा मानव जीवन
0: आसे
1: उन्हीं का जे एवे बोले कई जगह दखवा कि जहां मंडिया पे जाए धान कुटलो चाउर आए चाहे कोदा कुटकी आए चाहे हरवादार हो कई जोन चीज आए उन बोले बाहरी लोग बोले अब उनके अपना चार तो ये अधिकार आए उन्हीं बोले कि जितलो तुम मन चो जीवन यापन बला से जीवन यापन जीवन देखी जीवित तो बोला हुन बोल तुम चो अधिकार ही के जितलो ज्यादा बचक सका से उतलो ज्यादा खूब बड़े गांव समृद्ध रहे थे और गांव सुरक्षित बने तो वन अधिकार कानून उन्हीं आए उन खाली जंगल च बात नहीं करे से ना जमीन च बात नहीं करे से खाली जल च बात नहीं पूरे गांव च व्यवस्था के मजबूत कर तो काज बात करे से यही काज मैं पूरे गांव लोग के यही जानू संगुक चाहे दे कि जितलो ज्यादा हो सके ये वन अधिकार कानून चो माध्यम ले आप लोग गांव चो जितलो बल सामुदायिक अधिकार है उनके बना तो प्रयास करो और ग्राम सभा ने बोसुन गांव के कसन चलात रहे गांव के कसन प्रबंधन करत रहे ये चो बोले नियम बनान बारी एक संचालित आप लो तरीका करो तब कहीं ना कहीं ग्राम सभा के पांच अनुसूचित क्षेत्र ने शासन सौ शासन चो बात करे उन्हीं तेवे दखा दे इसे।

आम चौरान आम चुचियोना। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संतुराम मौर्य से भेंट वार्ता। भेंट कर रहे थे बलवीर सिंह कच्च। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 9:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में साहित्य भारती हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। हिंदी पत्रकारिता अपने 200 वर्ष पूरे कर रही है। उन महिला पत्रकारों को याद करना जरूरी है जिन्होंने पर्दे के पीछे नहीं बल्कि मोर्चे पर खड़े होकर कलम उठाया। रोशनी गुलाबी रोशनाई की आज का हमारा संपादकीय इसी यात्रा को सलाम करता है। आज से लगभग 200 साल पहले 30 मई 1826 को कलकत्ता के एक तंग गली में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में उदंत मार्तंड का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। लेकिन इस सूर्योदय की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम उन महिलाओं के योगदान को स्वीकार नहीं करते जिन्होंने पितृसत्तात्मक समाज की बेड़ियों को तोड़कर कलम उठाया, पत्रिकाएं निकाली और हिंदी पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया। भारत की पहली महिला पत्रकार के रूप में हेमंत कुमारी देवी चौधरानी का नाम अंकित है। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र के कलम का चर्चा चारों ओर था, हेमंत कुमारी देवी उनकी समकालीन लेखिका और संपादिका के रूप में सक्रिय थी। सन 1888 में उन्होंने सुगृहिणी पत्रिका का संपादन किया। सन 1909 में प्रयाग से स्त्री दर्पण पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसकी संपादिका थी रामेश्वरी देवी नेहरू और प्रबंधक थी कमला देवी नेहरू। ये महज एक पत्रिका नहीं थी, भारतीय नारी की सामूहिक चेतना का प्रथम मुद्रित स्वर था। इस पत्रिका ने बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय स्थिति, स्त्री शिक्षा के अभाव और पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को अपने पैने कलम का निशाना बनाया। आधुनिक हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम यदि केवल कविता तक सीमित रखा जाए तो ये उनके साथ अन्याय होगा। फ्रांसीसी लेखिका सिमोन दी बोवार की प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स आने से कई वर्ष पहले ही महादेवी वर्मा ने 1930 के दशक में चांद जैसी पत्रिकाओं के लिए महिलाओं के उत्पीड़न पर शक्तिशाली निबंधों की एक श्रृंखला लिखी थी। ये निबंध केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं थे, सामाजिक पत्रकारिता के उत्कृष्ट उदाहरण भी थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हिंदी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय चेतना की मशाल थामी। इस मशाल को थामने में महिला पत्रकारों की मुट्ठियां भी लगी थीं। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी कविता झांसी की रानी आज भी रक्त में उबाल लाती है, उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में अपनी लेखनी से स्वाधीनता की अग्नि को भड़काया। इसी श्रृंखला में प्रताप, अभ्युदय और हिंदुस्तान जैसे पत्रों में महिला लेखिकाओं की सक्रिय भागीदारी रही। स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्रकारिता के विस्तार के साथ महिला पत्रकारों की भूमिका भी बदली। प्रभा दत्त जैसी संपादक ने ये साबित किया कि हिंदी के बड़े समाचार पत्र का नेतृत्व एक महिला भी उतनी ही सक्षमता से कर सकती है या शायद बेहतर कर सकती है। तब से लेकर आज तक प्रखर पत्रकारिता के माध्यम से बढ़कर एक महिला पत्रकार स्वयं को मुख्य धारा की पत्रकारिता में स्थापित करती आ रही है, जनता के हक की लड़ाई लड़ती आ रही हैं। आज के डिजिटल युग में महिला पत्रकारों की एक नई पीढ़ी सामने आई है। वेब पोर्टल, यूट्यूब पत्रकारिता, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर हजारों महिलाएं उन मुद्दों को उठा रही हैं, जिन्हें मुख्य धारा की पत्रकारिता अनदेखा करती है। ग्रामीण महिला पत्रकारिता में खबर लहरिया जैसे प्रयोग ये सिद्ध करते हैं कि नारी का कलम अब केवल शहर के संपादकीय कक्ष तक सीमित नहीं है। लेकिन श्रोताओं, ये संपादकीय केवल उपलब्धियों का गान नहीं है, ये एक ईमानदार आत्म परीक्षण भी है। 200 सालों के उत्सव के बीच संख्याओं का उपलब्ध आंकड़ा असहज करता है। क्या ये उन महिलाओं की विरासत के साथ न्याय है जिन्होंने लगभग 200 साल पहले समाज की परवाह किए बिना कलम उठाया था? आकाशवाणी, जिसकी आवाज ने दशकों से इस देश के घर घर को जोड़ा है, गांव की चौपाल से लेकर शहर के दफ्तर तक रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं, एक रिश्ता रहा है। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस अनूठी यात्रा पर आज अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली।
1: मैं पिछले 40 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूं, ऑल इंडिया रेडियो में भी काफी आता रहा हूं। जो पिछले 90 वर्षों का ब्रॉडकास्टिंग का इतिहास है, खास करके जो हिंदी, उर्दू और इलाकाई जबानें हैं उनमें ब्रॉडकास्टिंग का, उसका बड़ा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और आजादी के वक्त से लेकर और अब तक, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत देश की आजादी से पहले हो गई थी, देश के नवनिर्माण से लेकर के आज तक 80 बरस हो गए हैं देश की आजादी को भी, तो उसमें ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं समझता हूं कि बहुत ही कारगर योगदान है। न सिर्फ ये कि उसने लोगों को खबरें पहुंचाने का काम किया है, बल्कि उन्हें एजुकेट करने का और उनका एंटरटेनमेंट करने का भी काम किया है। ये एक बहुत बड़ा रोल है। और चूंकि एक जमाना था कि जब सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो ही हुआ करता था, 90 तक मैं समझता हूं कि ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए रहा है और उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।
0: वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली, उनके अनुभव, उनकी स्मृतियां और उनका विश्लेषण निश्चित ही हमें रेडियो की उस आत्मा तक ले जाएगा जो आज भी धड़क रही है। सच में जिस माध्यम ने आजादी की आवाज को सहेजा, देश की भावनाओं को बोली दी, वो आकाशवाणी को यंत्र नहीं, एक जीवंत परंपरा है।

0: साहित्य जब समाज से कट जाता है तो केवल शब्दों का खेल बन जाता है, लेकिन जब साहित्य की जड़ें जमीन से जुड़ी हों तो वो एक नया अर्थ पा लेता है। आज की हमारी अगली प्रस्तुति में हम एक ऐसी ही जरूरी बातचीत लेकर आए हैं वरिष्ठ साहित्यकार पंकज बिष्ट के साथ। उनसे बातचीत कर रहे हैं प्राध्यापक और साहित्यकर्मी विशाल पांडे। तो सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, साहित्य समाज और सरोकार।
1: पंकज बिष्ट अपनी कहानियों और संपादन के लिए हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। उनकी कहानियां 15x25, बच्चे गवाह नहीं हो सकते, उपन्यास लेकिन दरवाजा, उस चिड़िया का नाम, पंख वाली नाव, गोलू और भोलू से हिंदी साहित्य हम सभी समृद्ध हुए। मैं जानना चाहूंगा पंकज जी कि लेखन की ओर आपका पहला झुकाव कब और कैसे उत्पन्न हुआ?
2: देखिए, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि मैं ये नहीं मान के चलता था कि मैं कहानीकार बनूंगा या उपन्यासकार बनूंगा, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं लिखने पढ़ने का काम चुनूं और करूं। बहुत संभव है कि अगर मैं पत्रकारिता वगैरह में नहीं आता तो हो सकता था मैं टीचिंग के काम में चला जाता, अध्यापन में जाता, तो जो कि उतना ही बहुत बड़ा होता। क्योंकि मैं लिखने के प्रति मेरा जो अनुराग था वो ज्यादा था, तो मैंने जब लिखना शुरू किया और वो इधर उधर उसके लिए कोशिश करी तो मुझको ये रास्ते ज्यादा बेहतर दिखाई देगा। तो उसमें ये हुआ कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ एक जर्नलिज्म का स्कूल खुला तो उसमें एडमिशन लिया, उसमें मैंने पढ़ा। वो यहाँ के जर्नलिज्म के भारत में स्कूलों में शुरुआती था, वो बाद में खत्म हो गया। उससे मुझे मेरा एक्सपोजर हुआ और मैं डेली वगैरह में जाने लगा। और जैसे मैं हिंदी में लिखना नोवेल टाइम्स विशेषकर, उस दौरान के एडिटर उनके, इनका नाम अक्षय कुमार जैन था, वो भी जुड़े हुए थे, तो वहां मुझको एंट्री मिल गई। यानी कि मेरे लेख उन्होंने कहा, वो एडिटर वगैरह देख लेते थे। वह फिर वहां दो एडिटर रहते थे, उनमें एक महिला थी, रविवार संस्करण देखती थी, तो वो बेचारी भली भली औरत थी। तो वो मुझसे फिर धीरे धीरे वो जब काम करवाने लगी तो मैं अभी अच्छा काम कर, रिलेटिवली उनको ठीक लगने लगा। तो उससे मैं मुझे लिखने की और चीजों को समझने की और विषय कैसे चुनना चाहिए इस बात की मेरी समझ थोड़ी बनी, तो ये मुझको फायदा हुआ। ये बाद में अपने कैरियर को उसी तरफ बढ़ाने में मुझे उसका मदद मिली।
1: पंकज जी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आपकी पहली कहानी 1967 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी। क्या आपको याद है कि पहली बार अपनी किसी रचना को प्रकाशित देखकर आपने क्या अनुभव किया था?
2: वो जो एक कहानी छपी उसका अनुभव जो है बड़ा बहुत मजेदार है। हुआ ये था कि मैंने उन दिनों एक लेखिका होती थी शची रानी गुल्टू, उन्होंने मेरे ख्याल से आर्ट वर्ल्ड पर बहुत लिखा है, उनका बेटा वो साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम करता था, उससे कहीं मेरी मुलाकात हो गई, बातचीत। यंग था वो मेरी जैसा, तो मैं थोड़ा छोटा था, तो उसने बातचीत में कहा तुम क्या करते हो? मैंने कहा लिखने के। उसने कहा यार तुम लिख, हमारे यहाँ दिखाओ तुम क्या कहानी लिख, तो मैं देखूं तुम्हारी कहानी। तो मैं डर के मारे में दिखा लिया, तो बड़ा बड़ा मैगजीन है, कौन छापेगा क्या करेगा। तो मैंने लिखा हुआ था उसको देखने को दे दी। उसने दी, उसने कहा तुम्हारी कहानी ठीक ठाक है, तुम ऐसा करो हमारे एडिटर को दो, मैं देता हूँ। तो उन दोनों एडिटर कोई सज्जन थे, अब वो याद नहीं आ रहा, पहले भटनागर जी हुआ करते थे, उनके बाद कोई थे, तो वो उन्होंने वो देखी और उन्होंने मुझे पत्र लिखा। जिंदगी में पहली बार आप हैं और कोई संपादक आपको पत्र लिख रहा है कि आप आगे मिलिए और मैं आपसे चर्चा करने। मैं बड़ा उत्साहित और रोमांचित कि भाई ये क्या कहने वाले। मैं वहां गया, उन्होंने कहानी की बड़ी तारीफ करी और उसके बाद मुझसे कहा कि देखिए आपकी कहानी इतनी अच्छी है कि हम अपने पत्र का हमें हमारे पाठकों के जिससे ऊपर की है, तो इसलिए हम नहीं छापेंगे। तो मैं खैर कहानी लेकर वापस आ गया। सौभाग्य से वो एडिटर जो है बदल गया और वहां मनोहर श्याम जोशी आए। हाँ, उसने मुझसे कहा अब दे दो, फिर से देते हैं। तो मैंने उसको दिया, वही फॉरवर्ड कर देता था। तो फिर मुझे वहां से लेटर आया, मिलने आओ। यार फिर ये क्या तमाशा है। पहली बार तो मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे बुलाया और कहानी छापी नहीं और अब ये फिर कुछ ऐसे ही होगा। फिर मैं मरे मन से वहां पहुंचा, पहली बार मैं मनोहर श्याम जोशी से मिला। तो जोशी बोले तुम यार ये क्या कहानी लिखते हो, थोड़ा सा और जो जिंदगी चीजें हैं उसको देखो, ये क्या रोमांटिक कहानी वानी लिख रहे हो तुम। अब मैं समझ गया कि कहानी छापेंगे नहीं। जाते हुए बोले मैं ये तुम्हारी कहानी तो छाप रहा हूं, लेकिन तुम जो है ना और कुछ चीजें देखो। तो एक तरह से मेरे लिए प्रोत्साहन भी हुआ और कहानी छप भी गई। हाँ, मतलब एक चीज ये थी उसमें एक फोटो भी छपता था, तो फोटो छपने से जो अतिरिक्त आनंद आया तो वो अतिरिक्त था।
1: मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लिए साहित्य केवल अभिव्यक्ति है या सामाजिक हस्तक्षेप का माध्यम भी है।
2: असल में मेरे लिए दोनों एक से जुड़े हुए हैं, समाज और रचनात्मकता। क्योंकि मैं व्यक्ति हूँ, एक मनुष्य हूँ, एक खास समाज में रहता हूँ, उसकी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं जिस तरह से उसको देखता हूँ, उसकी अच्छाइयों को, बुराइयों को, अपनी निकटता से, वो मेरी रचनाओं में आएंगी आएंगी, वो आती है। और अगर कोई चीज ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, जो लगता है कि समाज को पिछड़े करने में या किसी एक सेक्शन के साथ अन्याय करने में अगर वो दिखाई दे रही है, तो ऐसा है कि एक लेखक के रूप में आप उद्वेलित होते हैं, क्योंकि आप अपने लेखन से आपको चीजों को जो देखने का आपकी जो दृष्टि होती है वो ये बनती है कि वो समझे कि आखिर ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये खास तरह का व्यवहार कुछ से साथ हो रहा है, कुछ के साथ नहीं हो रहा, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है ये आपको देख। तो लेखक के रूप में ये सब कुछ आप देखते हैं, तभी अगर आप उपन्यास लिखना चाहते हैं और समाज से जुड़ा हुआ लिखना चाहते हैं, या आप वास्तविक समस्या को किसी को लेकर लिखना चाहते हैं, तो आपको समाज को समझने का दृष्टि तो होनी चाहिए, बिना उसके तो आप फिर नहीं कभी भी ढंग के उससे नहीं लिख पाएंगे। तो अब मैं अपनी रचनाओं में जो कुछ भी वो आ रहा है तो एक तरह से वो रचनात्मकता का हिस्सा है, वो अतिरिक्त तो कुछ नहीं।
1: पंकज जी, आपकी कहानियों को पढ़ते हुए लगता है कि उसमें आम आदमी की पीड़ा और व्यवस्था के प्रति एक तीखा असंतोष है, ये दृष्टि आपके भीतर कैसे विकसित होती है?
2: देखिए, कारण वही है, जब मैंने चीजों को देखने का और जो स्थितियां हैं उनको समझने का कि आखिर क्यों जो इस असमानता है, जो अन्याय है, जो कुछ लोगों के साथ जो भेदभाव है वो क्यों और है, तो वो क्यों नहीं बदल रहा है अब तक, क्यों इसमें कोई प्रयत्न नहीं दिखाई दे रहा, वो सारी चीजें मुझे प्रेरित करते रहे, देखते रहे। तो मैंने कोशिश करी कि अब एक तरह से, चूंकि मैं जिन स्थितियों में शुरुआत में कुछ दिनों रहने के हुआ पड़ा हमको, तो जो चीजों का ना होना, आपके पास पैसे की कमी होना, आपको एक बेहतर स्थिति में नहीं रहने देने का ना, जो अभाव जिसको कहते हैं, अभाव की जो स्थिति है आपने सहा है, तो आप उससे औरों के साथ आइडेंटिफाई करने में आप मदद मिली। तो मतलब एक लेखक के रूप और एक लेखक के रूप में मेरे ख्याल से एक रचनाकार के रूप में या कलाकार के रूप में ये भी होता है कि जो उसकी संवेदनशीलता है वो उसकी अपनी जो अनुभव है उनके परे भी जाते, वो औरों से भी सीखते हैं, औरों को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जो भी मैंने जिस तरह से मैं जिंदगी को देखा है, अभिव्यक्त करने की कोशिश करी है, उसमें यही तरीका वही यही है। जो
1: पंकज जी, आपकी रचनाओं में संवेदना और प्रतिरोध दोनों साथ साथ चलते हैं, क्या यह आपके लेखन की सचेत रणनीति है?
2: ऐसा कुछ नहीं है, होता क्या है कि आप चीजों को देखते हैं, जब आप किसी मान लीजिए कोई खास स्थिति को देख रहे हो, कोई अपंग है मान लीजिए, वो नहीं चल सक रहा है, उसको चलने की मदद नहीं मिल रही है और लोग उसकी मदद नहीं कर, ये जब आप देख रहे हैं तो इससे आप जो अर्थ निकाल रहे हैं और जो जिस तरह से उसको आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं या जिस तरह से आप उसको बदलना चाहते हैं, ये सारी प्रतिक्रियाओं को आप एक लेखक के रूप में लिखना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपकी दृष्टि संवेदनशील है, आप अगर मानवीय हैं, तो आपको जो भी तकलीफ दूसरे आदमी की होगी आप उससे जरूर अपने को आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वैसे मेरे ख्याल से लेखक होना एक अतिरिक्त जिम्मेदारी हो सकती है, मतलब एक आदमी होने के कारण, ह्यूमन बीइंग होने के कारण हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम जो भी हमसे कमजोर हो, जिसको जरूरत हो, उसकी मदद करें।
1: पंकज जी, आज के समय में कहानी और उपन्यास के स्वरूप में आप क्या परिवर्तन महसूस करते हैं इस बदलते हुए समय में?
2: देखिए, हो क्या रहा है कि कहानी का जो महत्व है, वो कहानी चूंकि बहुत छोटे दायरे में चीजों को देखने की कोशिश करती है, तो मेरे ख्याल से ये कहानी की जगह टेलीविजन, रेडियो, जो और जो एंटरटेनमेंट के माध्यम है उन्होंने ले लिए है। अब जो माध्यम बचता है वो बड़े नरेटिव में बचता है, वो उपन्यास है। अब उपन्यास इसलिए शायद मेरे ख्याल से कहानियों में अब उतना लेखन नहीं हो नजर आता है मुझको, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक और बात भी है, जो श्रव्य या दृश्य माध्यम है उनकी अपनी सीमा है, उनमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और वो जो कह रहा है वो आप पे यथावत, क्योंकि वो दृश्य आपके सामने एक तरह से साकार है, तो वो पूरी तरह आप पे छाए रहते, जो भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी वो बना रहा है उसको, या एक्टर मेरा मतलब जो एक्ट कर, लेकिन जो रचनात्मकता जो लिखना है उसमें यह है कि लेखक जो लेखन के साथ यह है कि आपको जो लिखने में कहा जा रहा है उसको अपने दिमाग में अपने अपनी चेतना में अपनी संवेदना में एकाकार करना है, उससे तालमेल बैठाना है और उसको उस तरह से दुनिया को समझने की कोशिश करनी है। तो वो जो है जो इन्वॉल्वमेंट का लेवल है, सेंसिटिविटी का लेवल है, वो डिफरेंट है, तो वो ज्यादा सक्रिय है, वो एक तरफा नहीं है। जी, इसका वही महत्व यह है।
1: बहुत सारी खट्टी मीठी यादों के साथ आकाशवाणी का आपका सफर रहा है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आकाशवाणी का धन्यवाद।
0: पंकज बिष्ट और विशाल पांडे का ये संवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, क्या वो उस जिंदगी से जुड़ा है जो हमारे आसपास सांस ले रही है। हर दौर में साहित्य को एक नई पीढ़ी, एक नई ऊर्जा की जरूरत होती है और ये काम आकाशवाणी और साहित्य अकादमी जैसे संस्थान लगातार करते चले आ रहे हैं। हमारी अगली प्रस्तुति सृजन की अगली पंक्ति में सुनते हैं विकास दवे, निदेशक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से चंद्रशेखर शर्मा की बातचीत।
3: हमारे साथ हैं लब्ध प्रतिष्ठ बाल साहित्यकार, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दुबे। सर, सर
4: आज बहुत अच्छा लग रहा है और आकाशवाणी के इस पटल पर विशेष करके मुझे इस बात को लेकर के बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है कि चूंकि आकाशवाणी और साहित्य समाज ये एक ही परिवार के दो हिस्से हैं।
3: सर, रेडियो को हम बोलते हैं एक दृष्टिहीन कला, ब्लाइंड आर्ट, और अज्ञेय जी ने कहा है कि रेडियो ने साहित्य में श्रव्य बिंबों की नई दुनिया रची है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या विचार श्रृंखला इस बारे में कहती है।
4: अज्ञेय और मुक्तिबोध दोनों को हमको स्मरण करना चाहिए।
3: बिल्कुल,
4: और लगभग दोनों ने समान धर्मी विचार व्यक्त किए थे, विशेष करके आकाशवाणी के इस माध्यम को लेकर के।
3: जी,
4: उससे पहले तक रंग कर्म और नाटक विधा ये चूंकि दृश्य विधा के अंतर्गत आया करते थे, जब आकाशवाणी का प्रणयन हुआ उसके पश्चात रेडियो रूपक जैसे शब्द समाज ने सुने।
3: जी,
4: और रेडियो रूपक ने दरअसल साहित्य क्षेत्र में इन मान्यताओं को एक प्रकार से आश्वस्ति दी कि यदि आप आंखों के सामने दृश्य उपस्थित न भी करें तो भी केवल स्वरों के उतार चढ़ाव से, स्वरों का जो पूरा भाव भंगिमाएं अभिव्यक्त करने का जो सौष्ठव है उसके माध्यम से भी एक पूरे के पूरे नाट्य विधा को आप स्थापित कर सकते हैं।
3: शब्द चित्र
4: अद्भुत, वो शब्द चित्र के ही माध्यम से एक प्रकार से। और सबसे बड़ी बात यह कि आकाशवाणी ने जिस ढंग से भाषा को अपने साथ सहेजने का प्रयत्न किया, भारतीय समाज में जो आक्रांताओं का जो युग था उस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आने के लिए और विशेष करके हम सब पर पड़ा हुआ जो भाषाई प्रभाव था किसी शब्द की, वाक्य विन्यास की, व्याकरणगत वाक्य विन्यास की, उसमें निश्चित तौर पर एक वैक्सीन का काम किया है आकाशवाणी ने।
3: साहित्यिक शुचिता बनाए रखते हुए मर्यादित और सुगम्य भाषा के माध्यम से साहित्य को रेडियो ने जन जन तक पहुंचाया है। इस संदर्भ में सर विष्णु प्रभाकर जी को हम याद करते हुए एक बात कहना चाहेंगे कि रेडियो ने साहित्य में संवादात्मक रूप को निखारा है। हम इस संदर्भ में सर आपके विचार जानना।
4: स्वाभाविक रूप से साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का काम आकाशवाणी ने सर्वाधिक किया ही है।
3: जी।
4: और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हमारे यहाँ पर साहित्य क्षेत्र में दो शब्द प्रचलन में आते हैं, लोक और शास्त्र।
3: जी।
4: तो शास्त्रीय अवधारणाओं को लोक तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आकाशवाणी ने किया है।
3: जी।
4: और विशेष करके ये जो साहित्य की जो भिन्न भिन्न विधाएं हैं जिनसे सामान्य जन को परिचित कराने का काम किया, इसके साथ साथ मुझे लगता है कि साहित्यकारों को भी परिचय दिलाने का काम आकाशवाणी ने बड़ी मात्रा में किया है। तो ये जो साहित्य जगत को लोक से जोड़ना, लोक को साहित्य से जोड़ना और उन सबके बीच में सेतु का काम करना, और ये सब करते हुए व्याकरण भी सिखा रही है आकाशवाणी, भाव पक्ष भी समझा रही है। आप देखिए, चाहे हम लोगों को कई बार लगता होगा कि वे जब सी रामचंद्र की बात करते हैं, हमारे जो उद्घोषक होते हैं, वो जब कहते हैं कि भरत व्यास ने कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया है, इंदिवर ने इस गीत में ऐसा ऐसा हुआ, या किशोर दा ने गाते समय इस शब्द को इस तरह से गाने की कोशिश की, लेकिन फिर गीतकार वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा नहीं, इस शब्द का उच्चारण भोजपुरी में ऐसा होता है, अवधी में ऐसा होता है, इसलिए आपको इस ढंग से करना है।
3: जी, जी।
4: तो ये जो सिखाने का क्रम था, ये मुझे लगता है कि आकाशवाणी एक प्रशिक्षक की भूमिका में में रही है समाज में साहित्य और व्याकरण और भाषा की दृष्टि से।
3: जी, अमृतलाल नागर जी का सर एक कोटेशन है कि रेडियो जनमानस तक साहित्य की पहुंच का सबसे सशक्त माध्यम है। क्या आप मानते हैं सर कि रेडियो ने साहित्य को लोकधारा से जोड़ा?
4: तकनीकी रूप से इस बात को हम इस दृष्टि से भी स्वीकार कर सकते हैं कि रेडियो अभिजात्य वर्ग की पहचान तो था ही। आज यदि हम अनुभव करते हैं कि आज हमारे ड्राइंग रूम में बड़े बड़े थिएटर्स बना करके लोग बैठे हैं और एक दीवार के आकार के टेलीविजन सेट लगे हुए हैं, कमरे के चारों कोने में स्पीकर लगे हुए हैं, उस स्थिति से निकलने वाले लोगों को शायद ये कल्पना भी नहीं होगी कि आकाशवाणी या रेडियो को सुनने के लिए एक जमाने में लाइसेंस लेना पड़ता था। मैंने आकाशवाणी के 50 वर्ष जब हुए थे तब एक लेख लिखा था और उस लेख में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि आकाशवाणी की भले ही वह यात्रा इतिहास रही हो, लेकिन आकाशवाणी का आज हमको क्या दिखाता है? आज हमको दिखाता है कि खेत में हल जोतता हुआ किसान जो है, वह दोनों बेलों की घंटियों की आवाज के बीच में वो जो दोनों बेलों के कंधे पर जुआ रखा है, उस जुए के सेंटर में रस्सी से बांध करके एक रेडियो लटका करके रखता है और खेत में अनाज बोते हुए भी, बीज बोते हुए भी वो आकाशवाणी के माध्यम से सुरीले गीत सुन रहा है, देश भर की खबरों से अपने आप को जोड़ रहा है। और इतना ही नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से जानकारियों का प्रदाय का काम आकाशवाणी ने किया है वो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंत्योदय की पराकाष्ठा मानता हूं मैं इसको। कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा इतने सारे जो शोध कार्य संपन्न होते हैं उन्हें एक अनपढ़ किसान तक पहुंचाने का काम भी अगर कोई कर पाता है तो वो निश्चित तौर पर आकाशवाणी कर रही है।
3: हम आपसे सर जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी के मंच ने किस प्रकार से साहित्यकारों की पहचान और लोकप्रियता में श्रीवृद्धि करने में अपना योगदान दिया है।
4: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हों, महादेवी वर्मा जी हों, सुभद्रा कुमारी चौहान हूं
3: जी,
4: हम देखते हैं कि इन सब रचनाकारों ने जिस ढंग से आकाशवाणी को अत्यंत श्रद्धा के साथ अपनाया और उनकी उन कालजयी रचनाओं को अगर जनसामान्य ने कंठस्थ किया, मुखाग्र किया, तो उसमें निश्चित तौर पर आकाशवाणी का एक बड़ा हाथ था। अमिताभ बच्चन जी चूंकि सदी के महानायक कहलाते हैं और उन्होंने जब पहली बार मधुशाला को अपने स्वर देकर के और एक कंपनी के माध्यम से एक एल्बम तैयार किया था, तब एक पत्रकार ने उनसे पूछा था तो उन्होंने यही कहा था कि भाई इस काम को आकाशवाणी बहुत पहले कर चुकी है और विशेष करके इसमें मैं आंचलिक साहित्यकारों को पहचान दिलाने के काम में आकाशवाणी का जो अवदान है वो तो अद्भुत है।
3: इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी ने साहित्य की नई विधाओं को भी जन्म दिया है
4: जी।
3: जैसे रेडियो रूपक हुआ, रेडियो नाटक हुआ और आकाशवाणी का एक गर्विला सफर रहा है जिसमें भारत भूषण अग्रवाल, अमृतलाल नागर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और पीएल देशपांडे जैसे साहित्यकारों ने काम किया है यहाँ पर और इन नई विधाओं के उन्नयन में अपना योगदान दिया है।
4: चाहे वो कृषि जगत में नंदा जी भेरा जी के माध्यम से कृष्णकांत जी दुबे, नरहरी पटेल जी, स्वतंत्र कुमार जी ओझा को मैं इस समय स्मरण करना चाहता हूँ, ये एक पूरी की पूरी जो पीढ़ियां थी उन पीढ़ियों ने अपने आप को एक प्रकार से होम किया। उन्होंने अपने जीवन का कण कण और क्षण क्षण लगा करके इस आकाशवाणी की विधा को इतना उदात्त स्तर पर पहुंचाया कि लगता है कि सचमुच इन लोगों ने एक तप की तरह इस काम को किया था। और जिन नई विधाओं के संदर्भ में आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आकाशवाणी के माध्यम से नाटक से इतर भी अगर हम चलें तो जिसे कथा कथन की शैली को विकसित करना
3: जी।
4: कहानी लेखन भले ही साहित्य का विषय होगा लेकिन कथा कथन साहित्य का विषय नहीं है, वो एक प्रकार से कला का विषय है। लेकिन साहित्य और कला को सेतु बना करके उन्होंने जिस ढंग से कहानियां पढ़ना प्रारंभ की, मैं इस दिशा में कई बार इस बात का उल्लेख भी करता हूं कि सुबह का जो चिंतन आता है, चिंतन का प्रत्येक एपिसोड जो होता है वो अपने आप में ललित निबंध होता है एक प्रकार का, और इस ललित निबंध को सुनना यानी केवल वो कानों को सुख देता है, मानस को सुख देता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल आत्मा भी उसमें तृप्त हो जाती है। मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इसको लेकर के आकाशवाणी के इस अवदान को लेकर के जितना कहा जाए उतना कम होगा। आकाशवाणी के जो संग्रहालय है, आर्काइव्स है, उनमें इतनी अभूतपूर्व सामग्रियां हैं। अगर मैं चाहूं कि किसी युग में लता जी मुंबई के आकाशवाणी स्टूडियो में बैठ करके केवल अभ्यास कर रही थी और मशीन पर बैठे हुए उस समय के तकनीशियन ने रिकॉर्ड कर लिया उनको, केवल की वाणियों को या आपस की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और वो सब के सब आज चाहे वो शुभा मुद्गल हो, चाहे हरिप्रसाद चौरसिया जी हो, चाहे छन्नू मिश्रा जी हो, उन सब की सामान्य बातचीत जो कि ऑफिशियली आकाशवाणी पर कभी प्रसारित नहीं हुई, लेकिन वो सब चीजें आज भी हमारे पास उस मैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्डेड हैं। और मुझे कहते हुए गर्व है कि वर्तमान में प्रसार भारती ने अपने ऐसे सारे संग्रहालयों को एक प्रकार से, चूंकि जो क्लाउड है वो क्लाउड को मैं आधुनिक युग का कालपात्र ही मानता हूं, वो अब अक्षय भंडार हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए जो ओपन फॉर ऑल कर दिया है, मैं तो कई बार उस आर्काइव पर जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घंटों उससे बाहर ना आऊं। तो मुझे लगता है कि उसका लाभ हम सब लोगों को लेना चाहिए, और विशेष करके साहित्य क्षेत्र के साहित्यकारों से मैं आग्रह करूंगा, केवल नवोदित पीढ़ी से नहीं, पुरानी पीढ़ी के साहित्यकारों से भी, कि वे कभी माखन दादा को, वीरेंद्र मिश्र जी को, महादेवी वर्मा जी को, इन सबको उनके मूल स्वर में सुने, तो हमारे ध्यान में आता है कि उनकी सोच कितनी उदात्त थी, कितने उदार हृदय से वो साहित्य की समीक्षाएं किया करते थे। आज जिस ढंग से एक दूसरे को प्रशंसित करने का काम हम लोग कर रहे हैं, उस युग में आकाशवाणी हमारे लिए एक अच्छा प्रशिक्षक इस मामले में भी हो सकता है।
0: सृजन की अगली पंक्ति मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे से चंद्रशेखर शर्मा की ये बातचीत आपने अभी सुनी। सौजन्य आकाशवाणी भोपाल। और अब स्मृति नमन। वो जो चले गए लेकिन अपने शब्दों से, अपनी कृतियों से हमेशा के लिए जी गए। आज हम याद कर रहे हैं ऐसी ही तीन महान विभूतियों को, जन कवि नागार्जुन, जिनकी कविता धरती की तरह थी, ठोस, उर्वर और सच्ची, जो हाशिए के इंसान की आवाज बने। काजी नजरुल इस्लाम, जो बांग्लादेश के राष्ट्र कवि भी हैं, जिनकी विद्रोही कविता ने एक पूरी पीढ़ी को जगाया। मुद्रा राक्षस, हिंदी के वो फक्कड़ रचनाकार जिनके कलम ने कभी सत्ता से समझौता नहीं किया। नाटक, उपन्यास, आलोचना, हर विधा में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। नागार्जुन, काजी नजरुल इस्लाम और मुद्रा राक्षस की ये त्रयी हमें याद दिलाती है कि साहित्यकार मरता नहीं, वो अपनी रचनाओं में बार बार जन्म लेता है। इस त्रयी को साहित्य भारती का विनम्र स्मृति नमन। इसी के साथ साहित्य भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगली बार फिर मिलेंगे नए शब्दों के साथ, नई संवेदनाओं के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, सोचते रहिए। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 10 बजे हैं। लोक वाद्य धुनों पर आधारित कार्यक्रम पाड़ में सुनिए फुल कवर पाड़ और पीला कनूर कदो पाड़। वादा कलाकार हैं सैजुराम और साथी।

लोक वाद्य धुनों पर आधारित कार्यक्रम पाड़ में अभी आप सुन रहे थे फूल कंवर पाड़ और पीला कनूर कदो पाड़। वादक कलाकार थे सैजुराम और साथी आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 11 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिमी एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षो में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikant Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils, including palm oil, palm olein, soybean oil, sunflower oil, mustard oil, groundnut oil, sesame oil and rice bran oil. The approved pack sizes are 200 gram, 500 gram, 1 to 5 kilograms, 15 kilograms and 20 kilograms. The ministry said this will also help consumers make more informed and transparent purchasing decisions. It added that the initiative will benefit the edible oil industry by bringing greater uniformity in packaging practices. Railway Minister Ashwini Vaishnaw has said that resolving long-pending railway projects in West Bengal will usher in a new era of railway infrastructure development in the state. Addressing a joint press conference with Chief Minister Suvendu Adhikari at Nabarna in Kolkata, Mr. Vaishnaw said that 14,205 crore rupees have been allocated to West Bengal in the railway project for 2026-27. He said 10 Amrit Bharat stations have already been completed in the state, while 9 Vande Bharat Express trains and several Amrit Bharat trains are currently in operation.
5: 60 new generation trains we are planning. In coming 4 to 5 years, these trains will be inducted and Kolkata Metro will get a totally new generation of trains. As the work gets completed on Chingrighatta area, other sections, a lot of improvement will happen in the mobility in Kolkata.
4: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said India and Nepal collaborate closely to maintain security along their long and uniquely open border, and the two countries have always stood by each other in times of need. In his opening remarks during a meeting with his Nepalese counterpart, Shishir Khanal, in New Delhi this evening, Dr. Jaishankar said India and Nepal share a very special relationship. The External Affairs Minister said the bilateral ties have steadily developed in areas like trade, commerce, investments, energy, development, cooperation, education, disaster response and culture. Mr. Khanal said India is Nepal's most important partner and Nepal has placed highest priority to India. He said Nepal and India are not merely two countries but stakeholders of a proud ancient civilization. He thanked India for fuel and fertilizer supply amid the West Asia crisis. Tensions across West Asia escalated sharply on Saturday after Iran launched ballistic missiles toward United States military facilities in Kuwait and Bahrain, prompting a coordinated air defense response by Gulf states and American forces. According to the U.S. Central Command, Iran fired 7 ballistic missiles following U.S. strikes on Iranian coastal surveillance and radar installations at Keshm Island and Goruk near the Strait of Hormuz. Initial assessments indicated that 6 missiles were intercepted while a 7th failed to reach its target. There were no immediate reports of casualties among US personnel. In tennis, Russian eight-seeded Mira Andreeva won her maiden Grand Slam title after getting the better of Maya Szwalanski of Poland in straight sets in the women's singles final of the French Open. And that is the end of this news bulletin.
6: Medium wave 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़ एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 11:10 हुए हैं। हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। कल पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ प्रातः 5:55 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

विक्रमों के साथ प्रातः 5:55 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।